0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में, ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सकें। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवा कर शिव जी के पास भेज दिया। फिर सप्त मुनि सब कुछ देकर अपने निवास स्थान पर लौट आए और हिमालय ने विवाह से संबंधित सामान का संग्रह कर किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार भी करने लगी। वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर ही यह ग्रंथ लिखा था। अब विभिन्न प्रकार के पर्वत, देवालय पर्वत दिव्य रत्नों के साथ आए, मंदराचल पर्वत विभिन्न रत्नों के और मणियों सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार से सभी पर्वत अपने अपने परिवारों के साथ रत्न मंडित होकर वहां पर पहुंचे, शोभा बढ़ाने के लिए हिमालय के घर में। अब लीना जी, और विवाह की क्या तैयारियां वहाँ चल रही थी। यह तो अद्भुत अलौकिक विवाह था जिसे देखकर देवता तो प्रसन्न होते हैं, हम तो सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि हमारा तो जीवन ही सफल हो गया सुनने मात्र से। और लग रहा है कि कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अलौकिक दिव्य दृश्य रहा होगा वो जिन्होंने इसका दृश्य में शामिल हुए, जो विवाह में शामिल हुए। अब आगे किस प्रकार से यह विवाह चला और क्या तैयारियां और हुई, वह सब हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए, हमें भी।
1: बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आपने कहा कि हमारा जीवन ही सफल हो गया
0: जी।
1: तो शिव पुराण ऐसी कथा ही है, ऐसी अद्भुत कथा है जो रामायण की तरह परम पवित्र है। और हर घर में, जिस तरह से घर घर में रामायण बांची जाती है, ठीक उसी तरह शिव पुराण, पुराणों में महा शिव पुराण है, जिसकी कथा को पंडितगण, जो विज्ञजन है, विद्वान जन है, वो इसकी कथा को बताते हैं। और जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके कर्ण में कुछ ना कुछ तो जाता है, अमृत तो घुलता ही है। अगर हम अमृत की बातें सुनेंगे, अमृत रस पिएंगे, तो हमारा जीवन अमृतमय क्यों नहीं बने। और यह अमृत की ही कथा है, क्योंकि भगवान शिव ने क्या किया था, सारे विष को पी लिया था। अमृत पीने के पहले का प्रकरण जो है, उस प्रकरण में यही हुआ था कि पहले समुद्र मंथन में विष निकला था और उस हलाहल को पीने के लिए कोई तैयार नहीं थे, कोई उसके योग्य नहीं थे, कोई उसके पात्र नहीं थे
0: जी।
1: और शिव जी ने उसे पी करके पूरे संसार को बता दिया कि वे हम मनुष्यों के भी मन रूपी विष को पी सकते हैं। और मन के अंदर जो विष पलता है, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन सारे विषों को अगर हम निकालना चाहें तो हमारे अकेले से संभव नहीं होगा। शिव की शरणागति से यह सब संभव है कि हमारे अंदर जो मन है, वह मन एक छोटा सा बच्चा है, वह उत्पाती भी है, वह बंदर की तरह प्रतिक्रिया क्रिया भी करता है। तो हमें अगर अपने मन को सुंदर बनाना है, समस्त दुर्गुणों से दूर करना है अपने मन को, तो भगवान शिव की शरणागति कर ले तो हमारा मन भी सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर शिव, अमृत शिव, अमृतोपम शिव, दिव्योपम शिव, दिव्यादि दिव्य शिव, तो शिव ऐसे हैं, तो उनकी कहानी तो दिव्य होगी ही। और दिव्य कहानी से हमें दिव्यता की अनुभूति होगी ही। अगर हम देवत्व को धारण करेंगे तो हम और अधिक दिव्य होते चले जाएंगे। इस शिव पुराण की महिमा यही है, इस शिव पुराण का महागुणगान यही है कि हम इसे न केवल सुने, न केवल पढ़ें, अपितु इसे आचरण भी में भी उतारें। और आचरण में जैसे जैसे शिव पुराण उतरेगा, वैसे वैसे हम शिवत्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और जीवो केवला शिवा की अनुभूति भी हमें होगी कि हाँ, जन्म जन्मांतर का परिश्रम हमारा सार्थक हो जाएगा जब शिवत्व की हमें अनुभूति होगी।
0: लीना जी, मैं ये भी देख रही हूँ कि जब से हम लोग ये शिव पुराण की व्याख्या आपने शुरू की है और हमने शुरू की है सुननी और अपने श्रोताओं को भी सुनानी, तो मैं ये देख रही हूँ कि जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान शिव पुराण में ना हो। तो हम क्यों फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, यहाँ खोज वहाँ खोज, यहाँ पूछ वहाँ पूछ, सीधे शिव की शरण में ही क्यों नहीं आ जाते जहाँ सारी ही समस्याओं का समाधान है? फिर हम परेशान क्यों होते हैं? फिर समाज में लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? तो अब आप ये इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, अगर मन में कीचड़ होगा तो हम शिव तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि शिव कीचड़ रहित है। कीचड़ से लिपायमान हमारा मन है तो हम शिव जैसे दुधिया चंद्रमा को कैसे देख पाएंगे? शिव को अगर देखना है, शिव को अगर समझना है, तो शिवत्व को उतारना ही पड़ेगा। कहते हैं कि मित्र की मित्रता कब होती है? जब दोनों के गुण समान होते हैं। तो भक्त भगवान की ओर जब अग्रसर होगा, भक्ति उसमें उतरेगी, तो शिव अपने आप उसके मन रूपी दर्पण में दिख जाएंगे। लेकिन मन रूपी दर्पण अभी मैला है, इसलिए वो दिख नहीं रहे।
0: बोलिए। ये आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि मन में जो बैठे हुए हैं हमारे शत्रु, तो उसको तो पशुपतिनाथ ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वही जो पशु बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, तो ये जो इतने सारे पशु बैठे हुए हैं, इनको अगर हमें निकालना है तो हमें भगवान की शिव की शरण ही लेनी होगी, और कोई उपाय नहीं है।
1: क्योंकि शिव को पशुपति नाथ भी कहा गया है।
0: हाँ जी,
1: आपने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार आदि जो है, ये क्या है? ये पशु है,
0: पशु
1: हमारे मन के पशु है। हाँ, अब इन सारे पशुओं को नाथने के लिए पशुपति नाथ को तो आना ही पड़ेगा।
0: हाँ,
1: तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे अंतर की आर्त पुकार, करुण पुकार होनी चाहिए कि हे शिव, आप मुझे अपनी शरण में ले लें और हमें अपने जैसा भोला बना दें, अपने जैसा निर्मल बना दें, निष्कलंक बना दें। तो देखिए, भक्ति, भक्त और भगवान से सजी हुई ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी।
0: लीना जी, एक बड़ी प्रचंड जो समस्या आजकल समाज में देखने को मिल रही है, देख उसको सुनकर भी और देखकर भी मन बहुत दुखी होता है कि उसका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाते। हमारे पास इतने, जिसको कहना चाहिए कि अमूल्य धरोहर ये ग्रंथ हैं, इनमें सब कुछ है, क्यों नहीं इधर की तरफ बढ़ता है हमारा समाज कि आज भाई भाई की हत्या कर रहा है द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, बाप बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, माँ की हत्या कर रहा है। इतना तो कुंठित समाज हमारा कभी पहले था नहीं, अब क्या हो गया इस समाज को? कैसे हमारे यहाँ से ये हमारे जो विचारों की और जो संस्कारों की यह ये कहाँ खो गए हैं, हमने कहाँ खो दिया इनको?
1: आपके प्रश्नों में ही समाधान छुपा हुआ है, क्योंकि हम लोग भक्ति युक्त शिव पुराण कर रहे हैं। जिस दिन मानव मात्र में भक्ति का सूर्योदय जगेगा, उस दिन सारे अंधकार अपने आप पलायित हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दुम दबा करके भाग खड़े होंगे। तो जैसे अंधेरे कमरे में बहुत सालों से कमरा अंधेरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ट्यूबलाइट है, पर उसे जलाना कोई नहीं जानता। जैसे ही आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, सालों बाद मान लीजिए आप विदेश से आए हैं और उस अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, तो आपको लगेगा हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, कौन सा सामान कहाँ रखा है ये आपको पता नहीं है। लेकिन ट्यूबलाइट जलाते के साथ आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, कमरे का अंधेरा दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। ठीक उसी तरह हमारे मन के अंदर जो इतने प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान भक्ति है। आज के युग में, कलयुग में कहा गया है कि सबसे उत्तम अगर कोई चीज है, विधि है, तो वो है भक्ति। भक्ति से मनुष्य झुकना सीख पाता है, भक्ति के कारण मनुष्य कामी नहीं रह पाता, क्रोधी नहीं रह पाता, भक्ति के कारण उसके अंदर लोभ नहीं हो पाता। अगर लोभ है तो सिर्फ भगवान का लोभ है, अगर काम है, रति है, तो सिर्फ भगवान के चरणों से रति है, अगर ये क्रोध है तो सिर्फ उस पर कि जो समाज में विकृतियां छाई हुई हैं उस पर क्रोध है। तो भक्त बनो तो ऐसे कि प्रह्लाद बन जाओ।
0: अब लीना जी, जैसे हमारे ऋषि मुनि तो अपने व्याख्यान से, धर्मोपदेश से और अपने प्रवचनों से हमारे समाज को प्रेरित कर ही रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे ही रहे हैं, समाज को सही राह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो आम आदमी का कर्तव्य है, एक आदमी, सामान्य आदमी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता है अगर कि मैं कुछ ऐसा योगदान दूं, मैं भी लोगों के मन में बसी हुई वो ईर्ष्या द्वेष जो नाश कर रही है परिवारों का, उसको कैसे हटाऊं, तो अब इस विषय में एक आम इंसान अपना कैसे सहयोग दे।
1: मंजू जी, वास्तव में
0: जी
1: उस व्यक्ति को यह नहीं सोचना है कि मैं कैसे हटाऊं, वो हटाने वाला कोई नहीं होता। आप अपने चरित्र को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि मुड़ करके ये दुनिया आपको देखने लगे और आपके अनुकूल आचरण करने लगे। बुद्ध किसी को बुलाने नहीं जाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, लेकिन बुद्ध के पास सारी दुनिया जाती है। महावीर किसी को बुलाने नहीं जाते, लेकिन महावीर के पास सारी दुनिया जाती है। तो आप बुद्ध और महावीर की तरह बन जाइए, आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके आसपास का वातावरण इतना पवित्र हो जाएगा कि हर कोई कह उठेगा, देखो यह है महान आत्मा। तो क्षुद्रता से महानता की यात्रा हर मनुष्य को करनी होगी और इसके लिए ही शिव पुराण है। तो अब आगे चलते हैं इस कहानी की ओर। कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 37वें अध्याय में कि अभी तक हम लोगों ने जो वर्णन किया था उस वर्णन में पर्वत राजों, हिमालय के जो मित्र थे, पर्वत मित्र थे, वो सब आए थे, जिसमें कि उदयाचल, अस्ताचल, मंदराचल, विंध्यगिरी, सुमेरु पर्वत, मलयगिरी पर्वत, देवालय पर्वत आदि बहुत सारे पर्वत आए, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, ये सब आए। अब नदियों की चर्चा की जा रही है, जहाँ पर्वतों की चर्चा की गई है वहाँ नदियों की चर्चा नहीं करेंगे तो ये पर्वत की चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि नदियाँ क्या है, पर्वत पुत्रियाँ हैं। नदियाँ क्या है, पर्वत से ही निकलती हैं जो सागर तक पहुँचती हैं। तो इन नदियों की चर्चा अब की जा रही है इस शिव पुराण में। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहां आए, लेकिन उस समय नदियां भी आई और उन नदियों का नाम लेते हुए वे कहते हैं, तदा सर्वे समायाता सोनभद्रादय खलु बहु शोभा महाप्रीत्या विवाह शिवयोरिति, नद्य सर्वा समायाता नाना अलंकार संयुता दिव्य रूप धरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, गोदावरी च यमुना ब्रह्म स्त्री वेनिका तथा आययो हिमशैलम वै विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि उस समय सोनभद्र आदि सभी महानदियां प्रेम से शिव शिवा के विवाह में आई, और भी सभी नदियां दिव्य रूप तथा अनेक आभूषणों को धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी, ये सभी शिव शिवा का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आई। और आगे वो कहते हैं, गंगा तू सुमहाप्रीत्या नाना अलंकार संयुता दिव्य रूपाययो प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, अनेक अलंकारों से अलंकृत गंगा नदी अत्यंत प्रेम से उत्तम रूप धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। नर्मदा तू महामोदा रुद्रकन्या सरिद्वारा महाप्रीत्या आजगामासु विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि नर्मदा और महामोदा, रुद्रकन्या, सरिद्वारा, ये सभी अलंकारों को धारण कर बड़े प्रेम से शीघ्र शिव शिवा के विवाह में आई। चारों ओर से इन निमंत्रित लोगों के आ जाने से सब प्रकार से सुशोभित हिमपुरी भर गई। चारों ओर से उत्साह युक्त वह नगरी जिसमें ध्वजा तोरण लगे हैं, तंबुओं के लग जाने से, सूर्य के प्रभाव के हट जाने से जिसकी शोभा बढ़ गई है, हिमालय ने भी घर में आए हुए उन आमंत्रित अतिथियों का आदर पूर्वक यथोचित सम्मान किया, उन सबके निवास की अलग अलग व्यवस्था की तथा अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। अब देखिए हिमालय क्या थे, पर्वतराज थे। अब पर्वतराज के पास सारे पर्वत, सारी नदियां आ रही हैं। मित्र, कोई मित्र के रूप में आ रहे हैं, कोई हिमपुत्री के रूप में आ रही है, तो बहुत सारी चीजें थी जो हिमालय को व्यवस्था करनी थी, और उन्होंने समुचित व्यवस्था की इन लोगों की, जिससे कि कोई असंतुष्ट ना हो, क्योंकि वधु पक्ष क्या करता है, हमेशा यह कोशिश करता है कि जितने भी घराती बराती जो भी आए हैं सभी का यथोचित आदर हो, यथोचित सत्कार हो और उन्हें सम्मान मिल सके, जिससे कि वे निंदा के पात्र न बने। और दूसरी बात कि जो इतनी दूर से कष्ट उठा करके उनके घर आए हैं, उन्हें कोई भी जो है असम्मानित न करे, अनादर न करे, वे खुश हों, प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके यहाँ से विदाई। तो अभी तक पर्वत और नदी की बात की गई है। तो अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अध्याय 38वें में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब इस 38वें अध्याय में क्या कहा जा रहा है, हम देखते हैं और सुनते हैं। कहते हैं, ब्रह्मोवाच, अथ शैलेश्वर प्रीतो हिमवान मुनि सप्तम स्वपुरम रचयामास विचित्रम परमोत्सवम सिक्त मार्गम संस्कृतम च शोभितम परमर्धिवी द्वारी द्वारी च रंभादि मंगलम द्रव्य संयुतम प्रांगणम रचयामास रंभा तंभसम समन्वितम पट्ट सूत्रय सन्निबद्धम रसाल पल्लवान्वितम मालती माल्य संयुक्तम तोरण सुप्रभम शोभितम मंगल द्रव्य चतुर्दिक्षु स्थितय सुवह। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, उसके बाद गिरिराज हिमालय ने प्रसन्न होकर अपने नगर में परम उत्सव करवाया। चारों ओर सड़कों पर पानी छिड़कवाया, दोनों ओर सड़कें सजा दी गई, प्रत्येक दरवाजों पर केले आदि के पेड़ों को लगवाकर उन्हें सुशोभित कर दिया गया। देखिए पहले क्या होता था, पहले सजावट होती थी केले के पेड़ से। आजकल केले के पेड़ बहुत कम दिखते हैं। केला क्या है, मंगलकारी है और केले का हर पूजन पाठ में केले का प्रयोग होता है। तो केले के थंब हर जगह लगाए जाते हैं। पहले भी मैंने देखा था दीपावली के समय में, आप अभी भी छोटे शहरों में जाएंगी, गांव में जाएंगी, तो वहां केले के थंब लगाए जाते हैं और उन पर दीपक लगाया जाता है। बड़ा खूबसूरत लगता है ये दृश्य देखने में। तो आजकल तो लाइट की परंपरा है, जगह जगह लाइट लगा
0: देते। पहले सारा प्राकृतिक सज्जा होती थी,
1: पहले प्राकृतिक सज्जा होती थी, दीपक जलाए जाते थे, क्योंकि दीपक क्या है, वो तेल बाती उसमें जो जलता है वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो दीपकों से सजाते थे पहले। तो केले आदि के पेड़ लगाकर उन्हें सुशोभित किया गया मार्गों को, और आंगन में भी केले के खंभे लगाकर उन पर रेशमी वस्त्र लपेट दिए और चारों ओर आम के पत्ते लगा दिए। मालती की मालाओं के सुंदर तोरणों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से चारों ओर सुशोभित कर दिया गया। इस प्रकार पर्वतराज ने सभी आयोजन अपनी कन्या की प्रसन्नता के लिए, मेरी कन्या प्रसन्न हो, क्योंकि वो कन्या साधारण थी नहीं, आदि शक्ति थी। और ऐसा हिमालय को आभास भी हुआ था, पता भी लगा था कि मेरी कन्या जो है साक्षात आदिशक्ति है, और साक्षात आदिशक्ति ने उनके घर में जन्म लिया था। यही तो परम हर्ष का विषय था। सभी जगह आदिशक्ति तो जन्म लेती नहीं है। हाँ, आदिशक्ति का अवतरण अगर कहा जाए तो ये पूरा संसार आदिशक्ति का अवतरण ही है। चाहे वह चींटी से लेकर के मनुष्य हो, कोई भी हो, ऋषि मुनि अवतारी पुरुष, सब में आदिशक्ति का ही अवतरण है। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते, अपने शरीर को मंदिर मान नहीं पाते। जिस दिन हम अपने शरीर को मान लेंगे कि हमारा शरीर दिव्योपम मंदिर है, ऐसा मंदिर कहीं और मिलेगा ही नहीं, तो हम सच में अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे, ना कि शरीर से गलत कार्य करेंगे, ना कि शरीर को मांस मदिरा प्रदान करेंगे। लेकिन हम मंदिर ऐसे मान नहीं
0: है।
1: इस शरीर रूपी मंदिर में जो मूरत है वो है हमारी आत्मा, और उस आत्मा रूपी मूरत में जो हृदय है वो है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का संगम है हमारे शरीर में, ये मूर्ति रूप में हमारे अंदर स्थापित है, इनकी धड़कन हम सुन सकते हैं।

0: इनका स्पंदन हम सुन सकते हैं, लेकिन तब जब हम इन्हें जीवंत माने, जब हम इन्हें यह माने कि हम यही हैं। कैसे? तत्त्वमसि, जो वह है वही हम है, सो अहम, जो वह है वही हम है।
1: लीना जी, वही कि यहाँ से बात सिद्ध होती है कि हमारा शरीर ही माध्यम है उस तक पहुँचने का, क्योंकि शरीर से मन में उतरने के लिए तो शरीर को भी स्वस्थ रखना होगा
0: जी।
1: तो जब शरीर को स्वस्थ रखना है तो फिर ऐसे तामसिक भोजन को तो दूर ही रखना चाहिए, उसका क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका तो असर फिर तामसिक ही होगा, प्रभाव भी शरीर पर तामसिक होगा, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव तामसिक ही होगा।
0: एक बात यह मैं कहना चाहूंगी मंजू जी कि ये संसार जो रचा बसा है, जो रचाया है आदिशक्ति ने, वो तीनों गुणों के सन्निवेश से रचाया है। अगर तम गुण नहीं रहेगा तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.009 ना रहे तो सारा वातावरण ही जल जाएगा, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड से नियंत्रित रहता है, जो ज्वलनशील गैस हैं वो सब नियंत्रित रहते हैं। तो तमोगुण भी आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, अगर निद्रा नहीं हो तो हम सब परेशान हो जाएंगे। तो निद्रा तमोगुण में आता है, लेकिन आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक है जितना हमें चाहिए। लेकिन हम उसी में रचे बसे रहेंगे तो हम तमोगुण ही हो जाएंगे। आते हैं रजोगुण पर। रजोगुण है महत्वाकांक्षा, रजोगुण है क्रिया करने की शक्ति। अगर रजोगुण नहीं रहे तो हम क्रिया ही नहीं कर पाएंगे, हम सोचेंगे ही नहीं उस विषय पर काम करने के लिए, तो इसलिए रजोगुण भी आवश्यक है। अब आते हैं सतोगुण पर। सतोगुण क्यों आवश्यक है? क्योंकि सत्य, सत्य की पूछो, सच्चिदानंद ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर को अगर हम पाना चाहते हैं और तो हमारी गति सतोगुण की ओर होनी चाहिए। यानी कि ये सारी सीढ़ियां हैं, हम सब में ये तीनों गुण है। ऐसा नहीं है कि राम में तमोगुण नहीं है, राम में रजोगुण नहीं है, राम में सतोगुण नहीं है, ये नहीं है। लेकिन नियंत्रित अवस्था में है और वृद्धि है सतोगुण, और वो तो परमेश्वर है, तो इन तीनों गुणों से परे भी हैं वो लोग। तो अब सोचना ये है हर मनुष्य को कि अगर हमने जन्म लिया है तो तीनों गुण भले हैं, लेकिन हमें, हर व्यक्ति परीक्षा पास करता है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर एम ए बी ए सब करता है। तो जब ये है तो उसी तरह तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ना है उसे, और रजोगुण की ओर बढ़ने के लिए उसे सब कुछ देखना होगा कि कैसे निद्रा कम करें, आलस्य कम करें, प्रमाद कम करें, और उसके बाद महत्वाकांक्षा तो रहती है रजोगुण में, लेकिन क्रिया करने की शक्ति होती है तो वो सब करें। उसके बाद रजोगुण से सतोगुण की ओर हमको बढ़ना है। जब सतोगुण की ओर बढ़ेंगे तो वो प्रकाश का गुण है। प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए ये शिव पुराण है। प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। जैसे परीक्षा पास करने, बीए की परीक्षा पास करने के लिए आप इंटर के सिलेबस पढ़ करके जाएंगे तो क्या बीए की परीक्षा पास करेंगे? नहीं करेंगे। उसी तरह सतोगुण की भी परीक्षा है, रजोगुण की भी परीक्षा है। तो इन सारी परीक्षाओं को पास करने के लिए हमें उसी तरह की योग्यता चाहिए। तो योग्यता हासिल करते चलिए और पर पग रखते चलिए। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, कोई भी गुण खत्म नहीं होगा, लेकिन उनकी संतुलन बना रहेगा। और जिस दिन संतुलन बन जाएगा, इन तीनों गुणों से हम परे भी हो जाएंगे। तो यही हमें शिव पुराण सिखाता है
1: जी।
0: तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरह से पूरे नगर को हिमालय ने सजाया, केले के थंब से भी सजाया। और उसके बाद कहता है कि उसके बाद महाप्रभावशाली गर्ग जी के सामने पूजा आदि की सामग्री प्रस्तुत की। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर विस्तृत एवं सुंदर मंडप और उसके बीच में वेदी का निर्माण कराया। वेदी का निर्माण भी बहुत आवश्यक है, है? और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह वितान 10,000 योजन विस्तृत अनेक शुभ लक्षणों तथा आश्चर्यकारक दृश्यों से युक्त था। वह मंडप, स्थावर, जंगम सबके लिए समान रूप से मनोहर था। चारों ओर से वह सुंदर था। जो मंडप बनाया गया वो चारों ओर से सुंदर था। फिर आगे आगे कह रहे हैं व्यास जी कि जंगमम विजितम तत्र स्थावरेण, विशेषतः जंगमेन च तत्रासीत जीतम स्थावरम एव ही, पैसा च जिता तत्र स्थल भूमिर न चान्यथा, जलम किम ही स्थलम किम ही, न विदु के अपि को विदा, क्वचित सिंहा कृत्रिमाश्च क्वचित सारस पंक्तया क्वचित शिखंडिना तत्र कृत्रिमाश्च मनोहरा। देखिए अब ये आगे बता रहे हैं प्रकृति किस तरह हास विलास से युक्त हो जाती है। जब प्रकृति और परमेश्वर की ही शादी हो रही है तो प्रकृति तो अपने ढेरों रंग दिखाएगी, इंद्रधनुषी रंग दिखाएगी। कहते हैं कि वहाँ की स्थावर रचना ने जंगम सृष्टि को और जंगम रचना ने स्थावर सृष्टि के मन को जीत लिया था। जल ने स्थल को जीत लिया था, अर्थात कहाँ जल है कहाँ स्थल है इसका निर्णय भी कोई नहीं कर पा रहे थे। कहीं बनावटी सी, कहीं सारसों की कतारें, कहीं मोड़ दर्शकों के मन को आकर्षित कर रहे थे। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई बनावटी स्त्रियां भी देखने वालों के मन को मोहित कर रही थीं। इसी प्रकार प्रत्येक दरवाजे के पास मनोहर द्वारपाल बने हुए थे। हाथों से धनुषों को उठाए हुए वे बनावटी द्वारपाल वास्तविक जैसे लग रहे थे। दरवाजे पर बनाई हुई महालक्ष्मी सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण ऐसी लग रही थी मानो साक्षात क्षीर सागर से आई हुई लक्ष्मी ही हो। बनावटी हाथी सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित ऐसे लग रहे थे मानो स्वाभाविक ही हो। इसी प्रकार घोड़े घुड़सवारों से तथा हाथी हाथी पर सवार होने वालों से सुशोभित हो रहे। सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनिजनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। अब बताइए स्वयं विश्वकर्मा ने ये सब बनाया तो क्यों नहीं होगा आश्चर्यचकित। तो आजकल तो देखिए मनुष्य भी जो बना रहे हैं बहुत ही आश्चर्य करने वाली बातें हैं। पूरे आप देखेंगे कि पूरे गांव के गांव बनाए हुए हैं और लगता है कि सच में अभी बोल पड़ेंगी मूर्तियां बोल पड़ेंगी। तो आज भी वो कलाएं हैं जीवित और विश्वकर्मा तो देवताओं के जो है शिल्पी ही हैं, शिल्पकार हैं। कहा जाता है जो देवघर है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थित है बैजनाथ धाम, अच्छा वहाँ वो जो है भगवान विश्वकर्मा जो है स्वयं बनाए उस चीज को। केवल देवघर ही नहीं बहुत सारे सारे मंदिरों के भी विषय में बताया जाता है कि उन्होंने ही बनाया। तो शिव का ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ नहीं और केवल शिव ही क्यों, बहुत सारी सारे देवी देवता भी हैं जिनके मंदिर बड़े अद्भुत हैं। अब मीनाक्षी मंदिर को देख लीजिए कितना खूबसूरत है, जो
1: कलाकृति
0: देख चोल पल्लव आदि राजाओं ने जो बनाया था मंदिर वो सच में देखने लायक। मैं तो मीनाक्षी मंदिर को देख करके हतप्रभ रह गई, क्या ऐसा भी बनाया जा सकता है,
1: इतनी कला उसमें है, इतना हाँ। बारीकी
0: और जीवंत लगते हैं क्योंकि मूर्तियां उनमें स्थापित हैं, जीवंत मूर्तियां लगती हैं। अगर उन्हें देखने जाइए तो ऐसा लगेगा कि जीवंत है, अभी बोल पड़ेंगे। ऐसे ही अभी एक महालक्ष्मी मंदिर बनाया गया है, मैं तिरुपति गई थी, तिरुपति के पास
1: ही पहले पड़ता है
0: हाँ। तो वहाँ पूरे सोने की का मंदिर है और कमल के आकार में जो है चारों तरफ मैदान है। तो सारे को पार करके आप महालक्ष्मी मंदिर तक जाएंगे और लक्ष्मी मंदिर सच में लगता है कि महालक्ष्मी जो है पूर्ण वैभव और विलास के साथ वहाँ स्थित है। तो ये सब बहुत खूबसूरत लगता है। तो मनुष्य कृत भी बहुत सुंदर है और ईश्वर कृत तो सुंदर होंगे ही। तो अब देखिए यहाँ पर जो विश्वकर्मा की बात बताई गई है तो विश्वकर्मा के लिए कहा जाता है कि इन्होंने कैसे बनावटी चित्र बनाए कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है इसका भी पता नहीं चल रहा, इसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहे थे। और कहते हैं आगे कि सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनि जनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। हे मुनि, प्रमुख द्वार पर शुद्ध स्फटिक जैसा बनावटी बनाया हुआ नंदी वास्तविक नंदी जैसा ही लग रहा था। उसके ऊपर अलौकिक रत्न जटित पुष्पक विमान था जो शुभ्र पल्लव तथा चामरों से सुशोभित था। मतलब कि हर चीज इन्होंने जो लिखा है वेदव्यास जी ने, उन्होंने तो अपनी दूरदृष्टि से लिखा है और जो दूरदृष्टि उनकी थी वो कम नहीं थी। जो महाभारत दिखा दिए संजय को, श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में वो दिखा दिया, तो उनके विषय में क्या
1: अलौकिकता थी, अलौकिकता थी, अलौकिक शक्ति थी
0: जी।
1: तो लीना जी बहुत ही सुंदर ये वर्णन चल रहा है शिव पार्वती के विवाह का, लेकिन क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ कि चार पंक्तियाँ सुनाएं और हमारे भक्तों को शिव में बनाएं।
0: कहते हैं परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम योगी परम मनस्वी, परम योगी परम मनस्वी, परम यशस्वी परम शक्तिशाली और कौन है, केवल शिव, केवल शिव।
1: बहुत बहुत ही महिमा युक्त आपने ये शब्द जो है रचे हैं और सुनाए हैं जो हमारे श्रोताओं को, तो आप सब सोचते ही रहेंगे और शिव में ही बने रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लीना,
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में पुनः हम यहीं पर मिलते हैं आपको रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

0: और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें, नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
0: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
1: बिन बुलाए मेहमान,
0: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म, कौन कौन से गुण हैं उसके?

0: मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या? कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है। खुद के बारे में जानना, आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है? शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं? क्या वो नेचर वाला, या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
0: तो यही चीज जो है वहाँ पे, उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहां मेरा मेंटल फाइट है, जहां द्वंद है, जहां मैं कंफ्यूज हूं, जहां डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहां पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा यह गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं हैं, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम
0: शरीर से जुड़े हुए होते हैं। तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है, और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है, और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं, उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं। 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव 107.8 FM पर। नमस्कार।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागले खदासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हम आपको रागलेखा दासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुंचकर उसका निर्मल जल जी भर कर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मयाद युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता, आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्यवन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए हैं और यक्षों से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों के झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए सरोवर में उतर पड़े। जब वे राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी शादी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीम ने। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाए। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। भद्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ भी कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र रास्ता चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है तो इसके आगे जाना उनके अनुमति नहीं थी।
0: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया। वो बोला, मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकश और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे। वो मशादी महर्षि गण स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर भयानक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस पर भीमसेन गए थे उस पर आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दब कर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूल राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, है रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडिन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को चोटें करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। जिस समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख कर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ अलग कर दिया।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं लागली खदासी जी से। अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा लागली खदासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लागली खदासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
1: जी। जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया है, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे।
0: हाँ जी।
1: तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाते पांडवों को। 7वें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहां उन्हें राजऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया। उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहाँ 7 दिन रात निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि बड़ी तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृष्ण था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी, पनव, शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यही बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को नाम कर केवल परम सिद्ध और देवऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की पर्चियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यहीं निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। अब हम एक प्रसंग लेते हैं, भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था तो भी सर्प के चंगुल में फंस कर वे बेकाबू हो गए। उधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। दुष्ट ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर बोला, राजन मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मानव इंद्रियों को विजय प्राप्त करी
2: जी।
1: उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया, मैंने मन मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे इस अवस्था में पहुँचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। उसी के शाप के अनुसार दिन के छठे माह भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज सुनो, इसमें सत्य दान क्षमा सुशीलता क्रूरता का अभाव तपस्या दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो पर भ्रमी है और सुख दुख से परे है, वह यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, इसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है, सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोल चाल मैथुन मित्रवर्ती जन्म मरण ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वे शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकटता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। सर बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली बात ही सुन लिया। अब तुम मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है। अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्व उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है, अहिंसा और प्रिय भाषण इसमें किसका महत्व अधिक है किसका कम। सर बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यंभावी फल को कैसे भोगता है। सर्प ने कहा, राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम क्रोध लोभ हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही तरह की योनि में जन्म लेता है। फिर सत्कर्म का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी तिरय की योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इसका आधार क्या है, इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते। विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि इंद्रिय और मन से युक्त होने पर भोक्ता बताया है वही हमारे अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों या प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। दृष्टि बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो। तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर्व ने कहा, यह धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत्त हो गया था और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब सेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में मैं जब स्वर्ग का राजा था दिव्य विमान

0: विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर खोकर नीचे मुख किए गिर रहा हूँ। अगर सीने की से याचना की भगवान मैं प्रमाद व विवेक शून्य हो गया था, उससे आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मैं शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर पुण्यों का फल प्राप्त होगा। महाराज तो ये है तुम्हारी भाई महाबली भीमसेन, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्लोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया, दिव्य देह धारण करके वे पुनः स्वर्लोक में चले गए।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे, वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसपे स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते ही होंगे ना कि जब दूध फट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसका जो पानी होता है हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद पनीर जो है हम उससे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब लेकिन ये जो पनीर है खाने में तो स्वादिष्ट होता है, इससे अलग अलग चीज़ें भी आप ज़रूर बना सकते हैं। कभी हम पनीर भुर्जी बना लेते हैं तो कभी हम कुछ सेट करके उसको कोई सब्जी पनीर की बना लेते हैं। लेकिन पानी का क्या? अब पानी जो उसका है, अब उसको तो हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ख़राब है। अब अगर आप भी फेंक देते हैं ना तो आज से रुक जाइए। कभी भी अगर दूध फट जाए या फिर ना भी फटे तो जानबूझ के आप जो दूध है इसको आप फाट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेशन 107.8 FM। फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मैंने विरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हफ्ते के सातों दिन 2 घंटे का हमारा सफ़र जो है ये रहता है और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बात अब मैं कर रही हूँ बहुत ही एक खास टॉपिक की। बात हम कर रहे हैं ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर आप उसको फाड़ा है आपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है। वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है। और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों, उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है। इसमें यह होता है कि देखिए जैसे ये जो पानी है ये यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है, इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है। तो बस वही पाउडर जो है वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये चाहे जिम जा रहे हैं एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो फटा हुआ दूध होता है, उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वे प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है नेचुरली। जो दूध जब फटता है ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वही है पावर हाउस प्रोटीन का। जी हाँ, फटे दूध में, पानी में जो है, इसका जो पानी होता है इसमें लैक्टिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में काफ़ी मदद करते हैं, और ये पेट को हल्का रखने में और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है। इसमें मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हल्की कम मात्रा में जो है वो होती है आपके आंतों में, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है। कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है। और ये जो है भाई, मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे। और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है। कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल रखने दो, मैं आपसे बातें मैं कर रही हूँ और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है, हड्डियों को मजबूती जरूर देगा, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिंस है तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. त्वचा को जवां और चमकदार दिखाए रखने में भी काफ़ी काम करता है, जबकि विटामिन और मिनरल्स जो हैं बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार हैं, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप. सब्जियों को उबाल के उसके उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनो रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है. हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
1: ज्वाला ये मेरा वादा है.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें। आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ, और बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की। जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, अगर आपको जीवन जीना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग ज़रूर करें। अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं। और वो कैसे? वो होता है योग से। जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं। और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी। अब ये बातें क्या है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, हफ्तों के सातों दिन मैं आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें, फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको कटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंग आसन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर सारे फायदे मिले। इसी के साथ साथ एक और आसन है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है और वो है सेतु बंधना आसन। अब ये जो आसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंधना आसन, इस आसन के अभ्यास से ही जो है, अगर आप इसका अभ्यास सिर्फ कि बॉडी और दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देता है, अगर आप आसन करते हैं सुबह थोड़ी देर, अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपके पूरे दिन जो है आपकी जो रिचार्ज है आप हो जाएंगे, आपके पूरे दिन जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। सेतु बंधना आसन जब आप करेंगे तो इससे फायदे तो आपको मिलेंगे ही साथ ही, और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा मैट लेना है, पीठ के बल आपको लेट जाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको पैरों को घुटनों से आपको जो है आपको मोड़ना है और उसके बाद दोनों पैरों पर आपको वजन डालते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। हाँ, तो आप हाथ चाहे तो आप पैर से या पीछे से आप पैरों को पकड़ सकते हैं और या फिर आप उंगली को आपस में फंसा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इस स्थिति में रहते हुए आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करके रखनी है और सांस आपको लेती और छोड़ते रहने हैं। बस इसके बाद ये जो आसन हो जाएगा इसको कुछ देर आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा। तो चलिए, ये तो आसन है काफ़ी ज़्यादा आसान और आपको ये करना है आसन रोज़ सुबह, जल्दी जल्दी से सुबह उठ के आसन आपको करना है। और अपने सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में बातें मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा शांति देंगे. जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तनासन की. जी हाँ, उत्तनासन ये जो है, इसे करते टाइम ऊपर से आपको लेकर लोअर, मतलब आपकी पूरी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी की हो जाएगी, जो ना सिर्फ आपकी मसल्स की टेंशन को दूर करती है बल्कि दिमाग को भी, दिमाग की जो टेंशन है इसे भी दूर करेगी. तो दिमाग को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये आसन आप जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी. इसके लिए आपको क्या करना है, उतना आसन करने के लिए मैट पर आपको सीधे खड़े हो जाना है. लंबी गहरी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है और हाथों से पैरों को, आपको जो पंजे हैं ये छूना है, इसको कोशिश करनी है. कुछ टाइम आपको जो है अपने घुटने के पीछे की ओर दर्द जरूर होगा, महसूस होगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिन में ही ऐसा हो, क्योंकि ये आसन कम से कम अगर 50 सेकंड भी आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है. 50 सेकंड काफी ज्यादा हो सकते हैं बिगनर्स के लिए. तो अगर आप, जितना भी आपको लगे कि अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आपको कठिनाई आ रही है, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए. इतना ज़्यादा फोर्सफुली आपको अपनी बॉडी के साथ जो है वो नहीं करना है, जितना हो सके शुरुआत में उतना करना है. धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब भी आप योगा करते हैं. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में. मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है. इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है. तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी देर ये आसन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा. बालासन करने के लिए आपको योगा मैट

जानू शीर्षासन। जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है। इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है। जब आपने अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को जांघ के पास आपको लेकर के आना है और दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करना है। सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी को आगे की ओर आपको झुकाना है और बाएं पैर के पंजों को आपको पकड़ना है, कोशिश करनी है और इस स्थिति को आपको सर को आपको बाएं पैर से आपको घुटने पर रखना है। इस आसन को करने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड आप कर सकते हैं या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10 से 12 बार इस आसन को ज़रूर कीजिए। कुछ सेकेंड्स के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का। तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी। अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। बात अब मैं कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आज कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि अनसंग हीरोज की है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमल प्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूं, कमल प्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी, जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमल प्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमलप्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमलप्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो। और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्रे घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमलप्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक रेडियो मैनवरच नाउ 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी. आपको बता दूं मैं कि अब बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है पावर प्ले विद आर्टिस्ट. एक्चुअली में कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर के आ जाती हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है. लेकिन कहीं ना कहीं सितारे खो गए, लेकिन खोने हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि इनकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे. बात अब मैं कर रही हूँ कबड्डी की छोटी शेरनी रितु नेगी की. जी हाँ, ये जो कबड्डी के मैदान में जब उतरी, मैदान छोटा हो या जिंदगी, रितु हर टैकल के बाद और स्ट्रांग होती रही. रितु नेगी एक हिमाचली लड़की जिसके कबड्डी का पहला जो टेस्ट है वो स्कूल में उनका मिला. और वो स्कूल की एक इकलौती लड़की थी जो भाई बॉयज के अगेंस्ट कबड्डी खेला करती थी. लोग कहते थे कि इसे शादी इससे कौन करेगा, और ये तो कबड्डी खेलती है तो इससे शादी तो कोई नहीं करेगा. पर रितु ने सोसाइटी के सब नॉर्म्स इग्नोर किए. उन्होंने हिमाचल वुमेन्स टीम ज्वाइन करी और उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप ये जीत गए और फिर इंडियन वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम की कप्तान भी बनी. एशियन गेम्स 2023 में रितु ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर रोल प्ले किया. जमीन से जुड़ी रितु आज भी अपने गांव के ट्रेनिंग ये जो है वो बच्चों को देती हैं, यानी कि लड़कियों को देती हैं, और नए प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं. वो गिरती है, उठती है और फिर से वही खड़ी हो जाती हैं और उसी जज्बे के साथ खड़ी होती हैं कि उनको अब अगला मेडल लेकर के आना है. रितु की कबड्डी जिंदगी का लेसन बन गई. और आप देखिए कि कितना कमाल कि गोल्ड मेडल लाने में भी, इंडिया को, भारत का नाम रोशन करने में भी रितु का काफी बड़ा हाथ है इसमें. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं अगली आपको कहानी की भी आपको बताऊंगी किसकी आपको बताने जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले अभी लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, एपिसोड 2, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक। और ये कार्यक्रम है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित।
1: दोस्तों, लीजिए, फिर आ गया वही दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से कर रहे थे इंतजार।
2: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
1: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
2: दोहराना है हमें यह संकल्प और यह व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
1: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय। इस बार धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
2: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
1: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा।
2: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
1: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
2: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें हर गांव।
1: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बाहर।
2: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
1: यही है स्वच्छ सुजल गांव अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य फेज 1 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डिफिकेशन फ्री ODF भारत बनाना था और फेज 2 में हर गाँव को ODF प्लस मॉडल बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक को स्थापित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।
1: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था। और सच्चिका, तुमको याद है ना, देश के सभी गाँवों ने स्वयं को ODF घोषित किया था। अब ये ना कह देना कि ODF गाँव क्या होता है।
2: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का मतलब खुले में शौच मुक्त गांव, ओपन डिफिकेशन फ्री है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है

0: जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता और वहाँ की महिलाओं की निजता और गरिमा सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाती है। सही बताया ना?
1: बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गांव ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वह होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठोस एवं तरल कचरे का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एवं जल का जमाव ना हो।
0: इसमें ये सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
1: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटे नहीं।
0: अच्छा, लेकिन मुझे ये पता है कि अब तक 5.01 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गाँव में गंदला जल प्रबंधन और 5.32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
1: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो मानव रचना 107.8 और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुकी हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना।
3: ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो। मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है।
2: ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF
3: प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारी विशेषज्ञ ने कितने अच्छे से सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
0: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, कैसे?
0: अलग अलग गाँव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ?
0: चलो तुमको रामपुर गाँव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।
4: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां दूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।
5: आ गई मैं दूषिका, गांव की गलियों और कूड़े के ढेर से निकलकर, कभी निष्क्रिय शौचालय में, कभी गंदे घरों में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर लापरवाही करने से निष्क्रिय हो जाते हैं, वहीं तो बसती हूँ मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। गंदा और निष्क्रिय शौचालय मेरा आशियाना, फैला हुआ गंदा पानी और टूटा नल मेरा ठिकाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
6: घर में शौचालय तो है पर नल की टोटी खराब है। कितनी बार रमेश के पिताजी को कहा बनवा दें, लेकिन सुनते ही नहीं। ऐसे शौचालय ना होने पर तो क्या हम फिर से खेतों में जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो ODF है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
5: ये है मेरी एक और जीत।
7: हमारे कुछ शौचालय निष्क्रिय हैं और वे लोग उनको ठीक नहीं करवा रहे हैं, इस वजह से भी शायद पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े थे। सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: गांव वाले गांव में गंदगी भी फैला रहे हैं और गांव में लगाए कूड़ेदानों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
8: घर में जगह होने के बाद भी घरों के गंदे पानी से गांव में जल भराव कर रहे हैं।
5: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम खुद शौचालय साफ नहीं रखते, उसके रखरखाव का ध्यान नहीं करते और गांव में भी कूड़ा इधर उधर फेंकते हो, कूड़ेदान का भी प्रयोग नहीं करते।
4: एक दिन गांव में एक युवा आत्मविश्वास से भरपूर आंखों में नए भारत के निर्माण का सपना लिए सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव जाता है।
1: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है और सब इतने दुखी क्यों हैं और ये इतनी गंदगी क्यों है भाई?
6: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो
8: सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं।
1: सब समझ गया चाची, सब समझ गया मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये अस्वच्छता है।
0: मैं हूँ इन सब का कारण, बोलो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। हाँ, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कुछ दिन में तो तुम्हें भी मैं अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा, तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब मैं सब समझ गया। देखो मैं कुछ दिनों में तुम्हारा कैसे सफाया करता हूँ।
0: मेरा सफाया क्यों करोगे? मैं तो उन गांव वालों को निशाना बनाती हूँ जो गंदगी फैलाते हैं, जो अपने शौचालयों का रखरखाव नहीं कर रहे हैं, गीले कचरे सूखे कचरे के बीच अंतर नहीं जानते हैं, जो ये भी नहीं जानते कि जैविक कचरा यानी घर की रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे सभी लोगों पर मैं राज करती हूँ, उनकी यही लापरवाही मेरी जीत है। लेकिन जनता को स्वच्छता के बारे में समझाने का काम तो तुम्हारा है सुजल।
1: दूषिका तुम गलत हो, यह काम अभी भी हो रहे हैं और हमारी गांव की जनता को समझ है। वह स्वच्छता को कायम रखने के लिए शौचालय के रखरखाव, गांव की स्वच्छता के लिए गीले सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी समय समय पर करती रहती है, समझी दूषिका?
0: हाँ, समय के साथ जनता जागरूक होती जा रही है, लेकिन गंदला पानी तथा मलिय कचरा प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने में अभी काफी समय लगेगा।
9: दूषिका, गंदला जल प्रबंधन और मलिय कचरा प्रबंधन भी सभी गांव में विभिन्न माध्यम जैसे सोखता गड्ढा घर और सामुदायिक स्तर पर वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट, डीवॉट्स और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे संरचनाओं से की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, देखना आने वाले दिनों में गांव की जनता कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी।
4: सुजल गांव में स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है।
1: शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी माताओं बहनों बेटियों की गरिमा है। ये हमें बीमारी से अस्वच्छता से बचाते हैं, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। अपने घरों के शौचालयों का रखरखाव और उनकी सफाई करना, मरम्मत करना घर वालों की जिम्मेदारी है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सही कचरा प्रबंधन और गंदला जल का निपटान भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो।
4: धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय की नियमित सफाई शुरू करते हैं और गांव के लोग एकजुट होकर सामुदायिक शौचालयों का भी रखरखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधन और गंदला जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था। लोग इस दिशा में काम करने लगे। दूषिका बेचैन होती है, गाँव की गली में छिप कर देखती है।
0: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां साफ कर दी है, क्या ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया? दुर्गंध कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? गंदला जल नहीं फैला? अरे अरे, ये गांव में ये सब क्या हो रहा है?
4: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छता।
9: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ जैविक सूखे एवं प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वहीं रहती हूँ मैं स्वच्छिका।
4: अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है।
10: शौचालय

0: स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ शौचालय।
1: अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे गंदगी को निगल रही है, मेरी बीमारियों का साया खत्म होता जा रहा है। सूजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा? शौचालय का नियमित रूप से रख रखाव हो रहा है, नाली साफ कर दी, घर पर ही कूड़े कचरे का निपटान हो रहा है, घर का गंदला जल घर के किचन गार्डन में या सोखता गड्ढा में ही प्रयोग हो रहा है।
2: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं।
3: खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ, अपना कूड़ा कचरा करो सही निपटान, तभी बढ़ेगी गांव की शान।
2: दूषिका थक कर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
1: मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदला। अब मुझे जाना होगा।
2: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
4: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वो लौट सकती है, इसलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
1: अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है? गंदा तो होना ही है, एक दिन छोड़ दो क्या फर्क पड़ता है? गांव में कूड़ा कचरा फैलने दो और जल जमाव होने दो।
5: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका। गंदे शौचालय और गंदगी से ही बीमारियां बढ़ती हैं। अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
6: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है। देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को अपनाओ।
1: औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाएं? अब नहीं बोलोगी?
4: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सुनो सब लोग, शौचालय के प्रयोग के साथ जरूरी है हाथ धोना। शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
3: हम सब समझ गए हैं दूषिका, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और गांव में स्वच्छता रखेंगे, और हमारा गांव ओडीएफ प्लस मॉडल बनाएंगे, तुम्हें दूर भगाएंगे।
1: ओह, ये तुम सब क्या कर रहे हो? लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो?
4: नहीं दूषिका, अब उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। सूखा और गीला कचरा को सही तरीके से निपटान करें, गंदला जल के लिए सोखता गड्ढा और सही तरीके से नालियों का निर्माण साथ ही रख रखाव किया जाए, प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, मलिये कचरा प्रबंधन के लिए गांव के आसपास FSTP बनाएं या पास ही के शहरी FSTP या STP में जुड़ें।
2: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा। हर घर में शौचालय है, लोग कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हैं, गांव में जल जमाव नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका हार चुकी है। ये है असली स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर।
0: स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी, हर दिल की अब तैयारी।
3: सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है नए भारत की पहचान।
4: मजा आ गया ना? हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हुई कमी को लेकर इस तरह का नाटक खेला जा रहा है। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जन आंदोलन के जरिए बता भी रहे हैं कि ये मिशन भारत की प्रगति में योगदान दे रहा है। आइए इस संदर्भ में एक स्वच्छाग्रही से की गई बातचीत को सुन लेते हैं।
5: स्वच्छाग्रही ये कौन होते हैं?
4: स्वच्छाग्रही वो व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति गांव में जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छाग्रही अब हमारे साथ है,
7: प्रताप जी, जो कि ग्राम पंचायत मौजपुर बल्लभगढ़ से है। कृपया बताइए कि एक स्वच्छाग्रही के रूप में गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियां संचालित करते हैं?
8: मैडम जी, हमने अपने ग्राम पंचायत में स्कूल में जाकर लोगों को, बच्चों को जागरूक किया है
7: जी,
8: साफ सफाई के लिए और यूजेस ऑफ टॉयलेट के बारे में बताया है हमने
7: जी।
8: कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर जाएगा तो हम पेनल्टी वगैरह का प्रावधान भी कराएंगे और आंगनवाड़ी में महिलाओं को बताते हैं हम
7: जी
8: साफ सफाई के बारे में
7: जी। सर, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके अनुभव में गांव के लोग स्वच्छता एवं शौचालय उपयोग के प्रति कितने जागरूक हैं और इस संदर्भ में आपको समुदाय से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है?
8: मैडम जी, जागरूक तो सभी हैं। अभी हमारे गांव में कोई भी टॉयलेट के लिए, लैट्रिन के लिए बाहर नहीं जाता, सब अपने टॉयलेट का ही यूज करते हैं
7: जी।
8: कोई भी बड़ा बूढ़ा या कोई भी बच्चा भी, कोई भी बाहर नहीं जाता बिल्कुल।
7: तो जागरूकता पूरी है
8: जी। मैम, सहयोग तो सभी का ही होता है, तभी जैसे कि हम ग्राम सभा में लोगों से उनकी राय भी जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे और अच्छा करने के लिए क्या करें, तो वो भी अपने अपने सुझाव देते हैं तो हो जाता है।
7: क्या आपके गांव में सभी घरों में शौचालय उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्या उनका नियमित एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित हो पा रहा है?
8: यस मैम, 100% हमारे गाँव में टॉयलेट है
7: जी
8: और यूज भी हो रहा है उसका।
7: और सर, गांव में जल आपूर्ति, उपयोग एवं जल संरक्षण यानी पानी बचाने के प्रति वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति क्या है? क्या समुदाय इस दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहा है?
8: बिल्कुल कर रहा है मैडम जी। हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सोकपिट भी बने हुए हैं, जो सामूहिक स्तर पे सोखते गड्ढे बनते हैं वो भी बने हुए हैं और तालाब भी है हमारे गाँव में।
7: अच्छा,
8: नियमित रूप से साफ सफाई होती रहती है तालाब की भी।
7: और पूरा गांव सहयोग करता है इसमें?
8: जी मैम, पूरा गांव सहयोग करता है
7: जी। सर, गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की वर्तमान व्यवस्था क्या है? इसके प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां क्या है?
8: मैडम जी, हमारे गांव में, पूरे गांव में वेस्ट कलेक्शन के लिए एक ट्रैक्टर हायर कर रखा है, एजेंसी हायर कर रखी है हमारे गाँव में ग्राम पंचायत ने, उसके द्वारा हमारे गाँव से वेस्ट कलेक्शन होता है और उसके बाद में उसको सेग्रीगेट करके साइड में रखते हैं। उसमें गत्ता, प्लास्टिक, पॉलिथीन वगैरह और जो भी घरेलू कचरा निकलता है, जो गलनशील होता है, उसको वहाँ पे डाल के वो लोग एक कंपोस्ट पिट बनाया हुआ है, उसमें डाल के वो खाद तैयार करते हैं जी।
7: आपकी बातों से बहुत, मतलब हमें प्रेरणा मिली है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका गांव पूरा सहयोग करता है। और एका, अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अब अंत में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के निवासियों को?
9: मैडम जी, हमारे गांव के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और सभी लोग हमारे ठोस कचरा प्रबंधन ले लो या फिर तरल कचरा प्रबंधन ले लो या फिर कोई भी टॉयलेट की अवेयरनेस ले लो, सभी में हमारे गांव के लोग अच्छी भागीदारी निभाते हैं और हम यही मैसेज देना चाहेंगे अपने गांव के लिए कि आगे भी हमारे गांव के लोग इसी जो कार्य चल रहा है इसमें आगे भागीदारी सुनिश्चित रहे, आगे भी करते रहें
7: जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।
5: स्वच्छाग्रही सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। एक स्वच्छाग्रही बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
4: मुझे ऐसा लगता है सुजल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है और आगे भी सारे गाँव को ODF प्लस मॉडल बनाकर ये जन आंदोलन भारत को आगे ले जाएगा।
5: सही कह रही हो स्वच्छिका। मैं जब छोटा था, गांव के स्कूल में जाता था, तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज मैं सक्रिय होकर इस जन आंदोलन में सहयोग दे रहा हूँ।
4: तुम गांव के स्कूल में पढ़े हो?
5: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई है और इसीलिए मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य एक स्वच्छाग्रही की तरह काम कर रहा हूँ। स्वच्छता को हम सबका स्वभाव और संस्कार बनाने में और बनाए रखने में और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
4: एक बात और, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हर स्तर राज्य जिला और ग्रामीण पर स्वच्छता समितियों का गठन कर स्वच्छता का कार्य सुनिश्चित किया जाता है तथा ग्राम स्तर की जल एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता संबंधी काम जैसे शौचालय निर्माण व्यवहार परिवर्तन अभियान और ODF प्लस मॉडल सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है।
5: बस बस मैं सब समझ गया। तुमको बताऊं वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति की सदस्य हैं।
4: मैं सब समझ गई।

0: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने को कहा था।
1: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उनमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छाट भी लिए हैं। सुनते हैं उन श्रोताओं के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन।
2: पहला स्लोगन है जिसको लिखा है कमलेश जी ने श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ से। स्लोगन है, स्वच्छ हो वायु धरा और पानी, स्वस्थ गांव की यही निशानी। दूसरा स्लोगन है जिसको लिखा है सुनीता जी ने, जो कि हैं गांव अंखीर फरीदाबाद की रहने वाली। सुनी सुनाई बातों पे ना देना ध्यान, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो यही है उत्तम ज्ञान। अगला स्लोगन है जिसको लिखा है अनिल जी ने गदाखोर बस्ती से, पानी बचाओ प्रदूषण हटाओ स्वस्थ गांव का रास्ता पाओ।
1: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लेकर भेजे हैं, हमारे श्रोता को बधाई और धन्यवाद।
0: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है और इन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़े दान होते हैं?
1: तो भेजिए जल्दी से जवाब, हमारा नंबर है 8010781078। सही जवाब भेजने वाले के नाम शामिल होंगे अगले अंक में।
0: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे, और वह आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज की इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
1: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
0: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
1: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रख रखाव के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए खुश रहिए स्वच्छ रहिए, प्लास्टिक के थैले को उपयोग ना करें, यत्र तत्र कूड़ा ना फेंकें, कूड़ा कूड़े दान में डालें, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत सुंदर भारत।
0: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो मानव रचना 107.8। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आपको पता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद हमारे रेडियो स्टेशन का सबसे लंबा कार्यक्रम है। महिला सशक्तिकरण पर पिछले इतने लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूं। ऐसी सशक्त महिलाएं जो सशक्तिकरण का काम कर रही हैं, ऐसी सशक्त महिलाएं जो आने वाली पीढ़ी को सशक्त कर रही हैं, और ऐसी सशक्त महिलाएं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे मिलने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर उषा यादव। ये चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की, और न सिर्फ ये चेयरपर्सन है लेकिन ये एक सशक्त और डायनेमिक महिला है। इनकी जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। डॉक्टर उषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: उषा जी, कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण, और अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो हर महिला के लिए सशक्तिकरण की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, तो क्या कहेंगी आप?
1: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप में इतना मजबूत और स्वतंत्र बनाना है कि वह अपने जीवन के फैसले खुद ले सके।
0: जी देखिए भैया, महिलाएं अगर देखा जाए तो बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन पर्यावरण या फिर अगर हम कहें कि आसपास का जो माहौल है वो उन्हें आज भी बहुत सारी बेड़ियों में बांध कर रखता है। सबसे बड़ी बेड़ी जिसमें महिलाएं आज भी बंधी हुई हैं वो है जिम्मेदारी की बेड़ी। हालांकि ये जिम्मेदारी परिवार है, ये जिम्मेदारी समाज है, ये जिम्मेदारी उनका अपना घर है, लेकिन कई बार उनके जीवन के कुछ अहम पड़ाव में ये बेड़ियां वाकई बेड़ियां लगने लगती हैं। तो सशक्तिकरण वहां है जहां महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिल रहा है, जहां महिलाओं को बराबरी का मौका मिल रहा है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक यानी आपको सुना रही हूँ एक बेहतरीन सा गाना, फील गुड फील।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की, और एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं इन्हें एम्पावर्ड तो बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एजुकेशनिस्ट होती है ना, वो आने वाली पीढ़ी को भी एक नई राह दिखा पाती है। उषा जी, हर सदी में महिलाओं के पास अलग अलग किस्म के चैलेंजेस थे। मतलब कभी तो आप याद करें, महिलाएं पैदा ही नहीं हो पाती थी, बच्चियां पैदा ही नहीं हो पाती थी, कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत कॉमन सी चीज थी हमारे देश में। फिर धीरे धीरे शायद ये समस्या कम हुई, फिर हम आगे बढ़े, फिर एजुकेशन का अधिकार नहीं था, फिर एजुकेशन का अधिकार मिला। आज महिलाएं स्वावलंबी हैं, अपनी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने पाया है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग हैं। क्या लगता है, क्या चैलेंज है आज के जमाने का?
1: चैलेंज में शिक्षा का तो बहुत अभाव है, अभी गांव में तो बहुत कम होता है, भ्रूण हत्या लिमिट से ज्यादा होती है, जिसमें कि हम लोगों का कंट्रोल ही नहीं होता। शिक्षित डॉक्टर भी इस तरह के करते हैं तो वो गलत है। और मैं यही बताना चाहूंगी कि जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की, मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान ने की कवित्री थी, उन्होंने बताया था, बहुत अच्छी कविता लिखी है, बूंदेले हर बोलो मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: जी, तो देखिए भाई, ये जो सशक्तिकरण है ना, इस सशक्तिकरण को आगे फैलाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन परेशानी ये है कि क्या हम अपनी अभी की जो चैलेंजेस हैं उनसे निकल पाए हैं या नहीं। और उनसे निकलने के लिए सबसे पहली जरूरत है शिक्षा की। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की। डॉक्टर उषा, अब बात करते हैं आपके सशक्तिकरण की। आप चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल के, साथ के साथ आप सामाजिक कार्य में काफी ज्यादा अग्रणी हैं। मुझे बताइए कि क्या कभी जिंदगी में आपने कोई ऐसा सशक्तिकरण भरा कोई डिसीजन लिया हो, या कोई ऐसा आपका कदम जहां आपको लगा हो कि मुझे कोई इस बात का आज भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने जो कदम लिया उससे मैं आज एक सशक्त महिला हूँ। आपकी जर्नी को आप कैसे डिफाइन करेंगी?
1: मैंने सीमित धारणाओं को तोड़कर जिम्मेदारी को स्वीकार किया और आत्मकरुणा के साथ निर्णय लेने की क्षमता विकसित की। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें मैंने विश्वास और दृढ़ता से मैंने अपने जीवन का नियंत्रण पाया, क्योंकि मैंने भी एजुकेशन भी प्राप्त की तो बड़े मध्यम वर्ग से मैं हूँ और बहुत अच्छे से मैंने मेहनत करके विद्या प्राप्त की और मध्यम वर्ग परिवार में ही मेरा विवाह हुआ, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से अपने निर्णय लिए, लेकिन मुझे निर्णय लेने में कोई आपत्ति नहीं आई क्योंकि मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया।
0: वाकई देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है ना, तो उसकी सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे अहम इकाई होती है उसका परिवार, और अगर परिवार आपके साथ है ना, तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी युद्ध को, बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं। तो आई थिंक सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली जरूरत है घर में सोच का बदलाव। अगर आपकी सोच बदल रही है तो सशक्तिकरण आप फैला भी पा रहे हैं और सशक्तिकरण को आप महसूस भी कर पा रहे हैं। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का सुना रही हूँ आप सभी को एक बेहतरीन सा गाना। जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील नाइस।
2: ये हुई ना बात।

No.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, एफआरजी भावना, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। भाई सैटरडे की शाम है, यानी महिला सशक्तिकरण पर बात करनी है। महिला सशक्तिकरण पर जब बात करती हूँ तो आपको एक सशक्त महिला से मिलवाती हूँ। आप उनके जीवन के पन्नों को पलटकर सुनते हैं और साथ के साथ आप उनके सशक्तिकरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं डॉक्टर उषा यादव की बात करूं, तो इन्होंने कोई भी दुनिया का अलग काम करने के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने वो सोचा जो शायद नॉर्मल लोग कहते हैं कौन सा नया काम है। जी हाँ, लेकिन यही वो सबसे पहला बीज है जो सशक्तिकरण फैला सकता है। जब शिक्षा आप किसी को दे देते हैं ना, तो आप उनके जीवन को बदल देते हैं, आप उनके जीवन को एक सोच देते हैं, आप उनके जीवन को एक समझ देते हैं। और यही खूबसूरत सा काम आज की हमारी बहुत ही खास गेस्ट डॉक्टर उषा यादव कर रही हैं। डॉक्टर उषा, अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूं, तो अक्सर आपने देखा है कि हम ये कहते हैं कि बहुत सारी इक्वालिटी आ रही है, आज हमारी लड़कियां लड़कों के बिल्कुल बराबर है, महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं जो सही नहीं है। क्या लगता है, क्या है ये चीजें कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ आने के लिए हमें और किन चीजों की जरूरत है?
1: हमने शिक्षा कानून में काफी प्रगति की, लेकिन लैंगिक समानता के लिए समाज में अभी भी पितृसत्तात्मक मानसिकता की कमी है।
0: वाकई देखिए ना, मतलब हमेशा हम देखते हैं ना, माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जहाँ पर लोगों के विचार ही नहीं बदल रहे हैं। घर परिवार में आज भी ये फीलिंग है कि ये लड़की है और ये तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, तो इसके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए, बेटे पर लगाइए, वो इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक ये वाली फीलिंग रहेगी ना, तब तक हमारी ये जेंडर इक्वालिटी आएगी ही नहीं। और ये कहाँ से आ सकती है? ये हमारे घरों से आ सकती है, ये हमारी सोच से आ सकती है। और अगर हमारे देश का एक एक इंसान बिल्कुल ऐसे सोचने लग जाए ना, तो हम अपने देश के पूरे विचारों को बदल सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ, फील गुड फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं डॉक्टर उषा से। डॉक्टर उषा, अभी हमने ना बात की है जेंडर इक्वालिटी की और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब जेंडर इक्वालिटी वाकई कहीं है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, अक्सर आपने देखा होगा, खास तौर पर मैं अगर रूरल सेटअप की बात करूं तो अर्बन से ज्यादा रूरल में और शायद अर्बन में भी एक बड़ी परेशानी है। जब कभी भी एक लड़की अपना करियर आगे बढ़ा रही होती है तो करियर और परिवार, इन दोनों के बीच में आता है सबसे पहले चॉइस परिवार की। और लड़कियों को अक्सर ये कहा जाता है कि आप परिवार को चूज करो। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अच्छा खासा करियर, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर वो किसी भी अच्छी पोस्ट पर हैं, उन्होंने अपना करियर क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि परिवार के देखरेख की जरूरत थी। छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद एक महिला को कहा जाता है भाई अब आप नौकरी ना करें। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि लड़कियां अपना करियर भी आगे बढ़ा सकें, अपनी पहचान बरकरार रह सके और साथ के साथ अपने परिवार का भी ख्याल रख सकें?
1: करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा और टाइम मैनेजमेंट और आपसी समझ बहुत जरूरी है। महिलाएं घर के कामों में पति को भागीदारी बढ़ाकर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का उपयोग करके और काम व घर के बीच बाउंड्रीज बनाकर दोनों में संतुलन बना सकती है।
0: डॉक्टर उषा, आपने कहा कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और पुरुषों से घर के कामों में थोड़ी से सहयोग मांगने की, क्या आपको लगता है कि ये बदलाव वाकई आ सकता है? मतलब पुरुष जो हैं वो एक ऐसे माइंडसेट के साथ जीते हैं जहां उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम हमारे काम नहीं है, और चलिए मान लीजिए कि हम ये कहें कि वो ये करना चाहते भी हैं तो उन्हें इसका कहीं ज्ञान ही नहीं होता है क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया ही नहीं जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
1: उसमें महिलाएं अपना पूरा सहयोग करें, तन मन से उनको समझाए कि भाई ये काम आप लोग भी हमारे साथ करोगे तभी तो हम उन्नति कर सकेंगे और तभी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।
0: हाल ही में मैंने एक छोटा सा सर्वे करने की कोशिश की थी डॉक्टर उषा, और उसमें ना मैंने बहुत सारी यंग लड़कियों से पूछने की कोशिश की थी कि क्या वो आगे बढ़कर शादी करना चाहती हैं और एक परिवार का हिस्सा बनना चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियों का ये कहना था कि हम इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद हमारी आइडेंटिटी और हमारा करियर दोनों ही खत्म हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद हम एक परिवार का हिस्सा बनते हैं और जिस नए परिवार में हम जाते हैं हमें पहले उसके हिसाब से ढलना होता है। चलिए वो भी कर लें, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए हमें अपने करियर को सैक्रिफाइस करना होता है। और अक्सर ये ऐसा होता है कि आप दूर दराज के एरिया में चले जाते हैं, शादी तो आपकी कहीं भी हो सकती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उस परिवार में लोग उन्हें अपने करियर को आगे ले जाने के लिए हाँ ना करें। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है या फिर मैं अपने शहरों की पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां पर आज की लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहती हैं। और आप देख भी रही हैं कि आजकल शादियों की उम्र 25, 22, 23 ना होकर 31, 32, 33 हो गई है। तो क्या लगता है इन चीजों पे कहीं हम रोक लगा सकते हैं या कोई बदलाव लाया जा सकता है?
1: बदलाव तो शिक्षा के द्वारा ही ला सकते हैं हम।
0: जी जी, तो शिक्षा के जरिए आप क्या कहती हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं हम?
1: शिक्षा यदि एजुकेटेड होगा तो वो समझेगा अपने मन की बात को, वो जैसे हस्बैंड है वो वाइफ को समझा सकता है, वाइफ हस्बैंड को समझा सकती है, तभी तो काम आगे बढ़ सकता है, तभी संतुलन बन सकता है परिवार का।
0: देखिए डॉक्टर उषा ने ना बड़ा सही कहा है कि सबसे पहले जरूरत ये है कि पुरुष और महिला ये दोनों आपस में सामंजस्य बैठाएं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप अपने घर की इकाई में हैं, आपकी जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, समाज की सबसे छोटी इकाई आपका परिवार है, आपका घर है। अब सब कुछ घर से शुरू होता है, परवरिश घर से शुरू होती है, सोच माइंडसेट घर से शुरू होता है, यहाँ तक कि आपके विचार आपके घर से होते हैं। आप अपने घर में जो देख रहे होते हैं ना बिल्कुल वैसा ही आप दूसरों के साथ करते हैं। डॉक्टर उषा, अगर मैं आपके घर की बात करूं तो आपके बच्चे ये देखते हैं कि मम्मी सुबह तैयार होती हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है, उन्हें स्कूल भी देखना होता है, उन्हें सामाजिक कार्य भी देखने होते हैं, तो उन्होंने शायद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आने वाले समय में हमारे जो स्पाउस या हमारे काउंटर पार्ट या हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं किसी तरीके के बिजनेस में होंगे, तो ये एक्सेप्टेंस जैसे आपके परिवार में आई है, आपको लगता है कि बहुत सारे घरों में अब ये एक्सेप्टेंस आ गई है?
1: ज्यादातर परिवारों में अब आ गई है, जो कि दोनों कर रहे हैं, जहाँ सर्विस तो हस्बैंड भी उसका सहयोग कर रहा है और लेडीज भी कर रही है आपस में।
0: देखिए भाई बहुत सारा बदलाव आ गया है और कुछ बदलाव आना बाकी है, लेकिन इस बदलाव को कौन ला सकता है? हम सब मिलकर ला सकते हैं, और मिलकर हम इस बदलाव को जानते हैं कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले अपने घर में इस बदलाव को इम्प्लीमेंट करके। तो करिए एक छोटा सा प्रयोग, जैसे कि हम जब स्कूल में होते थे तो हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते थे ना, ऐसे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स अपने घर से शुरू करिए। अपने घर के बच्चों को इक्वल जिम्मेदारी दीजिए, चाहे वो बेटा है या बेटी है, और अपने घर के पुरुषों को भी जिम्मेदारी देने की कोशिश करिए। जब वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब ये जिम्मेदारी के रूप में वो करेंगे, और अगर वो मना कर देना कि मुझे नहीं आता, तो आप भी अडिग होकर करवाइए। तो छोटे छोटे कामों से शुरुआत करेंगे ना, तभी जाकर बड़ी जिम्मेदारियां निभाने लायक वो बन जाएंगे। करिए ये छोटा सा एक्सपीरियंस और जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाने से पहले क्या खास मैसेज या संदेश आप उन्हें देकर जाना चाहेंगी?
1: मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं करें, दोनों को पढ़ाया जाए, काम भी बरोबर बांट दिया जाए। और जैसे सुबह मैंने तो अपने बच्चों को भी ये, जब छोटे बच्चे थे तो मेरे पास भी एक लड़का एक लड़की थे, दोनों बच्चों को मैं सुबह एक ही काम के लिए चाय बनाने के लिए खड़ा करती थी, तो दोनों को खड़ा करती थी और सुबह दोनों को जल्दी उठाती थी। और ये शिक्षा नहीं थी कि लड़का रात को लेट आए या लड़की जल्दी आए, ये नहीं, सबको बरोबर मैंने उसमें रखा।
0: वाकई देखिए भाई, ये कहते हैं ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। डॉक्टर रूषा ने अपने दोनों बच्चों को हमेशा समानता से पाला और आज एज एडल्ट वो दोनों अपने आप को समान महसूस कर रहे हैं। ना बेटे को ये लगता है कि भाई बहू सारा काम करेगी, ना बेटी को ऐसा लगता है कि ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। सो अगर इसी प्रकार की भागीदारी, इसी प्रकार की जिम्मेदारी हर घर में निभाई जाए तो हमारा देश ही बदल जाए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: मैडम आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: और दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, आपसे ले रही इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुप्रश्न 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आपको तो पता ही है मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम, जिसमें हर हफ्ते मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं, जिनमें आज भी इंसानियत जिंदा है। एक तरफ हम सब ये कहते हैं कि आज के जमाने में इंसानियत खत्म हो गई और इंसान इंसान न होकर मशीन बन गया है, सेल्फिश हो गया है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं और अपनी इस दुनिया से और साथ के साथ अपने इस खूबसूरत से जेस्चर से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, उनका नाम है कविता वैद्य गुप्ता। कविता गुप्ता जी को-फाउंडर हैं विन ओवर कैंसर की। इसी के साथ साथ ये इन्वेंटर हैं इंडिजीनियस कॉटन फैब्रिक बेस्ड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस की, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये टेडेक्स स्पीकर भी हैं। ढेर सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। और महिलाओं की मैं बात करूं, वेमेन ऑफ इंडिया अवार्ड 2016 इन्हें मिला है, इंडियन वेमेन अचीवमेंट अवार्ड 2017, नारी चेतना अवार्ड 2018 और अवार्ड बाय वेमेन इकोनॉमिक फोरम 2019। जिस तरीके का काम ये कर रही हैं, मुझे पता है आने वाले समय में जो सवाल मैं पूछूंगी, जो कहानी आप सुनेंगे, आपकी आंखें नम जरूर होने वाली हैं। लेकिन ये कहानी इतनी जरूरी है कि आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सबको पता होनी चाहिए। सो आज मानवता की राह पर मैं चलने वाली हूँ कविता वैद्य गुप्ता जी के साथ, और उसके लिए मैं करूंगी इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन।
0: कविता जी, सबसे पहला सवाल, विन ओवर कैंसर, यानी डेफिनेटली आपका जो एनजीओ है ये कैंसर के लिए काम करता है, मुझे बताइए इसका ओरिजिन और इसके ओरिजिन के पीछे का कारण क्या रहा?
1: इसके ओरिजिन के पीछे मेरे हस्बैंड थे, सीए अरुण गुप्ता, और ये उनका ही इनिशिएटिव था। जब उन्हें खुद कैंसर डायग्नोज हुआ
0: जी,
1: तब उन्होंने और कैंसर पेशेंट्स से बात करनी शुरू करी, और उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन है कैंसर पेशेंट्स में। तो उन्होंने एक जज्बा दिखाया कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं काम करना है, मुझे और पेशेंट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और इस एनजीओ का जन्म मैं कहूँगी एक हॉस्पिटल रूम से हुआ, जहाँ पे उनको खुद कीमो लग रही थी, और वहीं से हमने ये काम करना स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने देखा कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैंसर पेशेंट्स को, हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम किस तरह से कैंसर के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। तो इस एनजीओ की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई, और जिस समय मेरे हस्बैंड अपने, जिसे कह सकते हैं, वर्स्ट कीमोज ले रहे थे उस टाइम पर
0: जी।
1: जब लोग अपना जज्बा छोड़ देते हैं, उस टाइम पे ना सिर्फ हमने अपना जज्बा संभाला, हमने प्रेरणा दी और कैंसर पेशेंट्स को भी उससे लड़ने के लिए।
0: देखिए भाई, दिल को छूने वाली कहानी। जैसे अगर आप देखें, अक्सर लोगों को अगर किसी भी जटिल या फिर ऐसी बीमारी होती है जिसे हम जानलेवा कहते हैं, ऐसी बीमारी होने पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि चलिए मैं औरों की जान बचा लूं, हर इंसान ये सोचता है चलिए अपनी पीड़ा कम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी होती है, और शायद कुछ ऐसे ही, मुझे ऐसा लगता है कि खास लेजेंडरी अरुण जी रहे, जिन्होंने शुरुआत की विन ओवर कैंसर की, यानी खुद तो एक बहुत ही जटिल लड़ाई वो लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाने की कोशिश की, और उनके इस सपने को आगे लेकर जा रही है ना सिर्फ उनकी पत्नी कविता गुप्ता जी, लेकिन साथ के साथ उनकी दो बड़ी प्यारी बच्चियां भी। कविता जी, ये तो मैंने लोगों को बताया कि आप अलग किस्म की ब्रेस्ट प्रोथेसिस और ब्रास बनाती हैं उन सभी महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो चुकी होती है और उनके ब्रेस्ट का रिमूवल हो चुका होता है। अब मुझे बताइए कि आप कैंसर पेशेंट्स की मदद कैसे करती हैं?
1: सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने प्रोस्थेसिस इजाद किया, इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है।
0: जी।
1: जब मेरे हस्बैंड के कीमोस चल रहे थे 2016 में, उस टाइम पर उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर सुमंत
0: जी।
1: एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैम, आप लोग एनजीओ चला रहे हो तो आप मेरे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो हैं, जो गरीब तबके से हैं, उनको ये प्रोस्थेटिक ब्रा सर्जरी के बाद नहीं मिलता है पहनने के लिए, क्योंकि ये किसी भी पैनल में नहीं आता है, ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप प्लीज़ इनको कहीं से डोनेट करवाइए। तो वो मैंने उस टाइम पर मुझे खुद नहीं पता था कि प्रोस्थेटिक ब्रा क्या होती है। पहले मैंने इंटरनेट की मदद से खुद समझा कि ये क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत है। फिर मैंने उस समय, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने एक और एनजीओ से वो ब्रा एक पेशेंट को दिलवाई, जो कि डॉक्टर साहब ने उसको बहुत नकारा, मुझे गुस्सा किया कि मैम ये फोम की बनी हुई है और ये पेशेंट्स को और ज़्यादा नुकसान करेगा, हीट होगी, बैक्टीरिया पनपेगा, स्वेट होगा, फ़ायदा करने की बजाय नुकसान देगा। साथ में उन्होंने मुझे समझाया कि ये सिर्फ हम सोचते हैं कि औरतों के लिए कॉस्मेटिक यूज़ है, कि सिर्फ उनको लगे ना कि हमारी एक ब्रेस्ट नहीं है दूसरी, एक कॉस्मेटिक बाहरी सुंदरता के लिए, जबकि इसका एक मेडिकल यूज भी है। इसके अंदर थोड़ा वेट होना चाहिए, जिससे कि जो बॉडी में हमारे दोनों तरफ भगवान ने वेट इक्वल दिया है, जब हम एक लेडी की ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं तो बॉडी की एक तरफ से उसका थोड़ा वेट भी हट जाता है।
0: yes.
1: तो इस वजह से लॉन्ग रन में जाके उसको लेडी को कंधे में दर्द रहने लग जाएगा, उसके कमर में दर्द रहने लगेगा धीरे धीरे, और बहुत केसेस में लॉन्ग टर्म में स्पाइन तक टेढ़ी होने लग जाती
0: है। oh
1: my God. तो इसके ये इसका मेडिकल यूज है और ये जरूरी है पेशेंट्स को पहननी। तब मैंने ये सब चीज़ समझ के मैंने उनसे प्रश्न किया कि सर फिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के। तो उन्होंने बोला आप खुद सोच लो, आप खाली बैठे रहते हो यहाँ हॉस्पिटल में सारा दिन। और वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं छू गई। और सबसे पहले मैंने जो ओपीडी में और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आते थे जो हॉस्पिटल में एडमिट, मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, तो पता चला कि इस चीज़ की नीड इतनी ज़्यादा है कि एक लेडी के लिए अपनी ब्रेस्ट का खोना और ज्यादा शॉकिंग होता है कैंसर से डायग्नोज होने के।
0: बाप रे,
1: कहती हैं कि कैंसर से तो मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर ठीक कर देंगे, पर मेरी ब्रेस्ट तो नहीं वापस आएगी, मैं कभी सुंदर तो नहीं लगूंगी।
0: ओह माय गॉड।
1: तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं छू गई। मैंने कहा क्या कर सकती हूँ, क्या सोच सकती हूँ। मुझे दिमाग में आया कि इंडिया में हम कॉटन फैब्रिक यूज करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि कॉटन अपने आप में एंटी माइक्रोबियल होता है, तो क्यों ना मैं उससे कुछ करूँ। और बस वहीं से वो शुरुआत हुई। और मैं कुछ प्रोटोटाइप बनाती थी घर पे कॉटन फैब्रिक्स को यूज़ करके, फिर डॉक्टर सुमंत को दिखाती, फिर वो मुझे फीडबैक देते थे कि इसमें अब आप सॉफ्टनेस लेकर आओ, इसमें इस तरह से यूज़ हो। तो 6-8 महीने में मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया और दिसंबर 2016 से हमने ये प्रोस्थेटिक ब्रा जो है सबसे पहले एम्स में फ्री बांटनी स्टार्ट करी
0: जी।
1: और तब से आज तक हम 10,000 पेशेंट्स को ये बांट चुके हैं, कितनी सारी महिलाओं को। और हम हर साल एक फीडबैक लेते हैं जिसमें पता चलता है कि कितनी खुश हैं वो औरतें ये पाकर, कितनों ने घर से बाहर जाना शुरू कर दिया, कईयों ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है
0: जी।
1: इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज ऐसी थी कि जिन्होंने मतलब उनको शर्म आती थी अपने बेटे अपने और रिलेटिव्स के सामने जाने में, वो अब बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं सब तरह। तो ये देख के एक बहुत दिल को राहत मिलती है एक बहुत ज़्यादा, कि हाँ एक मैंने कुछ ऐसा इजाद किया जो आज हजारों हजारों महिलाओं को मदद कर रहा है।
0: वाकई देखिए, एक तरफ तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो ढेर सारे ऑन्कोलॉजिस्ट करते ही हैं, लेकिन अगर हम इमोशनल सपोर्ट की बात करें या उस चीज़ की बात करें जो शायद एक महिला की पहचान होती है, उनके स्तन, और अगर वो स्तन ही रिमूव कर दिया जाए तो ना वो तरीके से कपड़े पहन सकती हैं, क्योंकि क्या सारी कैंसर की जितनी भी पेशेंट्स हैं उन महिलाओं के लिए अलग कपड़े डिज़ाइन किए जाएंगे। और ये एक बहुत चैलेंजिंग कंडीशन है जहाँ आप अपने जीवन के काफ़ी साल स्तन के साथ होते हैं और सडनली वो रिमूव कर दिया जाता है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्हें वो कॉन्फिडेंस वापस देने की कोशिश कर रही हैं कविता गुप्ता जी। सब बात करते हैं कविता जी, आपकी इस पूरी टीम की। एक तरफ तो आपको ये ख्याल आए कि चलिए भाई महिलाओं के लिए स्तन बहुत जरूरी है और उनके लिए ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस लिया जाए, और उसी के साथ साथ उनके लिए इस प्रकार की ब्रास बनाई जाए जिससे कि वो उन्हें पहन सके। बट ये काम बिल्कुल आसान नहीं होगा। घर पर 6 महीने में आपने जब एक प्रोडक्ट डेवलप किया तो उसको इतने सारे लोगों के लिए डेवलप करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। सो कैसे शुरुआत की, कैसे है आपकी टीम और कैसे कर पाती हैं ये काम?
1: मेरी टीम में आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी टीम में 99% लेडीज हैं
0: जी।
1: उसमें से मोस्टली अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं। एक रूरल हरियाणा के गांव में हमने अपनी वर्कशॉप लगाई है जहाँ पर 5 से ज्यादा लेडीज आज की डेट में काम करती हैं, ये ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस बनाती हैं वहाँ पर
0: जी।
1: और उनके अंदर भी मैं चेंज देख रही हूँ, पिछले 5 साल में कितना सशक्त हुई है वो, अपने ही फैमिली में अपने बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दे पा रही हैं, अपनी फैमिली को और अच्छे से सपोर्ट कर पा रही हैं। साथ में हमारी जो बैक ऑफिस टीम है उसके अंदर 2 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने हमारे से ही ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस लिया और फिर उन्होंने रुचि दिखाई कि मैम हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप हमें काम दीजिए। तो उनमें से 2 जो अब वो आज खुद उस स्थिति से ऊपर आकर और अब वो खुद और पेशेंट्स की काउंसलिंग करती हैं साथ में, तो ये सब चेंजेस देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब रियल हैप्पीनेस जो है ना वो हैप्पीनेस इज इन गिविंग एंड एम्पावरिंग अदर वुमेन।
0: एक्चुअली भाई देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ कि जब आप कोई भी अच्छा कदम उठाते हैं और कोई भी अच्छा या नेक काम करने की राह पर चलते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं, लेकिन वो जो डगर होती है ना वो डगर होती बड़ी मुश्किल भरी है और उन चैलेंजेस को फेस करना आसान नहीं होता है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप उस हिम्मत के साथ उस डगर को पार कर जाते हैं। भाई कैंसर के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कैंसर फैल रहा है मुझे ऐसा लगता है शायद जितनी संस्थाएं खुली हैं उतनी भी कम हैं। सबसे पहली परेशानी ये है कि आज भी लैक ऑफ अवेयरनेस है कैंसर को लेकर, लोगों को पता ही नहीं है जो रोजमर्रा की गलतियां वो कर रही हैं उन रोजमर्रा की गलती से वो एक दिन कैंसर का शिकार हो सकते हैं। सो एक तरफ तो ये जरूरी है कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, तो आप लोग कैंसर पेशेंट्स को अवेयरनेस भी देते हैं और साथ के साथ उनके लिए बहुत तरीके की मदद भी करने की कोशिश करते हैं, कैसे करती हैं ये सब आप?
1: कैंसर अवेयरनेस देखिए कैंसर पेशेंट से ज्यादा पूरी सोसाइटी में होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक मिथ मिटाना जरूरी है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है
0: जी।
1: उससे पहले एक मिथ ये है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है
0: जी।
1: कैंसर 250 से ज्यादा तरीके की बीमारियां हैं जिसका डॉक्टर इलाज करता है एक तरीके से, और उसको हम एक ग्रुप ऑफ डिजीज बोल सकते हैं जो एक से तरीके की जो सेल की मेगलिनेंसी से होती है वो कैंसर कहलाया जाता है ठीक। पर जब हम देखते हैं तो कैंसर के प्रकार बहुत होते हैं, जैसे अगर हम मोटा मोटी देखें तो ब्लड कैंसर हो गया
0: जी,
1: सॉलिड ट्यूमर्स वाला हो गया जिसे हम कार्सिनोमास बोलते हैं, और मसल वाला हो गया जिसको हम सार्कोमास बोलते हैं
0: जी।
1: तो ये तो जब अगर कोई भी किसी को मान लीजिए कैंसर होता है तो वो अपनी तुलना किसी और कैंसर पेशेंट से ना करे, क्योंकि आपका कैंसर उसके कैंसर

0: अलग हो सकता है।
1: yes.
0: जैसे मेरी स्पेशलिटी मैं कहूंगी ब्रेस्ट कैंसर में
1: जी।
0: तो मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि आपकी और उनकी जर्नी सेम हो सकती है, पर सेम दवाई आपको क्या रिएक्ट करेगी और दूसरे को क्या रिएक्ट करेगी वो अलग हो सकता है, क्योंकि आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी अलग है और उनकी बॉडी अलग है
1: जी।
0: तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है कि सारे कैंसर पेशेंट्स एक जैसे नहीं होते।
1: यस,
0: बहुत आज कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत नई नई तकनीकें ईजाद हो गई हैं और लाइलाज बीमारी ये नहीं रही है। तो कैंसर इज डेथ, ये वाली मिथ सोसाइटी से निकालनी बहुत जरूरी है
1: जी।
0: साथ में एक कैंसर अवेयरनेस जो कि गवर्नमेंट भी कर रही है टोबैको सिगरेट के पैकेट्स पे दिखा के, वो तो है ही है, साथ में अपने लाइफस्टाइल को हम सुधार के भी कैंसर से बच सकते हैं
1: जी।
0: जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल हम जी रहे हैं, अपने खान पान को सुधार के हम कैंसर से जी सकते हैं। दूसरा, मैं एक क्योंकि ये अक्टूबर है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो ये अवेयरनेस सिर्फ इस मंथ तक नहीं सीमित रहनी चाहिए। मैं बहुत सारे अवेयरनेस टॉक्स लेती हूँ, बहुत सारे वर्कशॉप्स लेती हूँ जहाँ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया जाता है
1: जी।
0: और मैं सबको यही बोलती हूँ कि ये अक्टूबर में ना कराएं, आप पूरे साल कराएं प्लीज।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक इस तरीके का कैंसर है जो शुरुआती लक्षणों में हम पकड़ सकते हैं, और अगर शुरुआती लक्षणों में हमने इसे पकड़ लिया तो उससे जान बचाई जा सकती है, ब्रेस्ट बचाई जा सकती है। उससे जो है आपका इलाज बहुत आसान हो सकता है
1: जी।
0: आज के अगर हम सिनेरियो देखें तो इंडिया में हर 8 में से एक विमेन हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
1: यस।
0: तो एक सिर्फ पूरे महीने में आपको 1 मिनट देना है अपने आप को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने में, जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे को ये लक्षण आ रहा है, प्लीज आप चेक करो कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हुआ।
1: Yes.
0: और 90% टाइम वो जो गांठ है या कोई लक्षण है वो आपके हार्मोनल चेंजेस से भी हो सकते हैं
1: जी।
0: पर वो जो 10% चांस है हमें वो नहीं छोड़ना है।
1: Yes.
0: क्योंकि इतने सारे आज मैं हजारों ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर चुकी हूँ, और जो एक चीज कॉमनली निकल के आती है वो यही निकल के आती है कि ट्रॉमा ऑफ लूजिंग द ब्रेस्ट वॉज मोर देन ऑफ ट्रॉमा बींग डायग्नोस्ड विद कैंसर।
1: बापरे।
0: तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लेडी इस ट्रॉमा से गुजरे, उसके लिए उसको अपने आप को पूरे महीने में सिर्फ 1 मिनट देना है।
1: दोस्तों, जब कभी भी हम अवेयरनेस की बात करते हैं ना, तो बीमारी को लेकर हमारी एक ही सोच होती है कि ये हमें नहीं होगी, ये तो किसी और को होगी। और जब कभी भी हम ये सोचते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी कभी भी दस्तक देकर तो नहीं आती है, और ना ही वो पिक एंड चूज कर रही है। कहीं ना कहीं आपको भी देखना है कि जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम ऐसी लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं जो शायद हेक्टिक जरूर कहलाती है, लेकिन डिजीज के मायने में ये लाइफस्टाइल जो है ये बहुत घातक है। और हम एक लंबे अरसे तक इस लाइफस्टाइल को तब तक अपनाए रखते हैं जब तक हमें किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। सो जरूरी है कि वक्त रहते एक्शन जरूर लें। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा मेमोग्राफी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, महिलाएं झिझक के कारण नहीं जाती हैं। सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी मार्केट्स में, आपके घर के आसपास या आपके ऑफिशियल एरिया में कहीं पर भी अगर इस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो मात्र 10 मिनट का टाइम लगेगा, आप जाइए और अपना चेकअप जरूर कराइए और निश्चिंत हो जाइए। कविता जी, अब एक अहम सवाल, जब कभी भी हम कैंसर पेशेंट की बात करते हैं, देखिए वो कैंसर पेशेंट तो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा होता है, लेकिन उसके साथ का जो परिवार होता है उसका जो शायद कहना चाहिए मेंटल हेल्थ का बैलेंस है वो बिगड़ चुका होता है। आप तो इस जंग को लड़ चुकी हैं और अब इतना धैर्य आप में है कि आप बहुतों को इस जंग से लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स को कैंसर हो जाता है, या फिर कहना चाहिए ऐसी पत्नियां या पति जिनकी पत्नियों को कैंसर हो जाता है, उनके लिए लाइफ डगमगा सी जाती है। किस प्रकार से उन्हें इस प्रकार की अवेयरनेस दी जाए, या उन्हें आप कैसे मैनेज करती हैं कि उन्हें यह समझाया जाए कि कैंसर के इलाज के दौरान एक पेशेंट को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक हम बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि कैंसर डजंट हैपन टू अ पर्सन, इट हैपन्स टू द फैमिली.
1: यस,
0: ये पूरी फैमिली को मिलके से लड़ना चाहिए. जब मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी, और दोनों बेटियां बहुत छोटी थी उस टाइम, उन तक इस न्यूज़ को पहुंचाना और ज्यादा मुश्किल था.
1: यस,
0: बट हमने बैठ के उनसे बात करी, उन्हें सब कुछ बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है. पर उसके साथ मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि बेटा जो हो गया वो हो गया, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो वैसे ही जारी रहनी चाहिए
1: जी.
0: उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए. तुम जिस तरह से स्कूल कॉलेज जाते हो वैसे जाओ, जैसे फ्रेंड्स के साथ जाते हो वैसे जाओ, जिस तरह से तुमने उस दौरान, हम मेरे दो कजन्स की शादी थी, बच्चों ने वो अच्छे से इंजॉय करी, तो उस चीज का जो इम्पैक्ट था वो मेरे हस्बैंड पे भी बहुत अच्छे से आया. उनको कहीं भी इस गिल्ट में हमने आने नहीं दिया कि आपकी वजह से हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई.
1: यस yes.
0: तो ये तो हो गया कि हम पेशेंट को किस तरह से, फिर केयर गिवर जो होता है, मैं कहती हूँ वो दोहरी लड़ाई लड़ता है.
1: एक्चुअली
0: पेशेंट फिजिकली कैंसर से लड़ रहा है, तो जो केयर गिवर है वो भी उतना ही इमोशनली और मेंटली उस लड़ाई से लड़ रहा है. साथ में उसको अब और भी काम देखने हैं.
1: yes.
0: जो आपका पार्टनर या वो भी, और अगर मान लीजिए वो पेशेंट आपका बच्चा है तो माँ बाप के लिए वो और भी मुश्किल हो जाती है लड़ाई.
1: जी.
0: तो उस समय सिर्फ खाली, आजकल हम एक काम करते हैं, एक नए डॉक्टर्स उभर के आए, साइको ऑनकोलॉजिस्ट.
1: जी.
0: तो वो ना सिर्फ पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, वो केयर गिवर्स की भी काउंसलिंग करते हैं. हम जो अपने सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स करते हैं जहाँ पे हम पेशेंट्स को आपस में मिलवाते हैं, वहाँ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मेन जो आपका जो प्राइमरी केयर गिवर है उसको भी साथ में लेकर आइए. क्योंकि जब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक जैसे लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनको बहुत राहत मिलती है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है.
1: yes.
0: कोई और भी है इसमें जो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है. और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टिप्स शेयर होती हैं आपस में, जो जिसे कहते हैं ना नॉलेज का आदान प्रदान होना.
1: yes.
0: और वो नॉलेज आपकी एकेडमिक नॉलेज नहीं होती, वो एक इमोशनल नॉलेज होती है
1: एक्चुअली.
0: और तो इसलिए ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स बहुत जरूरी हैं फॉर द इमोशनल हेल्थ ऑफ केयर गिवर्स एंड द पेशेंट्स एज वेल, बोथ.
1: दोस्तों, जब कभी भी मैं किसी भी ऐसी बीमारी की बात करती हूँ ना जिससे आपको जान गंवाने का डर बना रहता है, सो एक चीज हमेशा होती है कि आसपास के लोगों को ना जिस दिन वो बीमारी डायग्नोज की जाती है उस दिन से एक अजीब सा डर और खौफ मन में समा जाता है, और वो खौफ होता है न जाने कितना समय है. एंड बिलीव यू मी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर डिटेक्ट ही तब होता है जब वो थर्ड स्टेज पर होता है या फोर्थ स्टेज पर होता है, और तब उसके बाद जब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बहुत कम समय बचा है, काश आप पहले आते तो ये ठीक हो पाते, तो तब ऐसा लगता है कि काश हमने इसे जल्दी डायग्नोस करवा लिया होता. लेकिन अर्ली डायग्नोस तभी पॉसिबल है जब आप अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं, जो हमारे भारत में, या मुझे कहना चाहिए कि हमारे समाज में, बहुत ही अनकॉमन चीज़ है. हम बहुत बड़ी अमाउंट को बाकी सारी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने हेल्थ चेकअप्स पर हम उन पैसों को कभी खर्च नहीं करते हैं, ये सोचते हुए कि ये जो चेकअप्स हैं ये व्यर्थ का कॉस्ट है. सो कैंसर जैसी बीमारी से बहुत अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट होने से आप बड़ी आसानी से बड़ा ही नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपके पास ये अवेयरनेस या ये नॉलेज होनी चाहिए. कविता जी, अब बात करते हैं फाइनेंसेस की. एनजीओ तो चलते हैं, काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि जब आप खुद स्ट्रगल कर रही हैं, अब तो आपकी लाइवलीहुड भी आपके ऊपर है, दो बेटियों की जिम्मेदारी आप पर है, और उसके बाद बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को आप सपोर्ट करवा रही हैं, चाहे फिर वो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, और बहुत सारी महिलाओं को आप इस प्रकार की जो प्रोस्थेसिस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे पा रही हैं. सो कैसे मैनेज करती हैं आप ये?
0: देखिए, इसके अंदर सबसे जो कहूँगी कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है वो CSR का है.
1: जी.
0: बहुत सारी कंपनीज हमें अपने CSR इनिशिएटिव के अंडर सपोर्ट कर रही हैं, साथ में बहुत सारी फंडिंग, इंडिविजुअल फंडिंग जिसको हम बोलते हैं.
1: जी.
0: बहुत सारी फैमिली मेंबर्स मेरे ऐसे हैं जो रेगुलर डोनेट करते हैं, फ्रेंड्स हैं ऐसे जो रेगुलर डोनेट करते हैं, और कुछ फंड रेजिंग प्रोग्राम्स हम किस तरह से चलाते हैं. पर हाँ, मैं ये कहूँगी कैंसर NGO होने के नाते हमेशा एक फंड क्रंच बना रहता है.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि फंडिंग आती है उसी समय चली जाती है, क्योंकि कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा है.
1: जी.
0: आप कह सकते हैं. तो पर हाँ, भगवान की दया से बना हुआ है। आज हमें 5 साल हो गए और हर साल हम जितने पेशेंट्स को ये ब्रास बांट पाते हैं वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पहले हम सिर्फ दिल्ली NCR में बांट रहे थे, आज हम टाटा मेमोरियल बॉम्बे में भी बांट रहे हैं, CMC वेल्लोर में भी बांट रहे हैं। तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ें बढ़ रही हैं और फंडिंग भी बस उतनी ही चाहिए ही भी होगी आगे। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी अगर कोई डोनेट करना चाहता है हमें तो हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकता है।
1: दोस्तों वाकई मतलब देखिए, जब कभी भी मैं किसी भी NGO से पूछती हूँ कि आप नेकी का काम करने तो चले हैं लेकिन नेकी आप अपने घर से ही कितने दिनों तक कर सकते हैं, जो अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है और वो लोग हम बन सकते हैं। कविता जी आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि कोई आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है और साथ के साथ मान लीजिए कि कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या तीनों प्रोविजंस में वो आपके साथ जुड़ सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे?
0: हाँ, आप अगर किसी कैंसर पेशेंट्स की मदद करना चाहते हैं, और मदद सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती जी, आप अपना समय भी देख के आप टाइम डोनेट कर सकते हैं अपना, उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.winovercancer.net, उस पे जाके एक वॉलंटियर फॉर्म है, आप वो भर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं winovercancer.net@gmail.com पे। और अगर आप हमारे को कोई फाइनेंशियल डोनेशन देना चाहते हैं तो उसका लिंक भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर www.winovercancer.net पे। तो जो डोनेशन होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल डोनेशन नहीं होती, टाइम डोनेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना फाइनेंशियल डोनेशन।
1: जिस प्रकार से हम महिलाओं की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं साथ के साथ समाज के अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन्स भी आप चलाती हैं और क्या इसमें भी लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं?
0: हाँ जी, मैं बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं हम, जिसमें कैंसर जनरल कैंसर अवेयरनेस टॉक्स होती हैं या फिर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस टॉक्स होती हैं और वर्कशॉप्स होती हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए जी, जो आज के समय में हर महिला को आना चाहिए। वो चाहे तो अपने ग्रुप में, अपने कॉर्पोरेट में, अपनी सोसाइटी में इस तरीके की वर्कशॉप हेल्ड करवा के, इस तरीके की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा के भी हम, मैं तो कहूँगी हमारी मदद कर सकते हैं, अपनी मदद के साथ साथ हमारी मदद कर सकते हैं कि हम अपने इस मिशन में आगे बढ़े कि हर महिला को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली लक्षण पता होने चाहिए
1: जी। सो दोस्तों वाकई हम सब इनकी मदद कर सकते हैं और मैं आप सभी से पर्सनल अपील करूंगी कि ये मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। विन ओवर कैंसर एक बहुत ही खास फाउंडेशन है, एक बहुत ही खास संस्था है जो न सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रही है लेकिन बहुत सारी ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं को इस प्रकार का जीवन दान दे रही है जो जीवन दान उन्हें हमेशा चाहिए। दवाइयों से वो अपने कैंसर को तो जीत पाती हैं लेकिन एक बार उनका ब्रेस्ट चला जाता है तो एक अजीब किस्म का जिंदगी में खालीपन आ जाता है, उनकी पर्सनालिटी में खालीपन आ जाता है जिसको भरने की कोशिश कर रही हैं कविता गुप्ता जी। और देखिए भाई, मैं हमेशा ये कहती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने दुख से ऊपर उठकर लोगों के दुख को समझें, जो कविता जी ने बखूबी समझाए। कविता जी, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहती हूँ जिस चीज को शायद आप हर रोज अपने अवेयरनेस सेशन में या लोगों को बताने की कोशिश करती हैं, कुछ बेसिक मिथ्स जो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर रखती हैं, क्या आप उन्हें आज इस प्लेटफॉर्म से बस्ट करना चाहेंगी और उन्हें डूज और डोंट्स बताना चाहेंगी?
0: देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको कहूंगी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मिल रही है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए
1: जी,
0: किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा मिथ जो फैल रहा है वो है कि ब्लैक ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अंडर वायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आपको बहुत सारी लेडीज को गांठ पता चल जाती है पर वो उसको चेक नहीं कराती है ये सोच के कि इसमें दर्द नहीं है। 90% टाइम्स जो कैंसर की गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता है
1: जी।
0: तो ये सोच के किसी भी लंप को, किसी गांठ को नजरअंदाज ना करें कि उसके अंदर दर्द तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं
1: जी।
0: फिर एक और जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि हम किसी प्रकार की बायोप्सी या FNAC जो एक टेस्ट होता है, नीडल वाला जो टेस्ट होता है, वो करवाएंगे तो हमारा कैंसर फैल जाएगा।
1: जी
0: ऐसा कुछ नहीं होता है, कैंसर इस तरह से नहीं फैलता है। अगर वो फैला होगा तो वो पहले से ही फैल चुका होगा आपके। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसको प्लीज एक बार किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस कर ले कि भाई हमने ये कहीं पे पढ़ा है या सुना है तो ये सही है कि नहीं है। डीओज लगाने से कैंसर हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा मिथ आजकल चल रहा है कि चीनी खाने से कैंसर हो जाता है।
1: Oh my God.
0: चीनी खाने से तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है क्योंकि हम ओबीज हो जाते हैं। तो चीनी कोई कैंसर पेशेंट्स का खाना नहीं है चीनी।
1: Exactly.
0: कि कैंसर सेल को उसके ऊपर ही फीड करना है, ऐसा नहीं है। कैंसर सेल तो अपने आप ही बढ़ते हैं। तो प्लीज ये ना सोचे कि चीनी बंद कर देंगे तो हमें कैंसर नहीं होगा। चीनी का और कैंसर का, चीनी और ओबेसिटी का डायरेक्ट है नाता, पर चीनी और कैंसर का डायरेक्ट कोई नाता नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे मिथ्स हैं जो चल रहे हैं, तो उनको बस्ट एक डॉक्टर ही कर सकता है, मैं तो कहूंगी।
1: वाकई, और मुझे ऐसा लगता है कि कविता जी जब आप इन सेशंस को लेने जाती होंगी अवेयरनेस, आपको बड़ा कई बार आश्चर्य होता होगा कि लोग न जाने किन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं, और डॉक्टर्स बेचारे जो इतनी अच्छी सलाह आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। सो बहुत सारी मिथ्स हैं। देखिए वाकई महिलाओं को तो मैं जरूर कहूंगी, रात भर अगर आप ब्रा पहनकर सो रहे हैं तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी प्रकार अंडरवायर ब्रास अगर आप पहन रहे हैं या फिर काले रंग की ब्रा पहन रहे हैं, देखिए हर चीज का सिर्फ एक डायरेक्ट नाता नहीं है। हाँ, अगर आप हर रोज काला पहन रहे हैं, आप सन से एक्सपोज्ड हैं, सो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। सो जानकारी सही लीजिए, और जरूरी है कि डॉक्टरी सलाह लेते रहे। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कविता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे इन सभी लिसनर्स को?
0: एक खास संदेश मैं देना चाहूंगी कि एक लाइन बहुत फेमस है कि जॉय ऑफ गिविंग, और मैं कहती हूँ कि इट्स द पावर ऑफ गिविंग। मैंने जब ये काम स्टार्ट करा, वो शायद मेरी लाइफ का वर्स्ट पीरियड था।
1: जी।
0: मेरे हस्बैंड कैंसर से जूझ रहे थे, उनका कैंसर का बहुत रिग्रेस ट्रीटमेंट चल रहा था जिससे कि वो काफी बीमार रहते थे, और उस टाइम पे मैंने ये काम शुरू करा। और जब मैं एक एक पैकेट प्रोस्थेटिक ब्रा का, जिसको हम डिग्निटी पैक बोलते हैं, मैं खुद एम्स जाती थी उस टाइम पर और बांटती थी, और जब मैं एक एक पैकेट अपने हाथ से देती थी तो मुझे एक पावर महसूस होती थी। वो पावर क्यों महसूस होती थी कि मैं हर समय ये सोचती थी कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मेरे पास फाइनेंसेस हैं हस्बैंड का इलाज कराने के लिए, मेरे पास नॉलेज है कि उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। जो यहाँ पर आ रही हैं ये लेडीज, इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनके पास इस तरीके के कोई भी साधन नहीं है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आराम से इलाज करा। तो वो चीजें देख के मुझे खुद अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक अलग शक्ति मिलती थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई ऑलवेज फाइंड द पावर इन गिविंग। तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स लाइफ, आज के में कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी प्रॉब्लम से ऊपर होके अगर हम किसी एक जने की भी मदद करके आप देखिए कभी, तो आपको जो वो पावर महसूस होगी ना अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, वो भगवान एक अलग ही शक्ति देता है।
1: डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको भगवान दुख दे रहा है ना, तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति और उस शक्ति से ऊपर उठकर कुछ नेकी का काम करने की राह जरूर दिखाता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरे हैं, लेकिन जब वो उस टाइम से बाहर निकल कर आए हैं तो वो इतिहास क्रिएट कर चुके होते हैं। और कुछ ऐसा ही खूबसूरत सा काम कविता वैद्य गुप्ता जी कर रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, और मैं तो इस पूरे समाज की तरफ से आपको धन्यवाद कहूंगी कि आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। और मेरी पर्सनल अपील सभी से कि भाई इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हाथ जोड़कर जरूर काम करें। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
0: थैंक यू भावना जी, थैंक यू।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास में. मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं होती हूँ आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक, जहाँ गाने आपको सुनाती हूँ और होती है ढेर सारी बातें. और आज बातों के साथ साथ मैं सिर्फ अकेले ही आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे शो में आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाली है, स्टूडियो में होने वाली है, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने जानने सुनने को मिलेगा. ये कौन है इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी. चलिए पहले नाम बता देती हूँ आपको. इनका नाम है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. लेकिन इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है. और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एक गाना सुनाती हूँ, वो गाना होता है मेरी पसंद का. तो आज भी मेरी पसंद के गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. और साथ के साथ आप अपनी पसंद सुनना चाहते हैं या कोई आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, या कोई गाना किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई दूर बैठा है उसको आप गाना सुनाना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना. मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर.

0: ये गाना आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं. साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ये यूथ को मोटिवेट कर चुकी हैं और समाज और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं. और इनका बहुत बहुत स्वागत. और ये तो सिर्फ चंद चीजें मैंने आपको बताई हैं, अभी तो बहुत कुछ इनसे जानना बाकी है. इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, हम इनकी लाइफ से जुड़े जो यू नो ऐसे कुछ ऐसे मुश्किल भरे पल रहे हम सब की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये कैसे उनको पार करके आज इस मुकाम पर पहुंची है हम इनसे जानेंगे. सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं
0: जी
1: बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और श्रोताओं से बात करने का मौका दिया. उन सबसे मैंने बहुत सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी. यही मेरा एक एम है समाज के लिए कुछ कर दिखाने का.
0: जी, समाज में जब कुछ कर दिखाने की बात आती है बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर के कुछ काम करने की चीज वो बात आती है ना, तब बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कौन ही हमारा साथ देगा या इससे क्या ही बदलाव होने वाला है या इतने सारे लोग हैं हम क्या ही कर पाएंगे. ये सोच ही कई बार ना हमें जो हम अच्छा कर सकते हैं उसको हमें पीछे कर देती है. लेकिन ये चीज़ शेफाली जी ने नहीं सोची, आज इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं. शेफाली जी, अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा यह तो मैं ज़रूर जानूंगी, लेकिन यहाँ तक आप पहुँची इसके लिए एक सोच जरूरी होती है. वो सोच डेवलप जो होती है ना वो बचपन से होती है. आई गेस आपके केस में भी ऐसे ही हुआ होगा. तो अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कैसे आपने कैसे अपना मुकाम शुरू किया, बताइए इसके बारे में.
1: मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, बस जीने की जरूरत है.
0: करेक्ट.
1: इसी के सहारे मैं आगे बताना चाहूंगी कि मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, शिक्षा विशेषज्ञ, स्टूडेंट काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, और इसके साथ साथ मैं एक ईयर टू ईयर NGO जिसके साथ मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, जो मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं. और मैं ब्यूटी पेजेंट, ग्रूमर, मीडिया पर्सनैलिटी, एक क्षितिज इंडियन आइकोनिक पोएट की संस्था है
0: जी.
1: उसमें मैं जूरी रही हूँ फॉर 7 ईयर्स
0: जी.
1: एंड RN टॉक्स के जूरी रही हूँ. ईयर टू ईयर में आपको बताया रिलेशनशिप काउंसलर हूँ. AVM में टीचर्स ट्रेनर, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ पहले. TRM में कंटेंट राइटर हूँ. मैं अपने आज के समाज को प्रेरित करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ. ULB में स्टूडेंट काउंसलर हूँ, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं. इसके साथ साथ मैं ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हूँ. मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिए हैं, दुबई, कैलगरी, कैनेडा, और बहुत सारे अलग अलग तरह की जगह से यूनिवर्सिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं. सो आजकल के दौर में नए जमाने के स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं Gen Z के साथ जुड़े, मुझे बहुत पसंद है. वो मुझे एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है उनसे बात करके, नई चीजें सीखने मिलती हैं, और एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम मैं हमेशा करती आई हूँ. इसके साथ साथ क्योंकि मैंने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड था, इसीलिए मीडिया मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, मेरा पैशन है. सो मैंने रेडियो द्वारिका में काम किया है, NewsX में थोड़े दिन काम किया है, वेयर आई वॉज करेक्टिंग द कंटेंट्स एंड ऑल. सो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत में इंस्पिरेशन मुझे पेरेंट्स मेरे 21-22 ईयर्स तक तो साथ थे ही. उसके बाद भी उन्होंने कभी भी, हम दो सिस्टर्स हैं, उनको ये नहीं फील होने दिया कि हम गर्ल्स हैं. आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. उन्होंने उस टाइम में हम सबको इतना एजुकेट किया कि आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और हम इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. फिर मेरे हस्बैंड, क्योंकि आर्मी में है, जगह जगह पोस्टिंग रही हमारी, तो हमारे साथ जितनी सीनियर लेडीज थे, जितने हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना, हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जहाँ हम हाई और लोज ऑफ लाइफ साथ में शेयर करते हैं. सो उनसे हमने बहुत सीखा. सीखते सीखते बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, फिर बच्चों ने हमें सिखाया, बच्चों ने मुझे सिखाया आज के टाइम में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है.
0: Correct.
1: कैसे हम लर्निंग को अपडेट कर सकते हैं. हमारी लर्निंग उस टाइम की है जहां हम लिखा करते थे. आजकल लैपटॉप आ गया है, आपका आई, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, फिर आपको सोशल मीडिया में एवरीडे अपलोड करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इतना ज्यादा प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना सेफ रहना है एआई के जमाने में, इतने फ्रॉड्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी। आज भी दोनों मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी यू हैव गिवन योर लाइफ टू अस, नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लरिश एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे साथ में खड़ी है, जो हूँ आज मैं वो उनकी वजह से, my sister, my parents, husband, my children, all are at the back of me.
0: तो बिल्कुल इतना सब कुछ आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं और बहुत सारी चीजें, आप एनजीओ भी चला रही हैं, फिर आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, मतलब इतना सब कुछ कि मैं किसी एक चीज से तो आपको नहीं आपको कुछ कह पाऊंगी। हाँ ये जरूर कहूंगी कि मल्टीटास्किंग लेडी से हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो है हाथ आजमाए हुए हैं और अभी भी काम कर रही हैं। कभी जब आप पीछे मुड़कर खुद को देखती हैं और जब आप ये देखती हैं कि मैंने कितना सब कुछ कर लिया है, एक ख्याल तो मन में आता ही होगा, तो क्या थॉट आता है पहले आपके दिमाग में?
1: सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसका श्रेय पूरा मेरी आर्मी फ्रेटर्निटी को जाता है। जब आप आर्मी में होते हैं, आपके हस्बैंड आगे पोस्ट होती है, तो आप अपने आप खुद बच्चे मैनेज करते हैं, घर मैनेजमेंट होता है, तो हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हमें इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन वी ट्रैवल अलोन, वी डू एवरीथिंग अलोन। ये एक जो पावर आर्मी ने मुझे दी है उसमें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जितने भी काम हम मल्टीटास्किंग के आज कर पाए हैं, इट वॉज द ग्रूमिंग डन बाय दैट। सो आई ओ माई मल्टीटास्किंग एबिलिटी and many more things to my army fraternity. My thanks to my juniors and seniors. I learnt a lot from them. बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे। और दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। I have already done almost more than 2000 stage shows. I have compared a lot, more than 4000, 5000 shows there. So एक अंदर जो आत्मविश्वास होता है, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया था, उसमें था मेरे में आत्मविश्वास, पर मैरिज के बाद कभी बच्चे हो जाते हैं, आप अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आर्मी ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि मैं अपने ऊपर खुद सबसे पहले भरोसा करूं। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आज तक मैं अब खुद को पहली प्रायोरिटी देती हूँ। माई सेल्फ केयर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, देन एनीथिंग एल्स कम्स इन माई लाइफ, इवन फॉर द फैमिली ऑल्सो। जब मैं अपनी केयर कर पाऊंगी तभी मैं फैमिली की केयर कर सकती हूँ।
0: करेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली कि जब मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी, जब मैं स्ट्रांग रह पाऊंगी तभी मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ। और ये एक बहुत ऐसी गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते भी हैं, वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को ताक पर रखते हैं दूसरों की वजह से। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुननी चाहिए, मैम से ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर शेफाली गुप्ता हमारे साथ में इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम है ये मेरी लाइफ और मैं प्रांग आपके साथ।

0: चलितो आज चलितो
1: धूम मचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। वो मेरी लॉटरी।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव योजना 107.8 FM पर. मैं हूं प्रांक आपके साथ और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जिनसे आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं. ये काफ़ी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से काफ़ी कुछ अचीव किया है. तो इनसे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं, ये सच्चाई भी है कि खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है. फैमिली को तभी हम टेक केयर कर पाएंगे, तभी हम अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, हम खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट. आज की जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, परिवार को देखने में, अपने करियर को बनाने में इतना डूब जाती हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रहता. और कहीं ना कहीं फिर जब एक एज आती है, जब हम उस चीज़ को अनुभव करने का, जब वो एक्सपीरियंस करने का जब वो पल आता है ना, तब हम अपने हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, अपने आप को लेकर परेशान होते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को?
1: आपने बिल्कुल सही कहा. आज के दौर में हम आर्टिफिशियल दुनिया में इतना आगे भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक इतने खूबसूरत इंसान हम थे. आप सोचो जब हमारा बचपन था कितना सुंदर होता था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बेफिक्र रहते थे हम. आज के टाइम में बच्चों का बचपन भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, बाहर गेम्स कोई नहीं खेलने जा रहा है. अब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, समाज में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और जहां तक आज की नारी की बात करते हैं, आज की नारी मल्टीटास्किंग जैसे आपने बोला वो करते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, आपको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. जब हम क्लास में जाते हैं, हम कुछ सुनते हैं, फिर हम होमवर्क करते हैं घर आकर, ऐसे ही हमारी बॉडी एक हमारा पार्ट है जिसको हमें लुक आफ्टर करना है. वो बेबी की तरह है, उसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना होता है. आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, योगा करना चाहते हैं योगा करिए, निकालिए अपने लिए टाइम. ब्यूटीफुल सुंदर वर्ल्ड है, कितनी सुंदर दुनिया है वहां, सुबह की ऑक्सीजन मिलती है सीधा. अपनी बॉडी के लिए जो सुबह काम कर सकते हैं आप, एक घंटा नहीं, एक घंटा शुरुआत होती है, आप 5 मिनट से तो करिए. स्टार्ट विद 5 मिनट्स, 10 मिनट्स बढ़ाइए, नेक्स्ट वीक 20 मिनट्स बढ़ाइए. कुछ चंद लम्हे उस इंसान को दीजिए जिसको सुबह उठ के आप शीशे में देखते हैं और वो आप हैं. लुक एट द मिरर एंड से यस, दिस इज मी, टुडे इज गोइंग टू बी माई डे. आज मैं जो चाहती हूँ वो मैं लेकर आऊंगी. शाहरुख खान ने भी बोला है ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने में आपका साथ देती है. तो यही अगर आप अपनी बॉडी के लिए केयर करना सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे. और शायद मैंने प्रियंका बताया था आपको, आजकल बटरफ्लाई हग बहुत चल रहा है. दैट इज, यू पुट योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर एंड से दिस इज मी, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ. सो ये जो बटरफ्लाई हग है ये एक मैजिकल हग होता है. आप शीशे में उस इंसान को जिसको आप 24 आवर्स चलाते हैं किसी दुनिया में बाहर की, उसमें थोड़ा सा टाइम देके देखिए, देखिए ये मैजिक दिखेगा आपको. दिखना शुरू विद इन सेकेंड शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये अफर्मेशंस हैं. इनको
0: सच्चे दिल से करना है,
1: सच्चे दिल से करना है. अफर्मेशंस होते हैं ना, दिस इज मी, आई इट, द डे इज बाउंड टू बी माई डे टूडे एंड इट विल हैपन. यू आर गिविंग द यूनिवर्स ऑल दीज, यू नो, ऑरा, योर ऑरा इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. तो आपकी चीजें अच्छी होंगी.
0: बिल्कुल,
1: सोच पे निर्भर करता है. मैं कहती हूँ आजकल की जितनी नारी हैं उनको यही बोलती हूँ कि आपके पास वो पावर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें डीपी लगाते हैं. मैं उसको बोलती हूँ डिस्प्ले पॉजिटिविटी. आप क्यों पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं. आपका आधा 50% काम उस पॉजिटिव सोच रखने से खत्म हो जाएगा. अगर आप सोचते हैं आज मुझे ये करना है, तो आपका आधा काम तो हो गया, उसके बाद तो आपको थोड़ा सा काम ज्यादा आगे करना है. तो सभी नारियों से मेरी यही एक मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपनी इस खूबसूरत इंसान को जिसको आप शीशे में देखते हैं उसे टाइम दीजिए, उसको ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए और खुश रखिए.
0: बिल्कुल,
1: तो आप अंदर से मन खुश होगा तो आप बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे.
0: जी, तो जादू की झप्पी बहुत जरूरी है, ये मैम भी कह रही हैं. तो अपने आप को पहले जादू की झप्पी देना शुरू कीजिए और अपने लिए अच्छा कहना, अच्छा सोचना शुरू कीजिए. और ये ना मैं बहुत मानती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है ना, और उसके बाद दिमाग में वही चीजें चलती रहती है और आप जैसा फिर सोचते हो ना वैसा ही आप रिएक्ट करने लगते हो, आप के जो एक्शंस है ना वो भी बिल्कुल वैसे ही जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। अगर आप अग्रेसिव कुछ सोच रहे हैं तो वो अग्रेसिव जो एक्शंस हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसके उलट आप सोचिए, आपको हमेशा अपने मन में प्यार रखना है, अच्छापन रखना है, अच्छा हर इंसान होता है, लेकिन उस चीज को बस अब आपको उस शैडो से निकल करके सामने लाना है, फिर आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी, आपने खुद भी कभी यकीन नहीं किया होगा, और ये खुद मैम कह रही है और इतना एक्सपीरियंस, अभी और बहुत सारी बातें हम मैम से जानेंगे, साथ के साथ मैं सुना रही हूँ गाना, तो इस वाली बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत मोटिवेट करेगा आपको ये गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

0: गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078, रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट काउंसलर है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ ही के रिलेशनशिप कोच हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लगता है जो ये कर रही हैं उनसे अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहली चीज़ जो सबसे पहले मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने कहा कि आप आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और कहीं ना एक ये सवाल सबके जहन में रहता है कि मुश्किल होता होगा ना, ऐसे कि एक डर रहता है हमेशा, राइट? एक मन में हमेशा डर बना रहता है, साथ में बच्चों को भी टेक केयर करना है, घर भी देखना है, तो कैसे मैनेज, मतलब सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, कैसे आप मैनेज कर पाती हैं इतना सब कुछ और कैसे उस डर से आप बाहर निकल पाती
1: हैं? कहते हैं खुदा ने शायद हम लोगों को चुना है इतने सारे लोगों में जो स्ट्रांग लेडीज हैं कि हम इस डर से ऊपर निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आर्मी ऑफिसर्स की पत्नी के लिए चुना है शायद, क्योंकि हमारा जो डर है वही हमारी ताकत है।
0: करेक्ट।
1: हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे यूनिट है, ब्रिगेड है या कोई भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी में, वो सब इतना साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम अकेले हैं या डर हमें कभी साथ लेगा। जैसे हम सिस्टर्स आपस में एक घर की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, वैसे ही हमारे साथ हमारे सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो कभी अकेलापन नहीं लगता है। इट्स अ बिगर लार्जर ब्यूटिफुल फैमिली विच वी कैरी विद अस, सो डर का तो सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा, डर हमें इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि हमारे हस्बैंड एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वो एक बहुत गर्व की बात है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए बहुत गर्व से सर ऊंचा करने वाली बात है, देश के गौरव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, गरिमा के लिए। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ ये कहते हुए कि बाकी सब चीजों से ऊपर जो मेरी आज पहचान है वो यही है कि मैं आर्मी ऑफिसर की पत्नी पहले हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं वो केयर, वो प्यार, वो भी कहीं की आगे बढ़ने में सपोर्ट देती है। वही एक सपोर्ट और होता है जो हमारे लाइफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो अपने परिवार वाले होते हैं, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं, मुझे बताना अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है अपने किसी लव्ड वन का। लेकिन इनका सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, और जितना आपने अचीव किया है इसमें अपनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे
1: कि बिल्कुल सही कहा इनका।
0: जी,
1: इस सपोर्ट के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: मेरे फादर हमेशा कहते हैं हमारे पास कुछ सर्कल्स होते हैं, हमारा जो इनर सर्कल है उसमें सिर्फ हम है, इट्स मी आई, जिसके ऊपर सारे लोग टिके हुए हैं। सेकंड सर्कल में आपके हस्बैंड और बच्चे आते हैं जो आपकी फैमिली बनते हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत सारी निर्भरता रहती है, उनको मेंटली सपोर्ट करना है, फिजिकली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है बच्चों को आपको, तो हस्बैंड वाइफ मिलकर ये चीजें आगे प्लान करते हैं। अब बच्चों का साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा बच्चे रहेंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। सो ये सपोर्ट हमारे सेकंड सर्कल का है। थर्ड सर्कल में हमारे आते हैं हस्बैंड के पेरेंट्स और गर्ल के पेरेंट्स, सो इन चारों भी हमारे ऊपर डिपेंड है क्योंकि हम ये इनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी लुक आफ्टर करना होता है उनको, उनकी आज की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। और तो आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स और सब हैं जो अपने आप में खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो कर लेते हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केयर के लिए भी हमें मिल जाती हैं। उसके बाद फिर हमारा आउटर सर्किल आता है जहां हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी जिंदगी हैं। आजकल के दुनिया में फ्रेंड्स होना और फ्रेंडशिप खत्म होना मैंने बहुत यंग बच्चों में देखा है। आप लोग फ्रेंडशिप को सिर्फ वहां तक देखते हैं जहां आप एंजॉयमेंट देखते हैं, आप वहां तक फ्रेंडशिप को देखते हैं जहां आप ये चाहते हैं कि अच्छा आज हम यहाँ चलेंगे, आज हम यहाँ खाना खाएंगे, आज हम मूवी साथ में देखेंगे, पर फ्रेंडशिप इससे ऊपर है। ये फ्रेंडशिप आपकी जो बनती है आपके इस सर्कल में, ये आपके फैमिली बन जाती है। कुछ टाइम के बाद आपका फैमिली फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रेंड्स फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं. आप देखिएगा 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ लाइन ही फ्रेंडशिप फ्रेंड होते हैं. वो लुक फॉरवर्ड करते हैं आज सुबह आज कहाँ जाएंगे, आज हमारी किटी पार्टी, स्पेशली लेडीज का, इवन जेंट्स का भी स्टैग पार्टीज होती है. सो उनके लिए फ्रेंड्स उनकी जान है, हम लोगों के लिए जिनसे हम सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सुख दुख को आपस में करते हैं. तो कहा भी ये गया है, एवरी मोमेंट हैज लव इन इट, एवरी आवर हैज हैप्पीनेस इन इट, इफ यू लूज इट इट बिकम्स मेमोरी एंड इफ यू लिव इट इट बिकम्स लाइफ एंड आवर लाइफ इज आवर फ्रेंड्स. सो ये सारी सर्कल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसके बाद हमारा मिला के जो बनता है दैट इज हमारा राष्ट्र निर्माण, जहां हम अपनी फैमिली के साथ अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: हमने जितना सीखा बचपन से आज तक, क्या हम उसका 1% भी अपनी सोसाइटी में गिव बैक कर पाए हैं? आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा. कई बार होता है हम डोनेशन के लिए जाते हैं, कहीं ओल्ड एज होम में जाते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं. बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं, स्पेशल नीड्स के हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ बातें करते हैं. इतनी सारी चीजें अगर हम करते हैं ये आपके दिल को सुकून देती हैं. ये सारी चीजें आपके लिए खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि हमें इतना कैपेबल आज समाज ने बनाया है कि हम उसका बहुत आभारी है कि हम उसको वापस भी ये करेंगे. दुनिया बहुत छोटी है, छोटी सी जिंदगी है, इसी में हमारी जिंदगी एक अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ निकल जाती है. सो मैं हमेशा एक मेरा बहुत मंत्र है मेरा प्रियंका, वो शेयर करती हूँ श्रोताओं के साथ, आपके साथ. मैं अपना GPS खुद लेकर चलती हूँ. आप मोबाइल उठाते हैं, आप GPS लगाते हैं, मेरा GPS मेरे साथ रहता है. जी इज फॉर ग्रेटिट्यूड, पी इज फॉर पॉजिटिविटी एंड एस इज फॉर स्ट्रेंथ, नो योर स्ट्रेंथ. बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वो कंपटीशन में आ जाते हैं.
0: जी, जी, जी.
1: पर उनको अगर अपनी स्ट्रेंथ आज पता चल जाए, आज लाइनें खुली हुई हैं बच्चों के लिए करियर में. आप म्यूजिक में अच्छे हैं, ड्रम बजाने में अच्छे हैं. आप पहले टाइम में होता था डॉक्टर, इंजीनियर और IAS और यही सब चलता था. आज तो लाइन्स ही लाइन्स हैं, जहां आप जाएंगे वहां जा सकते हैं. सो आई कैरी माई GPS विद माई सेल्फ एंड आई रिक्वेस्ट आपके सारे श्रोताओं से, अपने GPS को अपनी एक कीवर्ड बना लीजिए और दुनिया देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत हो जाएगी.
0: वाओ, अगर थॉट चेंज हो जाए तो सब कुछ हम ही है. ये थॉट ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है, लेकिन जिनके अंदर होता है ना, उनके बात करने का तरीका, उनका उनकी प्रेजेंस ही बहुत स्ट्रांग होती है. ये आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने लिए, जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि अच्छे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा, और ये हर कोई डिजर्व करता है. हम जो हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं, हम सब अच्छा डिजर्व करते हैं, राइट. आप जो भी कर रहे हैं आप उसको प्रेज करें, राइट. और कभी भी ग्रैटिट्यूड मत भूलिए, उसको हमेशा रखिए. तो ये छोटी सी चीज़ जो समझ लेता है वो अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है. रेडियो वाणा वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरे लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रागा और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. शेफाली, बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं. अच्छा, कभी एक ऐसा पल आया जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ना कभी ये आता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे. तो ये वाली चीजें ना सभी की लाइफ में होती है, है ना. कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है, और आई एम श्योर मुझे पता है आपके पास भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा ही. तो बताइए कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है इंटरेस्टिंग.
1: बिल्कुल, इंटरेस्टिंग तो कई बार हुआ है
0: जी.
1: पर अब मुझे उन लोगों पे बहुत दया आती है, तरस आता है कि कैसी सोच है.
0: और यहाँ पता मैं क्या कहती हूँ, यहाँ मैं कहती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता.
1: बिल्कुल, मैं अपनी फेवरेट हूँ. कुछ लोगों की सोच वहाँ वहीं तक सीमित होती है.
0: करेक्ट.
1: और मैंने अपनी आउटर लेयर इतनी स्ट्रांग की हुई है कि मुझे उनकी सोच से फर्क नहीं पड़ा. कुछ सोच थी, पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, उसके बाद आर्मी ऑफिसर से मैरिज हुई, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर जैसे जैसे मुझे सक्सेस धीरे धीरे मिलती गई, बहुत काम किया है. आई हैव डन ऑन फील्ड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत काम किया है मैंने, और अभी भी मैं करती रही हूँ. पर कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये कैसे आगे बढ़ गए, इनमें तो शायद ये खुद ही थी नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक है. सो आने वाले टाइम में, पिछला टाइम, अभी का टाइम, अब ये नहीं मैटर करता मेरे लिए, बिल्कुल नहीं मैटर करता है, क्योंकि वो उनका ब्रॉटअप है, उनकी सोच है, और वो वहीं तक है. मैं कहां से कहां पहुंच गई, बट वो वहीं के वहीं है. सो दैट वे आई डोंट इवन कंपेयर विद एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. मैं कर रही हूँ, मेरा सोल सेटिस्फेक्शन है, मेरा अपना जिंदगी है, और मैं अपनी तरह से अपनी जिंदगी को डील करती हूँ.
0: अगर कोई फेस कर रहा है अभी ये करंट और हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, बड़ा परेशान के चार लोगों ने दिखते नहीं है लेकिन परेशान कर रखा है, और वो उभर ही नहीं पा रहे इस चीज से, और इस वक्त वो हमें सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ऑलवेज रिमेम्बर, आई एम द बेस्ट.
0: यस,
1: नोबडी इज बेस्ट देन यू. यू नो, हमें जब मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल टाइम में, मुझे याद है मेरे फादर बोलते थे आप शीशे में देखकर अपनी प्रैक्टिस करो. तो मैं हमेशा शीशे में देख के वर्बेटम पूरा प्रैक्टिस करती थी. आई ऑलवेज यूज टू स्टूड फर्स्ट देयर. सो मैं एक ही चीज उनकी याद रखती हूँ, बोलते हैं जब आप अपना काम कर रहे होते हो तो ये सोचो दूसरे को, किसी को कुछ नहीं आता. बस. सो आई एम द बेस्ट. रिमेम्बर दिस थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. जिस तरह से आपको एक यूनिक इंसान भगवान ने बनाया है, कि हमारे तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मैच होते आपस में. सो हाउ कैन वी से कि चार लोग क्या कहेंगे, सोचना ही नहीं है. हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है, मीन्स हम यूनिक है, हमसे आगे कोई नहीं है दुनिया में. सो ऑलवेज रिमेम्बर, हम एक ब्यूटीफुल सोल है, बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छा काम दुनिया के लिए करके जाएंगे, कुछ नाम कमा के जाएंगे, कुछ यादें छोड़ कर जाएंगे.
0: आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, रिलेशनशिप की जब बात आती है आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसको लेकर?
1: कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, हमने एक सर्वे भी किया था इस बारे में. सो रिलेशनशिप को लोग आजकल सीरियसली नहीं ले रहे हैं. उनके मन में कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज्यादा है. बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, सो दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ईच अदर. अगर आप जिंदगी को हल्का फुल्का ले लेते हैं तो क्या चला जाएगा? इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर. एंड हमने देखा होगा हमारे पुराने टाइम में लोग ये सब सोचते ही नहीं थे. किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे बार में सॉरी बोल दिया, बात आगे चली गई. अभी वो थोड़ा सा भी अगर कोई बोलते हैं सॉरी तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है. सो हमारे, मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, होता है, साइंटिफिकली इट इज प्रेजेंट, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, कितना डीपली आप अपने अंदर उसको ले रहे हैं, और उसकी भी टेक्निक्स हैं. सो मैं ये बोलूंगी रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा. एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए. आपने शायद, मेरे ख्याल से शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें था कि कभी भी वो अपनी फ्रेंड से भी तू करके बात नहीं करते हैं. इवन काजोल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम, बट वो कभी भी तू करके बात नहीं करते, हमेशा आप करके बात करते हैं. या शाम को, यार आजा, शाम को चाय पीते हैं, उन्होंने कभी यार नहीं बोला. ये ऑलवेज इज, आज शाम को टाइम है तो आ जाना, आप साथ में बैठते हैं. यूज अ रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज विद ईच अदर. एक दूसरे को आप सम्मान देंगे तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, जहां आप एक दूसरे को कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं. एक लड़की है जिसने अपनी जिंदगी पूरा टाइम पेरेंट्स के पास दी है, उसके बाद वो आपके पास आई है. एक बॉय है जिसने पूरा टाइम अपने पेरेंट्स का साथ दिया है, वो आपके साथ रहने के लिए आया है. सो ये दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप साथ में है. इस बीच में ये नहीं आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने ये किया, मेरे पेरेंट्स ने ये किया, या मेरे घर में ऐसा हुआ, आपके घर में ये हुआ. दोनों का ब्रॉटअप अलग है, दोनों का स्टडी मटेरियल अलग है, जहाँ आप पढ़े हैं हो सकता है साथ में पढ़े हो. सो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी टंग से क्या बाहर जा रहा है, या इन अ वे हेल्दी के लिए अंदर क्या जा रहा है, दोनों चीजों का डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पार्टनर को ये नहीं आता. आपने उसको जज किया, जजमेंट खत्म कर दीजिए. जहाँ जजमेंट खत्म हो गया वहीं आपको ले गए, तो बहुत सुंदर इंसान है. correct. और जिससे आपने मैरिज किया वो कैसे गलत हो सकता है. हमारे यहाँ डिवोर्स वर्ड नहीं होता काउंसलिंग में, रिलेशनशिप में. हम चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा उन्होंने कम्प्रोमाइज किया, थोड़ा इधर से कम्प्रोमाइज हुआ, थोड़ा वो हैप्पी हो गए, थोड़ा हम हैप्पी हो गए. ऐसे करते करते लाइफ कब में निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद सारे रिश्तों से ऊपर है.
0: करेक्ट, करेक्ट.
1: सही. तो मेरे हिसाब से आपको पहले रिलेशनशिप में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता। डॉक्टर शेफाली, हेल्दी रिलेशनशिप को अगर रन करना है तो उसकी की क्या है?
1: हेल्दी रिलेशनशिप की एक बहुत अच्छी की है कि खुश रहिए, क्योंकि आजकल की जिंदगी में सबसे एक्सपेंसिव चीज खुशी है।
0: करेक्ट,
1: जिसका कोई मूल नहीं है। और आपके पास तो भगवान ने फ्री में स्माइल दी है। कुछ भी कोई बोलता है, छोटी सी स्माइल देके प्यार से बात कर लो,
0: करेक्ट,
1: चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाना खत्म कर दीजिए, चीजें आपको लगेगा बहुत सिंपल हो गई है। किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो जस्ट ब्लेस देम, एक दूसरे को छोटी छोटी चीजों में। आज मैंने देखा था, आई थिंक 2 दिन पहले किसी एक कपल के बीच में लड़ाई हुई, इतना गुस्सा आ गया, इतना एंगर हो गया उसमें कि उन्होंने उसको थप्पड़ी मार दिया, तो वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया। सो इतनी सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम स्टेप पर क्यों जाने दें हम इन चीजों को? जब हम दोनों की लाइफ है तो हम दोनों अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है, है ना। सो आप छोटी छोटी खुशियों को बांटिए। आज नहीं मन हो रहा उसका खाना बनाने का, कोई नहीं, बाहर से खा लीजिए, बाहर चले जाइए। आज नहीं आपको हो रहा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है हस्बैंड का मूड हो अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, तो गिव हिम सम स्पेस। ऐसी आपका मन है तो गिव हर सम स्पेस, यू नो, इट्स अ वाइस वर्सा। आपको स्पेस देनी है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ईगो साइड में रखनी है। आजकल हम सभी, आपने देखा है, सभी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, सो ये जो ईगो आ जाती है ना 30 इयर्स के बाद, ईगो से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इन सबको साइड में रख के अच्छी जिंदगी बिताइए, एंड दिस इज द की।
0: करेक्ट। एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है एक दूसरे को स्पेस देना, राइट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि आप अकेले बैठो, बहुत सारे सवाल जो हम अकेले में ही उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ना समझ में नहीं आती है आज के टाइम पर। और एक चीज़ जो मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप में ये हो जाए तो एक बेहतर रिलेशन चलेगा, वो ये है कि जो अच्छी चीज़ है ना हमेशा उस पर ध्यान दें। हम क्या करते हैं, बुरी चीज़ें हम याद रखते हैं, जहन में अपने रखते हैं, इसके बाद जब थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो वो सारी बुरी चीज़ें फिर वो सामने आती हैं।
1: का ये साइंटिफिकली ह्यूमन नेचर है।
0: यस,
1: इट्स अ ह्यूमन नेचर, नॉट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ओनली। ये हम कहीं भी देखेंगे तो हमारा नजर सबसे पहले उस पर ही जाती है कि नेगेटिव क्या है। सपोज समबडी इज वेरी वेल ड्रेस्ड, सो आप कॉम्प्लीमेंट करते करते ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या कमी है।
0: राइट,
1: ये एक ह्यूमन नेचर है जिसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल।
0: बिल्कुल, और इसे बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, लाइफ बहुत अलग कहें कि 360 के एंगल पे चेंज हो जाएगी अच्छे वे में। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रियंका, आपके साथ हर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: बम्बक बम्बक बम्बक बम्बक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वरिष्णा 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. डॉक्टर शेफाली, आपने नेशनल इंटरनेशनल कई सारे सेमिनार्स

0: सो मैं यूथ से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास रखिए, और मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें से हंस के जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हम सभी जानते हैं, इस पर अमल करिए। ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, पिछला कल क्या था उससे सीख कर हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेवलपमेंट में, हमेशा लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, इवन आप अगर रोड पर भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको एकदम अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको लगता है ये तो ठीक ही नहीं है, सो हर जगह से आपकी लर्निंग होती है, हर जगह से आप अपने पर विश्वास रखें, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट, एंड प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है मेंटल हेल्थ पर, माइंडफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, योगा है, मेडिटेशन है, और बहुत सारी अलग तरह की कलाएं हैं, पेंटिंग है, गो इन द गार्डन, आजकल तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई है हैदराबाद जैसी जगह में, जहां आपको एक प्लेस अलॉट कर दी जाती है, वहां पर आप जाकर मेडिटेट करके वापस आ सकते हैं, ये ऑफिसेज में भी उन्होंने शुरू कर दिया है, छोटा सा जंगल टाइप बना दिया है, वहां पर आप एक राउंड लेकर भी वापस आ सकते हैं, तो इस तरह की स्पेसेस हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है बिग सिटीज में, इसी तरह आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, अपने आपको मोटिवेट रखना है, जहां आप रुक गए वहां आपको लगेगा अब बस हो गया,
1: करेक्ट,
0: तो यहां से निकलना हमारे हाथ में है, ये पावर सिर्फ हमारे हाथ में है, अपने आप को खुद को मोटिवेट रखने की,
1: और सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, मतलब जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तब तक आप लर्निंग जारी रखिए, क्योंकि एक बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए, राइट। तो बातें बहुत सारी हैं, और आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मैम से, तो नंबर है हमारा 8010781078।

0: सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस वक्त काफ़ी सारी बातें हम डॉक्टर शेफाली गुप्ता से कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे साथ में हैं ये और ये जो हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करते हैं. आप सोचिए कि कितना सारा एक्सपीरियंस इनके पास में है और उसी एक्सपीरियंस से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं कि अपने आप को कैसे बढ़ाना है. और जब भी हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे लेकर जाना, समाज में कैसे अपने आप को वो दर्जा देना है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं ना. तो आप क्या कहेंगी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, यूथ हैं या जो भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
1: बहुत सारे श्रोताओं को मैं यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे पर उनसे भागना नहीं है, एक तो उनका सामना करना है, दूसरा उन चैलेंजेस को ब्रेक करिए. अगर आप एक ही बार में वो चैलेंज फेस करते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, इसे कैसे पार हो पाएंगे. लेकिन उस चैलेंज को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में लेते जाएंगे तो आपका चैलेंज नीचे नीचे ही सुधरता जाएगा. अगर आप उसको ओवरलोड करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हीप बन जाता है उसका.
0: करेक्ट.
1: तो आप हमेशा ब्रेक करिए, अपने दिन को प्लान करिए. अगर चैलेंज आता है आपके पास कि चलो आज हमें ये चैलेंज आया, इसको किस समय पूरा करना है, तो आपके माइंड उसमें उलझ गया. उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी क्योंकि आप चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो तो नहीं निकलना है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा. पर अगर आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो चैलेंज और बड़ा हो जाएगा. इसको सबसे पहले छोटे छोटे उसमें ब्रेक करिए, पार्ट्स में एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए. एक प्लान बनाइए, एक डिसिप्लिनरी प्लान बनाइए कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे. उस बीच में थोड़ा सा अपने लिए एंटरटेनमेंट का भी टाइम रखिए जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए एंड देन अगेन कम ऑन टू दैट चैलेंज. ये हर फील्ड में होता है, कोई ऐसी फील्ड दुनिया में बनी ही नहीं है जो चैलेंज के बिना प्रोग्रेस नहीं हो.
0: करेक्ट.
1: आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें भी एक चैलेंज है, सीईओ बैठकर कहीं मीटिंग दे रहा है वो भी एक चैलेंज है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए. आप एज अ मीडिया पर्सनैलिटी है, आपका कौन सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए, यू नेवर नो.
0: बिल्कुल.
1: सो इस तरह से हर फील्ड के चैलेंजेस हैं, उनका सामना बहुत हिम्मत के साथ करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है. चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसके सॉल्यूशन के साथ उसको देखना है. प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बड़ा लगेगा. इस तरह से आप उसको ब्रेक कर करके प्लान बना के सॉल्व कर सकते हैं. और अगर जहां आप नहीं कर पाते हैं वहां अपने सीनियर्स की मदद लीजिए. बिल्कुल. अगर आपके लाइफ में हर तरह से हमारे पास काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर हैं, और भी आगे आप जाना चाहते हैं, आपके हो सकता है बॉस बहुत अच्छे हो, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पूरा समाज आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, आप अकेले नहीं है. चैलेंजेस में अकेला मत समझिए अपने आप को, आपकी सराउंडिंग, आपका समाज, सब आपके साथ है.
0: जी, तो ढेर सारी बातें आज हमने डॉक्टर शेफाली गुप्ता से की. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी.
1: थैंक यू.
0: चलते चलते सभी लोगों का
1: प्लेजर एंड ऑनर. थैंक यू.
0: तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा उन सबके लिए?
1: आई ऑलवेज से कैरी योर जीपीएस ऑलवेज विद यू, ग्रेटिट्यूड पॉजिटिविटी एंड नो योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन इट. सो कैरी योर जीपीएस एंड डिस्प्ले पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.
0: जी,
1: योर सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी लीड अ हैप्पी लाइफ. दिस लाइफ इज ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत जिंदगी है. जितना हैप्पीनेस के साथ आप जिएंगे उतना ही इस जिंदगी को आप बहुत कुछ देकर जाएंगे.
0: जी, इस प्यारे से मैसेज के साथ में चलिए, मेरे चलने का भी वक्त हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM. दीजिए इजाजत. Bye.

0: चलिया।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता का और जीवन का जा भी सिखाया था, ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का एक जुनून हुआ करता था मेरे अंदर। मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दया शंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि गाजियाबाद में तो सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। पता पूछकर मैं बेचैन जी के घर नेहरू नगर पहुंचा। वो घर पर ही मिल गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझ में कविता लिखने के साथ उसे सुनाने का भी शौक था। मेरे निवेदन पर बेचैन जी ने मेरी कविता सुनी। कविता में तो कोई बात कविता जैसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठकर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि प्रकृति में या घर में बाहर अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको जिंदगी से जोड़ो, फिर कविता में उसे ढाल दो। मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने गाहे बगाहे उनके घर जाने लगा। इस बीच मैं लाल क्वार्टर मोहल्ले में रहता था, वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वर स्वामिनी तरुण समिति बना डाली। सभी ने तय किया कि लाल क्वार्टर मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और इस सिलसिले में अश्क जी से बात भी हो गई। उनके मार्फत ओश के सुप्रसिद्ध कवि वेद प्रकाश सुमन जी से मिलना हुआ। कवि सम्मेलन की बात बनी, तय हुआ कि कुंवर बेचैन जी का इस कवि सम्मेलन में अभिनंदन करेंगे। अब दोस्तों, कुंवर बेचैन के शागिर्दों ने उनको कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया, और अगर किया तो क्या वो आए? आए, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है उनके एक ऐसे शागिर्द के बारे में कि जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी शागिर्द का कहना है कि मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी कवि चरण शंकर प्रसून और मैं बेचैन जी के घर पहुंचे, उनसे आग्रह किया, वो मान गए। हमने कहा कि इस मोहल्ले में हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और वो हमारी बात को मान भी गए। मोहल्ले में घर घर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया और कवि सम्मेलन करवा डाला। बेचैन जी का अभिनंदन किया, जैसा भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। वेद प्रकाश सुमन जी ने संचालन करके कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। 2 दिन के बाद मैं फिर बेचैन जी से मिला। बात बात में मैंने कहा कि समिति की ओर से एक स्मारिका निकालनी है, अपनी कोई कविता दे दीजिए, इसे हम कवर पेज पर प्रकाशित करेंगे। बेचैन जी ने हमें जो कविता दी वो माँ शारदे पर लिखा छंद था। वो कुछ यूं था, नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे, मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे, मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे माँ मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे, मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, कवि सम्मेलन के बारे में जहां उनको आमंत्रित किया था, और उसके बाद उनसे उनकी एक कविता ली गई थी जिसको छपवाने की बात हुई थी, और वो कविता उन्होंने सुनाई भी थी। उस कविता को सुनकर उनका शागिर्द कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि हम इसे 3 महीने में प्रकाशित कर देंगे। उस समय पद्म भूषण गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, राजेंद्र राजन और उर्मिलेश जी ने डाक से अपनी रचनाएं हमें भेजी। हमने भी साहस करके पैसे जुटाए और एक स्मारिका प्रकाशित कर ही दी। 3 महीने के बाद मैं बेचैन जी के पास स्मारिका लेकर गया। उनके घर के गेट पर बाहर ही खड़ा था। बाहर बेचैन जी आए, दरवाजा खोला, मैंने स्मारिका उनके हाथ पर रख दी। ये देखकर वो इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी यानी हमारी मम्मी जी, उन्हें मैं मम्मी

जी बुलाता था, उनके पास ले जाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, ये होती है सच्ची लगन, जो कहा वो किया। उन्होंने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो उनसे मिलने का सिलसिला ही चल निकला। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो सारी बातें आपके साथ में साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्द के बारे में। उनके शागिर्द आगे बताते हैं कि कुंवर बेचैन जी अब मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी बन चुके थे। मैं उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगा। जो भी कविता मैं उनके पास लिखकर के ले जाता, वो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर दिया करते थे। मेरे जैसे दो तीन और भी कविता लिखने वाले उनके पास आया करते थे, जैसे अनिल असीम, नित्यानंद तुषार, गोविंद गुलशन, पवन खत्री, अमिताभ मासूम, इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। गुरुजी ने हम सबको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, तुम सब अलग अलग दिनों में आते हो, मेरे भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ, इसलिए एक दिन कोई ऐसा हो जिसमें सब अपनी अपनी कविताएं लेकर आए। तय हुआ कि गुरुवार की शाम सब आया करेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार का दिन तय हो गया। अब इस दिन कौन कौन गुरुजी से शिक्षा लेने आता था, कौन कौन अपनी कविताएं लेकर के आता था, वो सारी बातें आपके साथ होंगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी कुंवर बेचैन जी के शागिर्दों के बारे में कि बहुत सारे शागिर्द उनसे सीखना चाहते थे। अब कुंवर बेचैन जी के पास इतना समय था नहीं कि अलग अलग दिनों में लोगों को सिखा सकें, तो उनका कहना था कि भाई कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लो कि जो मैं आप सबको एक साथ सिखा सकूं। तो दिन तय हुआ गुरुवार का। बस फिर क्या था, गुरुजी के ड्राइंग रूम में हम गुरुवार को तय समय पर पहुंचने लगे। शर्त थी कि सब अपनी अपनी नई कविताएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा हुआ करेगी। पहले गुरुवार आने वाले कवियों की संख्या 3-4 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 35 से 36 तक पहुंच गई। वो दौर हमारा गोल्डन पीरियड था। उस दौरान हमने कविता की बहुत सारी जो बारीकियां होती हैं वो अपने गुरुजी से सीखी, और किसी के द्वारा कविता में कमी बता देने का हम लोग बुरा भी नहीं माना करते थे। बड़ी स्वस्थ आलोचना हुआ करती थी, क्या गीत, क्या गजल, क्या मुक्तक, क्या छंद, सभी विधाओं की व्याकरणिक जानकारियां हमें होने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुंवर बेचैन के शागिर्दों की बातें, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ये पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्दों के बारे में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि। शब्बा खैर।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है फसल के भंडारण की, यानी कटाई के बाद फसल का भंडारण कैसे किया जाए। तो जो बातें आपके साथ में साझा करूंगा उनको जरा ध्यान से सुनना। भाई देखिए, फसल की कटाई के बाद आप लोगों के द्वारा कुछ फसल को बेच के लिए और कुछ फसल को अपने उपयोग के लिए स्टोर कर लिया जाता है। किसान भाइयों, आपके द्वारा जो फसल अपने लिए रखी जाती है उसका भंडारण वो ड्रम या अन्य किसी बंद मुंह वाले कंटेनर में किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपभोग किया जा सके। लेकिन फसल का भंडारण करते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बीज के लिए जो भंडारण किया जाता है उसमें कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, ताकि उसे आगे की बुवाई के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ज्यादातर किसानों द्वारा फसल का भंडारण जूट के थैलों में या फिर बोरियों में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपके भंडारण से संबंधित, वो सारी बातें करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदा।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, आज बात हो रही है फसल के भंडारण के बारे में। भंडारण से पहले फसल को सूरज की रोशनी में सुखाना बहुत जरूरी होता है। फसल की कटाई का जो काम है ना, वो ज्यादातर मशीनों के जरिए किया जाता है, जिसकी वजह से फसल में नमी होती है। अगर इसी तरह से फसल का भंडारण किसान भाइयों के द्वारा किया जाता है तो फसल के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए फसल की कटाई के बाद कुछ दिनों के लिए फसल को सूरज की रोशनी में सूखने दें, ताकि उसमें नमी ना रहे, और इसी के साथ साथ अनाज को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए। होता क्या है, फसल की कटाई के वक्त बहुत सारे जो दाने होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, या उसमें धूल मिट्टी हो सकती है, और जो कुछ तिनके हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो तिनके भी आ जाते हैं, जो कि फसल की रौनक को कम कर देते हैं। फसल को स्टोर करने से पहले उसकी अच्छे से सफाई जरूर करनी चाहिए, ताकि फसल को फफूंद जैसी समस्याओं से बचाया जा सके, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जब भी फसल को लगती हैं, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, इन सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। करेंगे कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे फसल का स्टॉक कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, बात हो रही है आज फसल के भंडारण के बारे में। आपकी फसल पककर के तैयार हो जाती है और जब उसकी कटाई हो जाती है, फिर बात आती है कि इस फसल को हम कहां पर स्टोर करें। तो इसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं, वही बातें आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। कभी भी जो फसल का भंडारण है ना, पुराने और पहले से इस्तेमाल किए गए बोरों में बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, फसल के खराब होने की और उनमें और भी ज्यादा रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसान भाइयों द्वारा पुराने बोरों का उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि फसल में कोई भी रोग ना लग पाए। और इस बात का भी ध्यान रखें, स्टॉक की गई फसल के बोरों को दीवार से बिल्कुल सटा कर ना रखें। किसान भाइयों, आप लोगों के जरिए फसल का भंडारण जिन बोरों में किया जाता है ना, उन्हें दीवार से सटाकर रखने से आपकी फसल में नमी आ सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में दीवारों पर सीलन या नमी बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब इसके बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी सुन लीजिए। नीम के पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी स्टॉक की गई फसल में घुन जैसे कीट लग जाते हैं जो फसल को अंदर से खोखला कर देते हैं। इन कीटों से बचने के लिए नीम से बने पाउडर का इस्तेमाल भी किसानों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे स्टॉक की गई फसल को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप अपनी फसल को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, इन बातों का ख्याल रख करके। करूंगा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपकी फसल के स्टोर के बारे में, वो सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, बात हो रही है भंडारण के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, फसल का स्टॉक बोरों में किया जाता है। तो नीचे फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछा दें या फिर चटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फसल सुरक्षित रह सके। और वो जो आपकी जगह है जहां पर आप भंडारण करेंगे, उस जगह को हम कह सकते हैं भंडार गृह। भंडार गृह को मेलाथियान के घोल से अच्छे से धो लेना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है, फसल का भंडारण करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें, फसल को साफ जगह

पर ही स्टोर करें, और जो आपका भंडार गृह है वो जितना साफ होगा उतनी ही आपकी फसल सुरक्षित होगी। इसलिए सफाई का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल का स्टॉक करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फसलों को सुरक्षित भंडारण के लिए बहुत सी वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जाती हैं। इन तकनीकों की वजह से फसल में जो फफूंद लग जाती है, इस फफूंद से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को भंडारण की पूरी तरह से जानकारी ना होने की वजह से आधी से ज्यादा फसल का नुकसान हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह का नुकसान हो किसान भाइयों, इसीलिए हर बार मैं आपसे जो बात करता हूँ आपके फायदे की करता हूँ। वैसे तो आपको बातें मालूम है, लेकिन समय बदला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो शायद आप तक नहीं पहुँच पाई हैं, वो सारी बातें आप तक पहुँचाता हूँ जिससे कि आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सके और आपको फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, भंडारण के बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैंने की हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि फसल को जितना हो सके नमी से दूर रखना, कीड़ों से दूर रखना, चूहों से दूर रखना। फसल में अगर ज्यादा नमी होती है ना, तो ये सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देती है। इसी वजह से भंडारण करना बहुत जरूरी बताया जाता है, ताकि फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण किया जाता है। छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसानों के द्वारा सिर्फ अपने उपभोग के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भंडारण किया जाता है। फसलों का भंडारण ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी किया जाता है, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस समय में ये भंडारण हमारे बहुत काम आता है। फसलों के भंडारण के लिए सही स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। भंडारण करते समय ये ध्यान रहे, फसल में नमी बिल्कुल ना हो। नमी की वजह से पूरी फसल खराब हो सकती है। मैं बार बार आपको नमी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि नमी आपकी फसल के लिए एक तरह से जहर है। आपसे कुछ और भी बातें करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: देखिए किसान भाइयों, बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं भंडारण के बारे में, और भंडारण का काम इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ बातें होती हैं ज़रूरी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब भाई आपको सावधानी बरतनी है, जितनी सावधानी बरतेंगे आपकी फसल जो आप स्टोर करना चाहते हैं, जिसका भंडारण करना चाहते हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, और जब भी आपको लगे कि इस फसल का हमें उपयोग करना है तो आप उपयोग कर सकते हैं, और बिना किसी खराबी के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के, बिना किसी कीट के, यानी कि आपकी सावधानी से आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और आपको इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। दाम अच्छा मिलेगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी। अब इसी मुस्कान के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: इस

0: Well, hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर, आज हम लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ जो बहुत स्पेशल है। उसकी बहुत सारी वजह भी है कि यहाँ पर ये शो बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। आई मीन हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं। यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता है, फोटोग्राफर है, एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे, दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू नो, और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन। सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो, और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेतिया का। यतिन, स्वागत है हमारे शो में।
1: इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैमिली, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ, और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है, मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ। और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर सिनेरियोस बनाता था, मैं उनके शूट करता था, और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ। तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है, और अभी आगे बहुत चलेगी। तो ये है यतिन यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है, एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं, 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर, एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो इन्होंने अर्न किया यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी? क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार, मेरे को ये करना चाहिए?
1: कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था, तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था। मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की, तो वहां से मुझे था कीड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा, मैं तब मजे में कर रहा था। बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं करता गया। फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी, वो बाहर आने लगी। तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना। मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा। फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइज, और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में, इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर है, तो इन्होंने अपनी वॉइस पर बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा। इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया, और अब अच्छा कर रहा हूँ ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है, तो वहां से मैंने
0: फिर
1: शुरू किया।
0: बहुत सुंदर, नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है, सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है। हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करी, इनके डोमेन के बारे में जाना है। आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे, आगे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप यू आर लविंग द वाइब्स ऑफ दिस शो, यू आर लविंग द वाइब ऑफ दिस म्यूजिकल ब्रेक। एंड अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए, अतिन के लिए, कोई भी चीज है जो आपके जहन में है और हम तक पहुंचानी है, डू मेक श्योर 8010781078 इस नंबर तक आप पहुंचा चुके हो। फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। अतिन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में। व्हेन यू थिंक अबाउट अ कॉन्टेंट, अ पीस ऑफ कॉन्टेंट, तो उसको कैसे आप सोचते हो एंड व्हाट इज द प्रोसेस, क्या जाता है उसके पीछे?
1: प्रोसेस ये है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं। तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है, जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ, तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है। तो मैं वही, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है। तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ। राइटिंग के लिए मैं, मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है, या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है। तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है। फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट भी कुछ शॉट लेना होता है वो कर लेता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया। कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ।
0: कैसे हो सकता है शुरू?
1: देखो, सबसे पहले जील होनी चाहिए कि यार ये मुझे करना है, इज्जत होनी चाहिए कि यार ये करना है, और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो। सबसे पहले, सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना। अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे। सबसे पहले जीवाइए, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है। तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना। आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियोस कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो, आप अपने आप को देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ। और ये है, सबसे पहले आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा। सबसे मेन चीज है शुरू करना, और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जील? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉलो करती है?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड। तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कॉन्टेंट क्रिएशन में। वो जितनी अच्छी होगी लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे। तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें। तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
0: बहुत सुंदर।
1: कुछ भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
0: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा, एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे यतिन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। बहुत ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। अब इस नोट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे ध्यान में जो हम पूछेंगे, बट ये हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: Once again, I'm hoping ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवहम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है व्हाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो इट ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह है, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो एक बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को डालेंगे, स्नैपचैट पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है। मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है इन प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उमदा बात उमदा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे वन पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा। आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए, या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: Alright, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो please feel free.
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, कि किसी चीज का शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यदन से बात करी है, यदन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यदन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100 के से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यदन से, यदन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया है कि कॉन्टेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यदन मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन। इसके बाद और शोज है, जरूर सुनिएगा रेडियो 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं ऐसे खास ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो सही मायने में देखा जाए तो अनसंग हीरोज ऑफ सोसाइटी कहलाती हैं। आपको पता है मैं आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें मैं अनसंग हीरोज ऑफ सोसाइटी कहती हूँ, लेकिन दरअसल वो हीरोज ऑफ सोसाइटी होते हैं, रियल हीरोज ऑफ सोसाइटी होते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो गुमनामी में काम कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ढेर सारा मानवता का काम कर रही हैं, इन्हीं के बारे में ये खूबसूरत सा कार्यक्रम है। आज की इस कड़ी में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनके साथ मानवता की राह पर चलने वाले हैं, वो है माया केयर फाउंडेशन। माया केयर फाउंडेशन से आज हमारे साथ ज्योति मोरे जी जुड़ी हैं, जो कि वहाँ की एचआर हैं पुणे से। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: नमस्कार भावना जी।
0: ज्योति जी, माया केयर फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो मुझे बताइए कि माया केयर फाउंडेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: जी, माया केयर फाउंडेशन जो कि मंजरी गोखले जोशी, उनकी लेट मदर डॉक्टर विद्या गोखले एंड अभय जोशी, इन्होंने इसकी नींव रखी है 2009 से।
0: जी,
1: तब से हम ये काम कर रहे हैं।
0: जी,
1: और ये हम स्पेशली करते हैं बुजुर्गों के लिए और विकलांगों के लिए।
0: जी,
1: तो बुजुर्गों के लिए करते वक्त हमारे फाउंडर के मन में ऐसे ख्याल आते थे
0: जी,
1: जिनके बच्चे जो बाहर के हैं, बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं या फिर ऐसे अलग स्टेट में जाते हैं
0: जी,
1: तो फिर यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अकेले पड़ जाते हैं
0: जी,
1: और उनकी जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है, जो उनकी जरूरतें होती हैं, जैसे कि अस्पताल लेकर जाना, बैंक में जाना, तो ये घर में रहकर, खुद के घर में रहकर अगर किसी ने कोई व्यक्ति उनको प्रोवाइड किया, उनको एक व्यक्ति अगर उनको दिया, तो वो आसानी से अपने घर में रहकर ही ये सारी चीजें कर सकते हैं और एक खुशहाल और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं
0: जी।
1: ये हमारे फाउंडर के मन में आए
0: जी, और उसके बाद शुरुआत हुई माया केयर फाउंडेशन की, जैसे कि इसका नाम है। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो माया केयर फाउंडेशन ही ये कहता है कि एक ऐसी फाउंडेशन है जहां आपको केयर मिल रही है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं बुजुर्ग और साथ में आते हैं विकलांग लोग। आप खुद सोच कर देखिए कि वो लोग जो बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, जो लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा ठहर गए हैं, उनका ख्याल कौन रख रहा है? अब आप सोच कर देखिए कि आज के जमाने में जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और लोग अपना करियर बनाने के लिए अपने घरों से दूर या तो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में परेशानी होती है कि भाई आप खुद सोच कर देखिए कितना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, जब घर पर उनके घर के जो माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं वो अकेले होते हैं और वो दूसरे देश में या फिर दूसरे राज्य में सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ उनका चेहरा देख पाते हैं, परेशानी देख पाते हैं, पर मदद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई सदस्य है जो इनकी मदद कर सके तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और यही खूबसूरत सा काम किया माया केयर फाउंडेशन ने। कैसे किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार ये लोग सुविधाएं दे रहे हैं, इसके बारे में करेंगे बात। लेकिन उससे पहले लेने वाले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं ज्योति मोरे जी के साथ, जो कि एचआर प्रोफेशनल हैं माया केयर फाउंडेशन से। सो माया केयर फाउंडेशन एग्जैक्टली क्या करती है, चलिए जानते हैं ज्योति जी से। ज्योति जी, किस प्रकार के काम करते हैं आप माया केयर फाउंडेशन में?
1: जी, माया केयर फाउंडेशन में हम बुजुर्गों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि उनके बैंक खाता का पंजीकरण करना या फिर उसके लिए जो भी काम होते हैं उस तरीके के काम, उनके घर जाकर उनके साथ छोटे छोटे खेल खेलना। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर ये बुजुर्ग ना घुटनों की वजह से या फिर आपके आंखों की रोशनी की वजह से ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो फिर वो जरा सा अस्पताल जाने के लिए आनाकानी होता है या फिर अखबार नहीं पढ़ सकते, कुछ किताबें नहीं पढ़ सकते, या फिर बुजुर्गों को अभी कुछ ऐसे टेक्निकल जो होते हैं लैपटॉप या फिर फोन कैसे चलाते हैं ये पता नहीं होता, ये ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं ये पता नहीं होता, और जब घर के सभी लोग बाहर जाते हैं तो फिर घर में वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तो इसके लिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, जो हमारे स्वयं सेवक हैं, वो उनके घर जाकर उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ छोटे मोटे खेल खेलते हैं, उनके अपॉइंटमेंट पर उनको अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर से घर आकर छोड़ते हैं, बैंक के काम करते हैं, सारे उनको जो भी कुछ पढ़ना है, उनकी रुचि है उस अनुसार उनको पढ़कर सुनाते हैं। तो इस तरीके का काम बुजुर्गों के लिए माया केयर से किया जाता है। और दूसरा काम हमारा चलता है बिंदु प्रोजेक्ट। बिंदु प्रोजेक्ट मीन्स विकलांग के लिए हमने 2020 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसको हम बिंदु प्रोजेक्ट कहते हैं। बिंदु प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारे ऐसे विकलांग बच्चे बच्चियाँ ये इनका चयन किया जो कि बोल नहीं सकते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, जो कि चल नहीं सकते हैं। ऐसे हमने एक टीम बनाई जिससे कि जो बोल नहीं सकता है उसका डाटा टीम, जो चल नहीं सकता है उसकी पावर टीम, और जो आंखों से देख नहीं सकता है लेकिन उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है या फिर उनके आवाज़ में बहुत ताकत होती है, तो इसका हमने उनके काम के लिए यूज किया। तो इस तरीके से माया केयर इन दोनों की कामों के लिए अभी काम करी, इन दोनों भी दुर्बल घटकों के लिए ये काम कर रही है।
0: सो दोस्तों, माया केयर फाउंडेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो बुजुर्गों का ख्याल रख रही है, विकलांगों का ख्याल रख रही है, वो उनकी वो लाठी बन रही है जिस लाठी के लिए दरअसल उन्होंने सोचा था कि आने वाले समय में शायद बच्चे हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, या फिर विकलांग का सहारा बन रही है माया केयर फाउंडेशन। वो फाउंडेशन बन रही है सहारा जो दरअसल बेसहारा है। अब बेसहारा इसलिए नहीं है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते हैं, मूक हैं, बधिर हैं या नेत्रहीन हैं, लेकिन इसलिए सहारा बन रही है क्योंकि उनकी विकलांगता को कम करने की कोशिश कर रही है और वो उनको वो स्वाभिमान देने की कोशिश कर रही है जिस स्वाभिमान का वो इंतजार कर रहे हैं, और वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के रूप में है। किस प्रकार से है इसके बारे में करेंगे बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। सुना रही हूँ आप लोगों को एक प्यारा सा गाना, बड़ा कहीं मत जाना, फील गुड फील।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माया केयर फाउंडेशन के साथ। माया केयर फाउंडेशन भारत के अलग अलग राज्यों में काम करती है और विदेशों में रह रहे बुजुर्गों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काम करती है। अब आप सोचिए ना कि आप तो चले गए हैं अब्रॉड और वहां पर जाने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा करियर बना रहे हैं। भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, आपने एक अच्छा करियर चूज किया और उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए आप अपने परिवार के सदस्यों का भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि आपका परिवार तो कहीं भारत में पीछे छूट गया है, सो उनका ख्याल कौन रखेगा। ऐसा ख्याल रखने के लिए माया केयर फाउंडेशन है जो इस प्रकार का काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे विकलांग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, जिन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, उन विकलांगों का सहारा बन रही है माया केयर फाउंडेशन। ज्योति जी हमारे साथ हैं जो कि उनकी HR हैं। ज्योति जी मुझे बताइए कि एक तरफ तो आप बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, विकलांगों के लिए आप बड़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग किस्म के काम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। सो किस प्रकार से आप अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं इन विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए?
1: जी, हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो 90% तो महिलाएं ही हैं
0: जी
1: जो कि विकलांग हैं, और उनके लिए हमने एक शक्ति शक्ति करके एक पावर शक्ति पावर करके एक प्रोजेक्ट चलाया था
0: जी,
1: जिसमें 8 मार्च को जब महिला दिन होता है
0: जी,
1: तो हम सभी जो हमारे माया केयर में जो जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा होकर ऑनलाइन ही हम कार्यक्रम करते हैं जी, और उसमें हम अलग अलग तरीके से जिसे जो आता है या जिसे जो पसंद है उस अनुसार वो कार्यक्रम करता है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन देता है। और दूसरा ये कि उनको जब भी नीड होती है, जैसे कि दिवाली है या फिर 8 मार्च को उनका सम्मान है 8 मार्च को, तो उस टाइम हमने उनको पेड लीव रखी है ताकि वो उसका उपयोग करें अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए। ये महिलाओं के लिए हमने ज्यादा रखा है और ऑनलाइन वो काम करती हैं, कहीं पर उनको जाने की जरूरत नहीं होती और इससे वो बहुत स्फूर्ति से और अच्छा काम करती हैं।
0: दोस्तों अगर महिलाओं की बात की जाए तो माया केयर फाउंडेशन दरअसल महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है। अब अगर महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी मोबिलिटी, एक परिवार है जिसका ख्याल रखना है और दूसरी तरफ एक करियर है जिसको देखना है, अब ऐसे में परेशानी ये होती है कि अक्सर महिला को परिवार को चुनना पड़ता है। भाई घर में अगर छोटा बच्चा है और वो एक बहुत अच्छी माँ है तो उन्हें उस बच्चे को छोड़कर नौकरी करने जाना बड़ा मुश्किल लगता है। सो ऐसे में महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जो वर्क फ्रॉम होम किस्म की होती हैं, जहाँ पर कि वो अपने घर पर रहकर ही अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकती हैं, लेकिन साथ के साथ अपने परिवार का ख्याल भी रख सकती हैं। सो इस प्रकार का काम करने की कोशिश कर रही है माया केयर फाउंडेशन। और वहीं पर मैं बुजुर्गों की बात करूं या विकलांगों की बात करूं, सो अक्सर आपने देखा है कि सरकार की ढेर सारी स्कीम्स होती हैं जहां पर ये कहा जाता है कि भाई आप विकलांगों को नौकरी जरूर देंगे, लेकिन परेशानी ये है कि कई बार विकलांगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें कहां और किस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अप्लाई करना है। दूसरी तरफ परेशानी होती है कि उनके पास कई बार इस प्रकार के स्किल्स नहीं होते हैं जिन स्किल्स पर वो काम कर सके। तो ज्योति जी मुझे बताइए, क्या आप लोग अपस्किलिंग का भी काम करते हैं विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए?
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर। हम क्या करते हैं कि हम जब उनका चयन करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं हमारे यहाँ, तब हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं
0: जी,
1: उनके क्या क्या खामियां हैं या फिर उनके क्या स्किल्स हैं, उसके दौरान हम उनको ट्रेन करके उनको ट्रेनिंग में ही ऑन जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं
0: जी,
1: कि जिससे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो सब सीख जाए और सही काम में लग जाए, तो इसलिए वो थोड़ा सा फिर वहाँ पर वो आत्मनिर्भर होने लगती हैं, क्योंकि OJT में हम क्या करते हैं उनका थोड़ा पेमेंट भी देते हैं
0: जी,
1: ऑन जॉब ट्रेनिंग ही उसे कहते हैं कि जॉब का ट्रेनिंग देते देते काम भी देना, तो इसमें ये पेड होता है। तो इसमें अगर वो आत्मनिर्भर होने लगी या उसको बहुत इसमें आनंद आने लगा कि नहीं मैं अभी कुछ करूंगी, अब मैं सही में अभी आत्मनिर्भर होने लगी हूँ,
0: जी
1: तो वो जरूर इसमें हिस्सा लेती हैं, फिर और ट्रेनिंग सीखती हैं, आगे जाती हैं। बहुत सी महिलाएं हमारे यहाँ, जो भी ऊपर जितनी भी मेरी सहपाठी हैं, सारी महिलाएं हैं,
0: जी
1: इसमें आपको ये लोग ज्यादा थोड़ा कम ही है।
0: तो दोस्तों, महिलाओं के लिए ये जरूरी है कि उन्हें अपस्किल समय समय पर किया जाए, खास तौर पर वो महिलाएं जो कि घरों पर रहती हैं, वो महिलाएं जो अभी फिलहाल कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें अपस्किल किया जाता है, फिर उनके स्किल्स के कैपेबिलिटी के हिसाब से न सिर्फ ये डिसाइड किया जाता है कि वो कहाँ पर जाती हैं और कहाँ पर वो किस तरीके का काम कर सकती हैं, लेकिन जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है उस दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग होता है। तो इस प्रकार का काम हो रहा है माया केयर फाउंडेशन में। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे विकलांग को जानते हैं, आप महिलाओं को जानते हैं, किसी बुजुर्ग को जानते हैं, तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि लोग उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस माया केयर फाउंडेशन से लोगों को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। इसके बारे में करेंगे बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं माया केयर फाउंडेशन के साथ। माया केयर फाउंडेशन ढेर सारा नेकी का काम कर रही है, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए। अब ज्योति जी, बात कर रहे हैं हम बुजुर्गों की, महिलाओं की, तो मुझे बताइए, मान लीजिए कि कोई विकलांग है, तो विकलांग लोगों को अक्सर ये पता ही नहीं होता है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी विकलांगता और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी कि वो जाकर नौकरी कहाँ पर ले। सो किस प्रकार से माया केयर उनकी मदद करती है, और अगर कोई माया केयर से जुड़ना चाहता है किसी नौकरी के लिए या फिर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है?
1: जी जी, हमारी वेबसाइट भी है
0: जी,
1: www.mayacare.org
0: जी,
1: और हमारा ईमेल एड्रेस भी है
0: जी,
1: service@mayacare.org
0: जी,
1: और हमारे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं
0: जी,
1: 9552510400, और दूसरा भी नंबर है 9552510411
0: जी।
1: इन दोनों नंबर पर और वेबसाइट पर और ईमेल्स पर आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ये भी है कि हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन पर हमारी पोस्ट होती है, इंस्टा पर हमारी पोस्ट होती है, तो उसके तहत भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ आपका जो भी मेल आता है या फिर आपका कॉल आता है, तो हम तुरंत वो कॉल उस डिपार्टमेंट में जाता है रिक्रूटमेंट के, वहाँ से कॉल जाता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उनको ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट में जाने के लिए हम ग्रुप में ऐड करते हैं
0: जी।
1: उसके बाद उनका ट्रेनिंग शुरू होता है, ट्रेनिंग के समय जो भी महिला या फिर जो भी विकलांग पर्सन हो
0: जी,
1: उनको हम ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब देना शुरू करते हैं।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार से वो हमसे जुड़ने लगते हैं, फिर हम उनको अपील भी करते हैं कि अगर आपके कुछ रिश्तेदार हो या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल हो, आप जरूर हमें बता सकते हो
0: जी। सो भाई, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे विकलांग हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें थोड़े से साथ की ज़रूरत है, कंपेनियनशिप की ज़रूरत है, या कहना चाहिए थोड़े से अकेलेपन से वो गुजर रहे हैं, सो इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रही है माया केयर फाउंडेशन। यानी माया केयर फाउंडेशन वो एक ऐसी फाउंडेशन है जो अलग अलग राज्यों में ना सिर्फ इस प्रकार से बुजुर्गों का ख्याल रख रही है, साथ के साथ विकलांगों का ख्याल रख रही है, लेकिन उन्हें अपस्किल कर रही है, उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रही है, और साथ के साथ उनके जीवन को एक नई राह देने की कोशिश कर रही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माया केयर फाउंडेशन के साथ। आज हम ढेर सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं माया केयर फाउंडेशन की। अब बात करते हैं ज्योति जी आपके चैलेंजेस के बारे में। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने सारे विकलांग, इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे बुजुर्ग और इतनी कम अपॉर्चुनिटीज, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग?
1: जी जरूर, हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं
0: जी।
1: बेसिकली हमारे फाउंडर ने अभी तक तो 2020 तक तो हमारे फाउंडर अपने जेब से ही सारा कुछ खर्चा उठाते थे माया केयर का। उसके बाद फिर हमारा प्रोजेक्ट बिंदु जब आया तो हमारे थोड़ा बहुत फंड हमें मिलने लगा, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि हम हमारे लोगों के लिए पेमेंट्स हो सके उनके, या फिर उनकी उनके लिए हमें जो करना है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको उनके जो भी हमें ऊपर लाना है उनको, उसके लिए जिसकी भी जितनी भी ज़रूरत है, तो अभी के लिए तो वो कम ही है। क्योंकि क्या है, माया केयर अभी पूरे इंडिया में है, 72 सिटीज में हम चल रहे हैं और वहाँ के सारे बिंदुज हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हमारे साथ हैं। इतना ही नहीं, माया केयर के बाहर भी नेपाल हमने ओपन किया है और यूके में भी हमारी बहुत सारी सर्विसेज शुरू हैं, वहाँ पर भी हमारे 5 सिटीज शुरू हैं और अभी तक हमने 45,000 सर्विसेज बुजुर्गों की कंप्लीट की है और लगभग 5,000 लोगों को हमने ट्रेन करके प्लेसमेंट किया है उनका। तो इस प्रकार से ये सब करने के लिए हमने इतने चैलेंजेस भी झेले हैं इसके साथ जी। और पर्सनल डोनेशन बहुत कम आता है, ये तो एक है हमारा। और दूसरा ये कि हम जो बुजुर्ग के लिए काम करते हैं उसके लिए हमें कोई डोनेशन नहीं देता
0: जी।
1: सारे लोग डोनेशन अगर देना है तो प्रोजेक्ट बिंदु के लिए दे सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए कोई मदद नहीं करते
0: जी।
1: वो हमारे ही इसमें करना पड़ता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है।
0: तो दोस्तों, अक्सर अगर मैं एनजीओस की बात करती हूँ, और ये कार्यक्रम आप लंबे समय से रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुन रहे हैं, एक परेशानी हर एनजीओ या फिर हर फाउंडेशन के साथ आती है और वो है फंड्स की। देखिए, जब कभी भी हम अच्छे और नेकी के काम के लिए जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, हमारे अंदर दिलों में जज्बा होता है, लेकिन परेशानी ये है कि मात्र एनर्जी और जज्बे से काम नहीं चलता है, जरूरत होती है पैसों की भी। अब जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी बुजुर्ग को आपकी जरूरत है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने एडिक्वेट फंड्स नहीं है कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। सो वहां पर हम सामने आ सकते हैं, यानी हम इनके लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से माया केयर फाउंडेशन अलग अलग चैलेंजेस से गुजर कर आज 72 सिटीज में न सिर्फ भारत के अलग अलग बुजुर्गों की मदद कर रही है, बहुत सारे विकलांगों को अपॉर्चुनिटीज दे रही है, बहुत सारी महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, मुझे लगता है कि माया केयर फाउंडेशन एक बहुत ही स्ट्रांग पिलर की तरह आ रही है। लेकिन जरूरत है कि कुछ लोग उनके साथ जुड़े। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली मौका मिल रहा है आपको। बताने वाली हूँ आपको कि आप इनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।
2: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव। ना

लो।

सारा जूठ संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है सारे, लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे थे आज माया केयर फाउंडेशन के साथ ज्योति जी, जो कि उनकी एचआर हैं पुणे से। ज्योति जी, मुझे बताइए कि अगर कोई आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, किसी को आपकी जो ये सोच है माया केयर फाउंडेशन की वो बहुत पसंद आई है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, या कोई आपके साथ एसोसिएट होकर इन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, विकलांग हैं या फिर बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, उनकी मदद करना चाहता है, तो ये किस प्रकार से किया जा सकता है? कोई माया केयर फाउंडेशन से कैसे जुड़ सकता है?
1: जी, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं
0: जी,
1: आप उससे जुड़ सकते हो, 9552510400
0: जी,
1: और 9552510411
0: जी,
1: और आप हमें मेल कर सकते हो service@mayacare.org, और इसके साथ साथ आप वेबसाइट से भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, www.mayacare.org।
0: देखिए भाई दोस्तों, ज्योति जी ने जरूर बताया है कि आप इनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी इन 72 सिटीज में अगर आप हैं, सो इन 72 सिटीज में से देखिए आप नियरेस्ट सिटी में है या उसी शहर में है जहाँ पर माया केयर काम कर रही है। उन शहरों में अगर आपके पास थोड़ा सा समय

0: आपके पास थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। आप शायद एक ऐसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं जहां पर कि आप विकलांगों को नौकरी दे सकते हैं। शायद आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास थोड़ा सा समय होता है वीकेंड पर और आप बुजुर्गों की सेवा करके आ सकते हैं। शायद आप ऐसे हों जो महिलाओं को किसी तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन सब तरीकों से आप जुड़ सकते हैं। आप इनके साथ वॉलंटियर कर सकते हैं, आप इनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप उस कैटेगरी में हैं जहां आपके पास समय की बहुत कमी है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा धन है, सो आप इन रिसोर्सेज के लिए, इन चीजों के लिए, इस नेकी के काम के लिए अपना धन भी इन्हें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आप जुड़ जाएंगे माया केयर फाउंडेशन के साथ, यानी आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन हेल्पलाइन नंबर्स पर, या फिर आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाकर इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप जाकर इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस नेकी के काम में आप इनके साथ जरूर जुड़िए। ज्योति जी, बहुत सारे लोग आपको फिलहाल सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए। ना सिर्फ उन्होंने माया केयर फाउंडेशन के बारे में करीब से जाना, लेकिन उन्हें समझ में आया कि माया केयर फाउंडेशन कितना खूबसूरत सा काम कर रही है। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: जी जरूर। अभी तक तो हमने माया केयर 72 सिटीज में ओपन किया है। एक्चुअली हमारी ये इच्छा है कि हम 100 सिटीज में जाएं। हर एक सिटी में हमारा एक सिटी कोऑर्डिनेटर होता है। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो सिटी कोऑर्डिनेटर आपका कॉल जरूर उठाएगा और सिटी कोऑर्डिनेटर आपके लिए वॉलंटियर भी चयन करेगा। लेकिन ये सब होता रहेगा, ये सब हमने स्टेप वाइज या फिर हमारी सोच से हमने बनाया है तरीका जिससे हम आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज कि भावना जी यहाँ पर हमारा इंटरव्यू ले रही हैं। इसके लिए तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। और दूसरा ये कि आप सब श्रोता जो अभी हमें सुन रहे हैं, उनके भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि माया केयर फाउंडेशन आज 16-17 सालों से काम कर रहा है। हमारा ये निवेदन है, हमारे फाउंडर ने दो दुर्बल घटक चयन किए कि जिनके समाज में बहुत ज़्यादा संख्या में ये दुर्बल घटक हैं, लेकिन लोगों के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा दुर्लक्षित होता जा रहा है। ये तो हमें चाहिए कि आपका जो भी पार्ट इसमें आता है कि आपको अगर वॉलंटियर होना है, आपको आपकी फैमिली में अगर खुदा ना खास्ता कोई विकलांग है तो उनके लिए कुछ नौकरी लगानी है, तो प्लीज़ आप इसके लिए हमारे हमारे यहाँ मेल कर सकते हैं, हमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इन दुर्बल घटकों के लिए आप ज़रूर मदद करते हैं। हमें किसी भी प्रकार की मदद हमें चलेगी, क्योंकि क्या है कि हमने देखा है कि हम ये जो प्रोवाइड कर, ये जो सर्विस हम दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से फ्री सर्विस है। जो बुजुर्गों के लिए हम सर्विस देते हैं ये फ्री है, इसलिए जो भी ज़रूरतमंद है वो ज़रूर यहाँ पर कॉल करें या हमें मैसेज करें, नेक्स्ट डे आपको सर्विस मिल जाएगी। और जो भी ये हमें सुन रहे हैं श्रोतावर, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारी विकलांग टीम जो ये बहुत बड़ा बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे सहपाठी हैं जो भी बहुत विकलांग होने के बावजूद इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। अगर आप वेबसाइट पर जाकर हमारे विकलांग लोगों की कहानियां पढ़ोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग भी काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ यह हमें एक मौका दीजिए कि हम भी ऊपर आए, और ये माया केयर इस वर्ल्ड की एक यूनिक संस्था है कि जो घर से ही काम देती है। कोई ओनली ट्रेनिंग देता है लेकिन काम नहीं देता, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग भी होता है, काम भी होता है, और ये फ्री सर्विस देती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए।
0: So, दोस्तों इस चैलेंज को हम सब मिलकर खत्म कर सकते हैं और इसे एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। माया केयर फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बुजुर्गों का ख्याल रख रही है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ के साथ उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है। जितनी भी माया केयर फाउंडेशन का टेक्निकल बैकअप है या फिर कहना चाहिए सर्विस सेंटर्स हैं, वो सब विकलांग लोग संभाल रहे हैं। सो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं और इस माया केयर फाउंडेशन को आज 72 सिटीज तक पहुंचा दिया है। आप भी इनका हिस्सा बन सकते हैं। सो मेरी बस यही गुजारिश है, इस कार्यक्रम में मैंने आपकी मुलाकात करवाई माया केयर फाउंडेशन से, बस अब आप अपनी सुविधा और कहना चाहिए कन्वीनियंस के हिसाब से इनके साथ कब और कैसे जुड़ते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन एक कदम मानवता की ओर उठाना तो बिल्कुल बनता है। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद ज्योति जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिस्टर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी,
1: धन्यवाद। थैंक यू।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात अगले हफ्ते। टिल देन फील गुड फील लाइफ।
2: हाय मैं हूं गगन नारंग एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानवरचना 107.8। फील गुड फील लाइफ।
0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आपको पता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद हमारे रेडियो स्टेशन का सबसे लंबा कार्यक्रम है। महिला सशक्तिकरण पर पिछले इतने लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ। ऐसी सशक्त महिलाएं जो सशक्तिकरण का काम कर रही हैं, ऐसी सशक्त महिलाएं जो आने वाली पीढ़ी को सशक्त कर रही हैं, और ऐसी सशक्त महिलाएं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे मिलने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर उषा यादव। ये चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की, और न सिर्फ ये चेयरपर्सन है लेकिन ये एक सशक्त और डायनेमिक महिला है। इनकी जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। डॉक्टर उषा आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
0: उषा जी कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण, और अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो हर महिला के लिए सशक्तिकरण की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है तो क्या कहेंगे आप?
3: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और राजनीतिक रूप में इतना मजबूत और स्वतंत्र बनाना है कि वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सके।
0: जी देखिए भैया, महिलाएं अगर देखा जाए तो बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन पर्यावरण या फिर अगर हम कहें कि आसपास का जो माहौल है वो उन्हें आज भी बहुत सारी बेड़ियों में बांध कर रखता है। सबसे बड़ी बेड़ी जिसमें महिलाएं आज भी बंधी हुई हैं वो है जिम्मेदारी की बेड़ी। हालांकि ये जिम्मेदारी परिवार है, ये जिम्मेदारी समाज है, ये जिम्मेदारी उनका अपना घर है, लेकिन कई बार उनके जीवन के कुछ अहम पड़ाव में ये बेड़ियां वाकई बेड़ियां लगने लगती हैं। तो सशक्तिकरण वहां है जहां महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिल रहा है, जहां महिलाओं को बराबरी का मौका मिल रहा है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक यानी आपको सुना रही हूँ एक बेहतरीन सा गाना, फील गुड फील।

0: प्यार है।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की। और एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं इन्हें एम्पावर्ड तो बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एजुकेशनिस्ट होती है ना, वो आने वाली पीढ़ी को भी एक नई राह दिखा पाती है। उषा जी, हर सदी में महिलाओं के

0: जिसमें कि हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता, शिक्षित डॉक्टर भी इस तरह के करते हैं तो वो गलत है। और मैं यही बताना चाहूंगी कि जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की, मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान ने की कवित्री थी, उन्होंने बताया था, बहुत अच्छी कविता लिखी है, बूंदेले हर बोलो में मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: जी तो देखिए भाई, ये जो सशक्तिकरण है ना, इस सशक्तिकरण को आगे फैलाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन परेशानी ये है कि क्या हम अपनी अभी की जो चैलेंजेस हैं उनसे निकल पाए हैं या नहीं। और उनसे निकलने के लिए सबसे पहली जरूरत है शिक्षा की। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ, फील गुड फील नाइस।
2: हमसे

0: क्या
1: फिर कोई बावर मुहब्बत की अपनी।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की। डॉक्टर उषा, अब बात करते हैं आपके सशक्तिकरण की। आप चेयरपर्सन हैं विद्या भारती पब्लिक स्कूल के, साथ के साथ आप सामाजिक कार्य में काफी ज्यादा अग्रणी हैं। मुझे बताइए कि क्या कभी जिंदगी में आपने कोई ऐसा सशक्तिकरण भरा कोई डिसीजन लिया हो, या कोई ऐसा आपका कदम जहां आपको लगा हो कि मुझे कोई इस बात का आज भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने जो कदम लिया उससे मैं आज एक सशक्त महिला हूँ। आपकी जर्नी को आप कैसे डिफाइन करेंगे?
1: मैंने सीमित धारणाओं को तोड़कर जिम्मेदारी को स्वीकार किया और आत्म करुणा के साथ निर्णय लेने की क्षमता विकसित की। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें मैंने विश्वास और दृढ़ता से मैंने अपने जीवन का नियंत्रण पाया। क्योंकि मैंने भी एजुकेशन भी प्राप्त की तो बड़े मध्यम वर्ग से मैं हूँ और बहुत अच्छे से मैंने मेहनत करके विद्या प्राप्त की और मध्यम वर्ग परिवार में ही मेरा विवाह हुआ। वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से अपने निर्णय लिए, लेकिन मुझे निर्णय लेने में कोई आपत्ति नहीं आई क्योंकि मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया था।
0: वाकई देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती हैं ना, तो उसकी सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे अहम इकाई होती है उसका परिवार। और अगर परिवार आपके साथ है ना, तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी युद्ध को, बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं। तो आई थिंक सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली जरूरत है घर में सोच का बदलाव। अगर आपकी सोच बदल रही है तो सशक्तिकरण आप फैला भी पा रहे हैं और सशक्तिकरण को आप महसूस भी कर पा रहे हैं। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का सुना रही हूँ आप सभी को एक बेहतरीन सा गाना। जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, एफआरजी भावना, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। भाई सैटरडे की शाम है, यानी महिला सशक्तिकरण पर बात करनी है। महिला सशक्तिकरण पर जब बात करती हूँ तो आपको एक सशक्त महिला से मिलवाती हूँ। आप उनके जीवन के पन्नों को पलट कर सुनते हैं और साथ के साथ आप उनके सशक्तिकरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं डॉक्टर उषा यादव की बात करूं, तो इन्होंने कोई भी दुनिया का अलग काम करने के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने वो सोचा जो शायद नॉर्मल लोग कहते हैं कौन सा नया काम है। जी हाँ, लेकिन यही वो सबसे पहला बीज है जो सशक्तिकरण फैला सकता है। जब शिक्षा आप किसी को दे देते हैं ना, तो आप उनके जीवन को बदल देते हैं, आप उनके जीवन को एक सोच देते हैं, आप उनके जीवन को एक समझ देते हैं, और यही खूबसूरत सा काम आज की हमारी बहुत ही खास गेस्ट डॉक्टर उषा यादव कर रही हैं। डॉक्टर उषा, अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूं, तो अक्सर आपने देखा है कि हम ये कहते हैं कि बहुत सारी इक्वालिटी आ रही है, आज हमारी लड़कियां लड़कों के बिल्कुल बराबर है, महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं जो सही नहीं है। क्या लगता है, क्या है ये चीजें कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ आने के लिए हमें और किन चीजों की जरूरत है?
1: हमने शिक्षा कानून में काफी प्रगति की, लेकिन लैंगिक समानता के लिए समाज में अभी भी पितृसत्तात्मक मानसिकता की कमी है।
0: वाकई देखिए ना, मतलब हमेशा हम देखते हैं ना, माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जहाँ पर लोगों के विचार ही नहीं बदल रहे हैं। घर परिवार में आज भी ये फीलिंग है कि ये लड़की है और ये तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, तो इसके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए, बेटे पर लगाइए, वो इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक ये वाली फीलिंग रहेगी ना, तब तक हमारी ये जेंडर इक्वालिटी आएगी ही नहीं। और ये कहाँ से आ सकती है? ये हमारे घरों से आ सकती है, ये हमारी सोच से आ सकती है। और अगर हमारे देश का एक एक इंसान बिल्कुल ऐसे सोचने लग जाए ना, तो हम अपने देश के पूरे विचारों को बदल सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ, फील गुड फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं डॉक्टर उषा से। डॉक्टर उषा, अभी हमने ना बात की है जेंडर इक्वालिटी की और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब जेंडर इक्वालिटी वाकई कहीं है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, अक्सर आपने देखा होगा, खास तौर पर मैं अगर रूरल सेटअप की बात करूं तो अर्बन से ज्यादा रूरल में और शायद अर्बन में भी एक बड़ी परेशानी है। जब कभी भी एक लड़की अपना करियर आगे बढ़ा रही होती है तो करियर और परिवार, इन दोनों के बीच में आता है सबसे पहले चॉइस परिवार की, और लड़कियों को अक्सर ये कहा जाता है कि आप परिवार को चूज करो। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अच्छा खासा करियर, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर वो किसी भी अच्छी पोस्ट पर हैं, उन्होंने अपना करियर क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि परिवार के देखरेख की जरूरत थी। छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद एक महिला को कहा जाता है भाई अब आप नौकरी करना करें। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि लड़कियां अपना करियर भी आगे बढ़ा सकें, अपनी पहचान बरकरार रह सके और साथ के साथ अपने परिवार का भी ख्याल रख सकें?
1: करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा और टाइम मैनेजमेंट और आपसी समझ बहुत जरूरी है। महिलाएं घर के कामों में पति को भागीदारी बढ़ाकर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का उपयोग करके और काम व घर के बीच बाउंड्रीज बनाकर दोनों में संतुलन बना सकती है।
0: डॉक्टर उषा, आपने कहा कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और पुरुषों से घर के कामों में थोड़ी से सहयोग मांगने की, क्या आपको लगता है कि ये बदलाव वाकई आ सकता है? मतलब पुरुष जो हैं वो एक ऐसे माइंडसेट के साथ जीते हैं जहां उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम हमारे काम नहीं है, और चलिए मान लीजिए कि हम ये कहें कि वो ये करना चाहते भी हैं तो उन्हें इसका कहीं ज्ञान ही नहीं होता है क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया ही नहीं जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
1: उसमें महिला ये अपना पूरा सहयोग करे, तन मन से उनको समझाए कि भाई ये काम आप लोग भी हमारे साथ करोगे तभी तो हम उन्नति कर सकेंगे और तभी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।
0: हाल ही में मैंने एक छोटा सा सर्वे करने की कोशिश की थी डॉक्टर उषा, और उसमें ना मैंने बहुत सारी यंग लड़कियों से पूछने की कोशिश की थी कि क्या वो आगे बढ़कर शादी करना चाहती हैं और एक परिवार का हिस्सा बनना चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियों का ये कहना था कि हम इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद हमारी आइडेंटिटी और हमारा करियर दोनों ही खत्म हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद हम एक परिवार का हिस्सा बनते हैं और जिस नए परिवार में हम जाते हैं हमें पहले उसके हिसाब से ढलना होता है। चलिए वो भी कर लें, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए हमें अपने करियर को सैक्रिफाइस करना होता है। और अक्सर ही ऐसा होता है कि आप दूर दराज के एरिया में चले जाते हैं, शादी तो आपकी कहीं भी हो सकती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उस परिवार में लोग उन्हें अपने करियर को आगे ले जाने के लिए हाँ ना करें। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है या फिर मैं अपने शहरों की पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां पर आज की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं, और आप देख भी रही हैं कि आजकल शादियों की उम्र 25, 22, 23 ना होकर 31, 32, 33 हो गई है। सो क्या लगता है इन चीजों पे कहीं हम रोक लगा सकते हैं या कोई बदलाव लाया जा सकता है?
1: बदलाव तो शिक्षा के द्वारा ही ला सकते हैं हम।
0: जी जी, तो शिक्षा के जरिए आप क्या कहती हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं हम?
1: शिक्षा यदि एजुकेटेड होगा तो वो समझेगा अपने मन की बात को, वो जैसे हस्बैंड है वो वाइफ को समझा सकता है, वाइफ हस्बैंड को समझा सकती है, तभी तो काम आगे बढ़ सकता है, तभी संतुलन बन सकता है परिवार का।
0: देखिए डॉक्टर उषा ने ना बड़ा सही कहा है कि सबसे पहले जरूरत ये है कि पुरुष और महिला ये दोनों आपस में सामंजस्य बैठाए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप अपने घर की इकाई में हैं, आपकी जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, समाज की सबसे छोटी इकाई आपका परिवार है, आपका घर है। अब सब कुछ घर से शुरू होता है, परवरिश घर से शुरू होती है, सोच माइंडसेट घर से शुरू होता है, यहाँ तक कि आपके विचार आपके घर से होते हैं। आप अपने घर में जो देख रहे होते हैं ना बिल्कुल वैसा ही आप दूसरों के साथ करते हैं। डॉक्टर उषा, अगर मैं आपके घर की बात करूं तो आपके बच्चे ये देखते हैं कि मम्मी सुबह तैयार होती हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है, उन्हें स्कूल भी देखना होता है, उन्हें सामाजिक कार्य भी देखने होते हैं, तो उन्होंने शायद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आने वाले समय में हमारे जो स्पाउस या हमारे काउंटर पार्ट या हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं किसी तरीके के बिजनेस में होंगे, तो ये एक्सेप्टेंस जैसे आपके परिवार में आई है, आपको लगता है कि बहुत सारे घरों में अभी एक्सेप्टेंस आ गई है?
1: ज्यादातर परिवारों में अब आ गई है, जो कि दोनों कर रहे हैं, जहाँ सर्विस तो हस्बैंड भी उसका सहयोग कर रहा है और लेडीज भी कर रही है आपस में।
0: देखिए भाई, बहुत सारा बदलाव आ गया है और कुछ बदलाव आना बाकी है, लेकिन इस बदलाव को कौन ला सकता है? हम सब मिलकर ला सकते हैं, और मिलकर हम इस बदलाव को जानते हैं कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले अपने घर में इस बदलाव को इम्प्लीमेंट करके। तो करिए एक छोटा सा प्रयोग, जैसे कि हम जब स्कूल में होते थे तो हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते थे ना, ऐसे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स अपने घर से शुरू करिए। अपने घर के बच्चों को इक्वल जिम्मेदारी दीजिए, चाहे वो बेटा है या बेटी है, और अपने घर के पुरुषों को भी जिम्मेदारी देने की कोशिश करिए। जब वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब ये जिम्मेदारी के रूप में वो करेंगे, और अगर वो मना कर देना कि मुझे नहीं आता, तो आप भी अडिग होकर करवाइए। तो छोटे छोटे कामों से शुरुआत करेंगे ना, तभी जाकर बड़ी जिम्मेदारियां निभाने लायक वो बन जाएंगे। करिए ये छोटा सा एक्सपीरियंस और जुड़े रहिए रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

हाँ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। ढेर सारी सशक्त महिलाओं से हम बात करते हैं, वो महिलाएं जो सशक्त हैं, वो महिलाएं जो बदलाव लाना चाह रही हैं, वो महिलाएं जो बदलाव की ओर हैं, और वो महिलाएं जो बदलाव को सपोर्ट करती हैं। आज हमने ढेर सारी बातें की डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की और साथ के साथ एक बहुत ही सोशली एक्टिव महिला है। उषा जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाने से पहले क्या खास मैसेज या संदेश आप उन्हें देकर जाना चाहेंगी?
1: मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं करे, दोनों को पढ़ाया जाए, काम भी बरोबर बांट दिया जाए। और जैसे सुबह मैंने तो अपने बच्चों को भी ये, जब छोटे बच्चे थे तो मेरे पास भी एक लड़का एक लड़की थे, दोनों बच्चों को मैं सुबह एक ही काम के लिए चाय बनाने के लिए खड़ा करती थी, तो दोनों को खड़ा करती थी और सुबह दोनों को जल्दी उठाती थी। और ये शिक्षा नहीं थी कि लड़का रात को लेट आए या लड़की जल्दी आए, ये नहीं, सबको बरोबर मैंने उसमें रखा।
0: वाकई देखिए भाई, ये कहते हैं ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। डॉक्टर उषा ने अपने दोनों बच्चों को हमेशा समानता से पाला और आज एज एडल्ट वो दोनों अपने आप को समान महसूस कर रहे हैं। ना बेटे को ये लगता है कि भाई बहू सारा काम करेगी, ना बेटी को ऐसा लगता है कि ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। सो अगर इसी प्रकार की भागीदारी, इसी प्रकार की जिम्मेदारी हर घर में निभाई जाए तो हमारा देश ही बदल जाए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: मैडम आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: और दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे ले रही इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: तुम्हें अपनी माशुका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास में। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं होती हूँ आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक, जहाँ गाने आपको सुनाती हूँ और होती है ढेर सारी बातें। और आज बातों के साथ साथ मैं सिर्फ अकेले ही आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे शो में आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाली है, स्टूडियो में होने वाली है, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने जानने सुनने को मिलेगा। ये कौन है इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी। चलिए पहले नाम बता देती हूँ आपको, इनका नाम है डॉक्टर शेफाली गुप्ता, लेकिन इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एक गाना सुनाती हूँ, वो गाना होता है मेरी पसंद का। तो आज भी मेरी पसंद के गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और साथ के साथ आप अपनी पसंद सुनना चाहते हैं, या कोई आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, या कोई गाना किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई दूर बैठा है उसको आप गाना सुनाना चाहते हैं, अपने दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078। तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना। मैं हूं प्रियंका आपके साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: ये गाना आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं. साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ये यूथ को मोटिवेट कर चुकी हैं और समाज और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं. और इनका बहुत बहुत स्वागत. और ये तो सिर्फ चंद चीजें मैंने आपको बताई है, अभी तो बहुत कुछ इनसे जानना बाकी है. इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, हम इनकी लाइफ से जुड़े जो यू नो ऐसे कुछ ऐसे मुश्किल भरे पल रहे हम सब की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये कैसे उनको पार करके आज इस मुकाम पर पहुंची है हम इनसे जानेंगे. सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं
0: जी
1: बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और श्रोताओं से बात करने का मौका दिया. उन सबसे मैंने बहुत सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी. यही मेरा एक एम है समाज के लिए कुछ
0: जी. समाज में जब कुछ कर दिखाने की बात आती है बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर के कुछ काम करने की चीज वो बात आती है ना, तब बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कौन ही हमारा साथ देगा या इससे क्या ही बदलाव होने वाला है या इतने सारे लोग हैं हम क्या ही कर पाएंगे. ये सोच ही कई बार ना हमें जो हम अच्छा कर सकते हैं उसको हमें पीछे कर देती है. लेकिन ये चीज़ शेफाली जी ने नहीं सोची, आज इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं. शेफाली जी अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा ये तो मैं ज़रूर जानूंगी, लेकिन यहाँ तक आप पहुँचिए इसके लिए एक सोच जरूरी होती है. वो सोच डेवलप जो होती है ना वो बचपन से होती है. आई गेस आपके केस में भी ऐसे ही हुआ होगा. तो अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कैसे आपने कैसे अपना मुकाम शुरू किया बताइए इसके बारे में.
1: मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, इस जीने की जरूरत है.
0: करेक्ट.
1: इसी के सहारे मैं आगे बताना चाहूंगी कि मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, शिक्षा विशेषज्ञ, स्टूडेंट काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, और इसके साथ साथ मैं एक ईयर टू ईयर NGO जिसके साथ मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, जो मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं. और मैं ब्यूटी पेजेंट ग्रूमर, मीडिया पर्सनैलिटी, एक क्षितिज इंडियन आइकोनिक पोएट की संस्था है
0: जी.
1: उसमें मैं जुड़ी रही हूँ फॉर लास्ट 7 ईयर्स
0: जी.
1: एंड आर्यन टॉक्स के जुड़ी रही हूँ. ईयर टू ईयर में आपको बताया रिलेशनशिप काउंसलर हूँ. इवन में टीचर्स ट्रेनर, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ पहले. TRO में कंटेंट राइटर हूँ. मैं अपने आज के समाज को प्रेरित करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ. UOLB में स्टूडेंट काउंसलर हूँ, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं. इसके साथ साथ मैं ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हूँ. मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिए हैं, दुबई, कैलगरी, कैनेडा, और बहुत सारे अलग अलग तरह की जगह से यूनिवर्सिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं. सो आजकल के दौर में नए जमाने के स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं जैन जी के साथ जुड़े, मुझे बहुत पसंद है. वो मुझे एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है उनसे बात करके, नई चीजें सीखने मिलती हैं, और एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम मैं हमेशा करती आई हूँ. इसके साथ साथ क्योंकि मैंने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड था, इसीलिए मीडिया मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, मेरा पैशन है. सो मैंने रेडियो द्वारिका में काम किया है, NewsX में थोड़े दिन काम किया है, वेयर आई वॉज करेक्टिंग द कंटेंट्स एंड ऑल. सो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत में इंस्पिरेशन मुझे पेरेंट्स मेरे 21-22 ईयर्स तक तो साथ थे ही. उसके बाद भी उन्होंने कभी भी, हम दो सिस्टर्स हैं, उनको ये नहीं फील होने दिया कि हम गर्ल्स हैं. आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उस टाइम में हम सबको इतना एजुकेट किया कि आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और हम इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में हैं, जगह जगह पोस्टिंग रही है हमारी, तो हमारे साथ जितनी सीनियर लेडीज थे, जितने हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना, हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जहां हम हाई और लोज ऑफ लाइफ साथ में शेयर करते हैं. सो उनसे हमने बहुत सीखा, सीखते सीखते बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, फिर बच्चों ने हमें सिखाया, बच्चों ने मुझे सिखाया आज के टाइम में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है.
0: Correct.
1: कैसे हम लर्निंग को अपडेट कर सकते हैं. हमारी लर्निंग उस टाइम की है जहां हम लिखा करते थे, आजकल लैपटॉप आ गया है आपका, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, फिर आपको सोशल मीडिया में एवरीडे अपलोड करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इतना ज्यादा प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना सेफ रहना है एआई के जमाने में, इतने फ्रॉड्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी। आज भी दोनों मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी यू हैव गिवन योर लाइफ टू अस, नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लरिश एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे साथ में खड़ी है, जो हूँ आज मैं वो उनकी वजह से, माय सिस्टर, माय पेरेंट्स, हस्बैंड, माय चिल्ड्रन, ऑल आर एट द बैक ऑफ मी।
0: तो बिल्कुल इतना सब कुछ आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं और बहुत सारी चीजें, आप एनजीओ भी चला रही हैं, फिर आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, मतलब इतना सब कुछ कि मैं किसी एक चीज से तो आपको नहीं आपको कुछ कह पाऊंगी। हाँ ये जरूर कहूंगी कि मल्टीटास्किंग लेडी से हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो है हाथ आजमाए हुए हैं और अभी भी काम कर रही हैं। कभी जब आप पीछे मुड़कर खुद को देखती हैं और जब आप ये देखती हैं कि मैंने कितना सब कुछ कर लिया है, एक ख्याल तो मन में आता ही होगा, तो क्या थॉट आता है पहले आपके दिमाग में?
1: सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसका श्रेय पूरा मेरी आर्मी फ्रेटर्निटी को जाता है। जब आप आर्मी में होते हैं, आपके हस्बैंड आगे पोस्ट होती है, तो आप अपने आप खुद बच्चे मैनेज करते हैं, घर मैनेजमेंट होता है, तो हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हमें इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन वी ट्रैवल अलोन, वी डू एवरीथिंग अलोन। ये एक जो पावर आर्मी ने मुझे दी है उसमें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जितने भी काम हम मल्टीटास्किंग के आज कर पाए हैं, इट वॉज द ग्रूमिंग डन बाय दैट। सो आई ओ माई मल्टीटास्किंग एबिलिटी and many more things to my army fraternity. My thanks to my juniors and seniors. I learnt a lot from them. बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे। और दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। I have already done almost more than 2000 stage shows. I have compared a lot, more than 4000, 5000 shows there. So एक अंदर जो आत्मविश्वास होता है, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया था, उसमें था मेरे में आत्मविश्वास, पर मैरिज के बाद कभी बच्चे हो जाते हैं, आप अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आर्मी ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि मैं अपने ऊपर खुद सबसे पहले भरोसा करूं। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आज तक मैं अब खुद को पहली प्रायोरिटी देती हूँ। माई सेल्फ केयर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, देन एनीथिंग एल्स कम्स इन माई लाइफ, इवन फॉर द फैमिली ऑल्सो। जब मैं अपनी केयर कर पाऊंगी तभी मैं फैमिली की केयर कर सकती हूँ।
0: करेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली कि जब मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी, जब मैं स्ट्रांग रह पाऊंगी, तभी मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ। और ये एक बहुत ऐसी गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते भी हैं, वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को ताक पर रखते हैं दूसरों की वजह से। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुननी चाहिए, मैम से ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर शेफाली गुप्ता हमारे साथ में इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांगाम के साथ।

धूम मचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाती।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानवर्ष नाउ 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्राग आपके साथ और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जिनसे आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं. ये काफ़ी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से काफ़ी कुछ अचीव किया है. तो इनसे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं, ये सच्चाई भी है कि खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है. फैमिली को तभी हम टेक केयर कर पाएंगे, तभी हम अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, हम खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट. आज की जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, परिवार को देखने में, अपने करियर को बनाने में इतना डूब जाती हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रहता. और कहीं ना कहीं फिर जब एक एज आती है, जब हम उस चीज़ को अनुभव करने का, जब वो एक्सपीरियंस करने का जब वो पल आता है ना, तब हम अपने हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, अपने आप को लेकर परेशान होते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को?
1: आपने बिल्कुल सही कहा. आज के दौर में हम आर्टिफिशियल दुनिया में इतना आगे भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक इतने खूबसूरत इंसान हम थे. आप सोचो जब हमारा बचपन था कितना सुंदर होता था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बेफिक्र रहते थे हम. आज के टाइम में बच्चों का बचपन भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, बाहर गेम्स कोई नहीं खेलने जा रहा है. अब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, समाज में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और जहां तक आज की नारी की बात करते हैं, आज की नारी मल्टीटास्किंग जैसे आपने बोला वो करते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, आपको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. जब हम क्लास में जाते हैं, हम कुछ सुनते हैं, फिर हम होमवर्क करते हैं घर आकर, ऐसे ही हमारी बॉडी एक हमारा पार्ट है जिसको हमें लुक आफ्टर करना है. वो बेबी की तरह है, उसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना होता है. आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, योगा करना चाहते हैं योगा करिए, निकालिए अपने लिए टाइम. ब्यूटीफुल सुंदर वर्ल्ड है, कितनी सुंदर दुनिया है वहां सुबह की, ऑक्सीजन मिलती है सीधा. अपनी बॉडी के लिए जो सुबह काम कर सकते हैं आप, एक घंटा नहीं, एक घंटा शुरुआत होती है, 5 मिनट से तो करिए. स्टार्ट विद 5 मिनट्स, 10 मिनट्स बढ़ाइए, नेक्स्ट वीक 20 मिनट्स बढ़ाइए. कुछ चंद लम्हे उस इंसान को दीजिए जिसको सुबह उठ के आप शीशे में देखते हैं और वो आप हैं. लुक एट द मिरर एंड से यस, दिस इज मी, टुडे इज गोइंग टू बी माय डे. आज मैं जो चाहती हूँ वो मैं लेकर आऊंगी. शाहरुख खान ने भी बोला है ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने में आपका साथ देती है. तो यही अगर आप अपनी बॉडी के लिए केयर करना सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे. और शायद मैंने प्रियंका बताया था आपको, आजकल बटरफ्लाई हग बहुत चल रहा है. दैट इज, यू पुट योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर एंड से दिस इज मी, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ. सो ये जो बटरफ्लाई हग है ये एक मैजिकल हग होता है. आप शीशे में उस इंसान को जिसको आप 24 आवर्स चलाते हैं किसी दुनिया में बाहर की, उसमें थोड़ा सा टाइम देके देखिए, देखिए ये मैजिक दिखेगा आपको. दिखना शुरू विद इन सेकंड शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये अफर्मेशन है. इनको अफर्मेशन
0: सच्चे दिल से
1: करना है. अफर्मेशन होते हैं ना, दिस इज मी, आई इट, द डे इज बाउंड टू बी माई डे टूडे एंड इट विल हैपन. यू आर गिविंग द यूनिवर्स ऑल दीज, यू नो, ऑरा, योर ऑरा इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. तो आपकी चीजें अच्छी होंगी.
0: बिल्कुल,
1: सोच पे निर्भर करता है. मैं कहती हूँ आजकल की जितनी नारी हैं उनको यही बोलती हूँ कि आपके पास वो पावर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें डीपी लगाते हैं. मैं उसको बोलती हूँ डिस्प्ले पॉजिटिविटी. आप क्यों पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं. आपका आधा 50% काम उस पॉजिटिव सोच रखने से खत्म हो जाएगा. अगर आप सोचते हैं आज मुझे ये करना है तो आपका आधा काम तो हो गया, उसके बाद तो आपको थोड़ा सा काम ज्यादा आगे करना है. तो सभी नारियों से मेरी यही एक मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपनी इस खूबसूरत इंसान को जिसको आप शीशे में देखते हैं उसे टाइम दीजिए, उसको ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए और खुश रखिए.
0: बिल्कुल,
1: तो आप अंदर से मन खुश होगा तो आप बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे.
0: जी, तो जादू की झप्पी बहुत जरूरी है, ये मैम भी कह रही हैं. तो अपने आप को पहले जादू की झप्पी देना शुरू कीजिए और अपने लिए अच्छा कहना, अच्छा सोचना शुरू कीजिए. और ये ना मैं बहुत मानती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है ना, और उसके बाद दिमाग में वही चीजें चलती रहती है और आप जैसा फिर सोचते हो ना वैसा ही आप रिएक्ट करने लगते हो, आप के जो एक्शंस है ना वो भी बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। अगर आप अग्रेसिव कुछ सोच रहे हैं तो वो अग्रेसिव जो एक्शंस हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसके उलट आप सोचिए, आपको हमेशा अपने मन में प्यार रखना है, अच्छापन रखना है, अच्छा हर इंसान होता है, लेकिन उस चीज को बस अब आपको उस शैडो से निकल करके सामने लाना है, फिर आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी, आपने खुद भी कभी यकीन नहीं किया होगा, और ये खुद मैम कह रही है और इतना एक्सपीरियंस, अभी हम और बहुत सारी बातें मैम से जानेंगे, साथ के साथ मैं सुना रही हूँ गाना, तो इस वाली बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत मोटिवेट करेगा आपको ये गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

0: गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078, रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट काउंसलर है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ ही के रिलेशनशिप कोच हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लगता है जो ये कर रही हैं उनसे अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहली चीज़ जो सबसे पहले मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने कहा कि आप आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और कहीं ना एक ये सवाल सबके जहन में रहता है कि मुश्किल होता होगा ना, ऐसे कि एक डर रहता है हमेशा, राइट? एक मन में हमेशा डर बना रहता है, साथ में बच्चों को भी टेक केयर करना है, घर भी देखना है, तो कैसे मैनेज, मतलब सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, कैसे आप मैनेज कर पाती हैं इतना सब कुछ और कैसे उस डर से आप बाहर निकल पाती
1: हैं? कहते हैं खुदा ने शायद हम लोगों को चुना है इतने सारे लोगों में जो स्ट्रांग लेडीज हैं कि हम इस डर से ऊपर निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आर्मी ऑफिसर्स की पत्नी के लिए चुना है शायद, क्योंकि हमारा जो डर है वही हमारी ताकत है।
0: करेक्ट।
1: हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे यूनिट है, ब्रिगेड है या कोई भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी में, वो सब इतना साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम अकेले हैं या डर हमें कभी साथ लेगा। जैसे हम सिस्टर्स आपस में एक घर की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, वैसे ही हमारे साथ हमारे सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो कभी अकेलापन नहीं लगता। इट्स अ बिगर लार्जर ब्यूटिफुल फैमिली विच वी कैरी विद अस, सो डर का तो सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा डर हमें इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि हमारे हस्बैंड एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वो एक बहुत गर्व की बात है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए बहुत गर्व से सर ऊंचा करने वाली बात है, देश के गौरव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, गरिमा के लिए। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ ये कहते हुए कि बाकी सब चीजों से ऊपर जो मेरी आज पहचान है वो यही है कि मैं आर्मी ऑफिसर की पत्नी पहले हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं वो केयर, वो प्यार, वो भी कहीं की आगे बढ़ने में सपोर्ट देती है। वही एक सपोर्ट और होता है जो हमारे लाइफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो अपने परिवार वाले होते हैं, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं मुझे बताना अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है अपने किसी लव्ड वन का, लेकिन इनका सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में और जितना आपने अचीव किया है इसमें अपनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सही कहा। हाँ,
0: जी,
1: इस सपोर्ट के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ता।
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: मेरे फादर हमेशा कहते हैं हमारे पास कुछ सर्कल्स होते हैं, हमारा जो इनर सर्कल है उसमें सिर्फ हम है, इट्स मी आई, जिसके ऊपर सारे लोग टिके हुए हैं। सेकंड सर्कल में आपके हस्बैंड और बच्चे आते हैं जो आपकी फैमिली बनते हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत सारी निर्भरता रहती है, उनको मेंटली सपोर्ट करना है, फिजिकली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है बच्चों को आपको, तो हस्बैंड और वाइफ मिलकर ये चीजें आगे प्लान करते हैं। अब बच्चों का साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा बच्चे रहेंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, सो ये सपोर्ट हमारे सेकंड सर्कल का है। थर्ड सर्कल में हमारे आते हैं हस्बैंड के पेरेंट्स और गर्ल के पेरेंट्स, सो इन चारों भी हमारे ऊपर डिपेंड है क्योंकि हम ये इनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी लुक आफ्टर करना होता है उनका, उनकी आज की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। और दो आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स और सब हैं जो अपने आप में खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो कर लेते हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केयर के लिए भी हमें मिल जाती हैं। उसके बाद फिर हमारा आउटर सर्किल आता है जहां हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी जिंदगी हैं। आजकल की दुनिया में फ्रेंड्स होना और फ्रेंडशिप खत्म होना मैंने बहुत यंग बच्चों में देखा है। आप लोग फ्रेंडशिप को सिर्फ वहां तक देखते हैं जहां आप एंजॉयमेंट देखते हैं, आप वहां तक फ्रेंडशिप को देखते हैं जहां आप ये चाहते हैं कि अच्छा आज हम यहाँ चलेंगे, आज हम यहाँ खाना खाएंगे, आज हम मूवी साथ में देखेंगे, पर फ्रेंडशिप इससे ऊपर है। ये फ्रेंडशिप आपकी जो बनती है आपके इस सर्किल में ये आपके फैमिली बन जाती है, कुछ टाइम के बाद आपका फैमिली फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रेंड्स फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं. आप देखिएगा 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ लाइन ही फ्रेंडशिप फ्रेंड्स होते हैं. वो लुक फॉरवर्ड करते हैं आज सुबह आज कहाँ जाएंगे, आज हमारी किटी पार्टी, स्पेशली लेडीज का, इवन जेंट्स का भी स्टैग पार्टीज होती है. सो उनके लिए फ्रेंड्स उनकी जान है हम लोगों के लिए, जिनसे हम सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सुख दुख को आपस में करते हैं. तो कहा भी ये गया है, एवरी मोमेंट हैज लव इन इट, एवरी आवर हैज हैप्पीनेस इन इट, इफ यू लूज इट इट बिकम्स मेमोरी एंड इफ यू लिव इट इट बिकम्स लाइफ एंड आवर लाइफ इज आवर फ्रेंड्स. सो ये सारी सर्कल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसके बाद हमारा मिला के जो बनता है दैट इज हमारा राष्ट्र निर्माण, जहां हम अपनी फैमिली के साथ अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: हमने जितना सीखा बचपन से आज तक, क्या हम उसका 1% भी अपनी सोसाइटी में गिव बैक कर पाए हैं? आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा. कई बार होता है हम डोनेशन के लिए जाते हैं, कहीं ओल्ड एज होम में जाते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं. बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं, स्पेशल नीड्स के हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ बातें करते हैं. इतनी सारी चीजें अगर हम करते हैं ये आपके दिल को सुकून देती हैं. ये सारी चीजें आपके लिए खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि हमें इतना कैपेबल आज समाज ने बनाया है कि हम उसका बहुत आभारी है कि हम उसको वापस भी ये करेंगे. दुनिया बहुत छोटी है, छोटी सी जिंदगी है, इसी में हमारी जिंदगी एक अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ निकल जाती है. सो मैं हमेशा एक मेरा बहुत मंत्र है मेरा प्रियंका, वो शेयर करती हूँ श्रोताओं के साथ आपके साथ. मैं अपना GPS खुद लेकर चलती हूँ. आप मोबाइल उठाते हैं, आप GPS लगाते हैं, मेरा GPS मेरे साथ रहता है. जी इज फॉर ग्रेटिट्यूड, पी इज फॉर पॉजिटिविटी एंड एस इज फॉर स्ट्रेंथ, नो योर स्ट्रेंथ. बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वो कंपटीशन में आ जाते हैं.
0: जी, जी, जी.
1: पर उनको अगर अपनी स्ट्रेंथ आज पता चल जाए, आज लाइनें खुली हुई है बच्चों के लिए करियर में. आप म्यूजिक में अच्छे हैं, ड्रम बजाने में अच्छे हैं, आप पहले टाइम में होता था डॉक्टर इंजीनियर और IAS और यही सब चलता था, आज तो लाइन्स ही लाइन्स है, जहां आप जाएंगे वहां जा सकते हैं. सो आई कैरी माई GPS विद माईसेल्फ एंड आई रिक्वेस्ट आपके सारे श्रोताओं से अपने GPS को अपनी एक कीवर्ड बना लीजिए और दुनिया देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत हो जाएगी.
0: वाओ, अगर थॉट चेंज हो जाए तो सब कुछ हम ही है. ये थॉट ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है, लेकिन जिनके अंदर होता है ना उनके बात करने का तरीका, उनका उनकी प्रेजेंस ही बहुत स्ट्रांग होती है. या आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने लिए जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि अच्छे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा, और ये हर कोई डिजर्व करता है, हम जो हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं हम सब अच्छा डिजर्व करते हैं. राइट, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको प्रेज करें. राइट, और कभी भी ग्रैटिट्यूड मत भूलिए, उसको हमेशा रखिए. तो ये छोटी सी चीज़ जो समझ लेता है वो अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है. रेडियो वाणा वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरे लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रागा और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. शेफाली, बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं. अच्छा, कभी एक ऐसा पल आया जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ना कभी ये आता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे. तो ये वाली चीजें ना सभी की लाइफ में होती है, है ना. कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है, और आई एम श्योर मुझे पता है आपके पास भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा ही. तो बताइए कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है इंटरेस्टिंग.
1: बिल्कुल, इंटरेस्टिंग तो कई बार हुआ है
0: जी.
1: पर अब मुझे उन लोगों पे बहुत दया आती है, तरस आता है कि कैसी सोच है.
0: और यहाँ पता मैं क्या कहती हूँ, यहाँ मैं कहती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता.
1: बिल्कुल, मैं अपनी फेवरेट हूँ. कुछ लोगों की सोच वहाँ वहीं तक सीमित होती है.
0: करेक्ट.
1: और मैंने अपनी आउटर लेयर इतनी स्ट्रांग की हुई है कि मुझे उनकी सोच से फर्क नहीं पड़ा. कुछ सोच थी, पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, उसके बाद आर्मी ऑफिसर से मैरिज हुई, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर जैसे जैसे मुझे सक्सेस धीरे धीरे मिलती गई, बहुत काम किया है. आई हैव डन ऑन फील्ड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत काम किया है मैंने, और अभी भी मैं करती रही हूँ. पर कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये कैसे आगे बढ़ गए, इनमें तो शायद ये खूबी थी नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक है. सो आने वाले टाइम में, पिछला टाइम, अभी का टाइम, अब ये नहीं मैटर करता मेरे लिए, बिल्कुल नहीं मैटर करता है, क्योंकि वो उनका ब्रॉटअप है, उनकी सोच है, और वो वहीं तक है. मैं कहां से कहां पहुंच गई, बट वो वहीं की वहीं है. सो दैट वे आई डोंट इवन कंपेयर विद एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. मैं कर रही हूँ, मेरा सोल सेटिस्फेक्शन है, मेरा अपना जिंदगी है, और मैं अपनी तरह से अपनी जिंदगी को डील करती हूँ.
0: अगर कोई फेस कर रहा है अभी एक करंट और हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, बड़ा परेशान के चार लोगों ने दिखते नहीं है लेकिन परेशान कर रखा है, और वो उभर ही नहीं पा रहे इस चीज से, और इस वक्त वो हमें सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: Always remember, I am the best.
0: Yes.
1: Nobody is best than you, you know? हमें जब मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल टाइम में, मुझे याद है मेरे फादर बोलते थे आप शीशे में देखकर अपनी प्रैक्टिस करो. तो मैं हमेशा शीशे में देख के वर्बेटम पूरा प्रैक्टिस करती थी. आई ऑलवेज यूज टू स्टूड फर्स्ट देयर. सो मैं एक ही चीज उनकी याद रखती हूँ, बोलते हैं जब आप अपना काम कर रहे होते हो तो ये सोचो दूसरे को किसी को कुछ नहीं आता, बस. सो आई एम द बेस्ट. रिमेंबर दिस थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. जिस तरह से आपको एक यूनिक इंसान भगवान ने बनाया है, कि हमारे तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मैच होते आपस में. सो हाउ कैन वी से कि चार लोग क्या कहेंगे, सोचना ही नहीं है. हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है, मीन्स हम यूनिक है, हमसे आगे कोई नहीं है दुनिया में. सो ऑलवेज रिमेंबर, हम एक ब्यूटीफुल सोल है, बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छा काम दुनिया के लिए करके जाएंगे, कुछ नाम कमा के जाएंगे, कुछ यादें छोड़कर जाएंगे.
0: आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, रिलेशनशिप की जब बात आती है आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसको लेकर?
1: कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, हमने एक सर्वे भी किया था इस बारे में. सो रिलेशनशिप को लोग आजकल सीरियसली नहीं ले रहे हैं. उनके मन में है कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज्यादा है. बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, सो दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ईच अदर. अगर आप जिंदगी को हल्का फुल्का ले लेते हैं तो क्या चला जाएगा? इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर. एंड हमने देखा होगा हमारे पुराने टाइम में लोग ये सब सोचते ही नहीं थे. किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे बार में सॉरी बोल दिया, बात आगे चली गई. अभी वो थोड़ा सा भी अगर कोई बोलते हैं सॉरी तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है. सो हमारे मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, होता है, साइंटिफिकली इट इज प्रेजेंट, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, कितना डीपली आप अपने अंदर उसको ले रहे हैं, और उसकी भी टेक्निक्स हैं. सो मैं ये बोलूंगी रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा. एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए. आपने शायद, मेरे ख्याल से शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें था कि कभी भी वो अपनी फ्रेंड से भी तू करके बात नहीं करते हैं. इवन काजोल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम, बट वो कभी भी तू करके बात नहीं करते, हमेशा आप करके बात करते हैं. या शाम को, या राजा शाम को चाय पीते हैं, उन्होंने कभी या नहीं बोला. ये ऑलवेज इज, आज शाम को टाइम है तो आ जाना, साथ में बैठते हैं. यूज अ रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज विद ईच अदर. एक दूसरे को आप सम्मान देंगे तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है जहाँ आप एक दूसरे को कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं. एक लड़की है जिसने अपनी जिंदगी पूरा टाइम पेरेंट्स के पास दी है, उसके बाद वो आपके पास आई है. एक बॉय है जिसने पूरा टाइम अपने पेरेंट्स का साथ दिया है, वो आपके साथ रहने के लिए आया है. सो ये दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप साथ में है. इस बीच में ये नहीं आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने ये किया, मेरे पेरेंट्स ने ये किया, या मेरे घर में ऐसा हुआ, आपके घर में ये हुआ. दोनों का ब्रॉटअप अलग है, दोनों का स्टडी मटेरियल अलग है, जहाँ आप पढ़े हैं हो सकता है साथ में पढ़े हो. सो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी टंग से क्या बाहर जा रहा है या इन अ वे हेल्दी के लिए अंदर क्या जा रहा है, दोनों चीजों का डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पार्टनर को ये नहीं आता. आपने उसको जज किया, जजमेंट खत्म कर दीजिए. जहाँ जजमेंट खत्म हो गया वहीं आपको ले गए, तो बहुत सुंदर इंसान है. और जिससे आपने मैरिज किया वो कैसे गलत हो सकता है. हमारे यहाँ डिवोर्स वर्ड नहीं होता काउंसलिंग में, रिलेशनशिप में. हम चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा उन्होंने कम्प्रोमाइज किया, थोड़ा इधर से कम्प्रोमाइज हुआ, थोड़ा वो हैप्पी हो गए, थोड़ा हम हैप्पी हो गए. ऐसे करते करते लाइफ कब में निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा. क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद सारे रिश्तों से ऊपर है.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: सही. तो मेरे हिसाब से आपको पहले रिलेशनशिप में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वरिष्ठ 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. डॉक्टर शेफाली, हेल्दी रिलेशनशिप को अगर रन करना है तो उसकी की क्या है?
1: हेल्दी रिलेशनशिप की एक बहुत अच्छी की है कि खुश रहिए. क्योंकि आजकल की जिंदगी में सबसे एक्सपेंसिव चीज खुशी है.
0: करेक्ट.
1: जिसका कोई मोल नहीं है. और आपके पास तो भगवान ने फ्री में स्माइल दी है. कुछ भी कोई बोलता है, छोटी सी स्माइल देके प्यार से बात कर लो.
0: करेक्ट.
1: चीजें अपने आप सुधर जाएंगी. छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाना खत्म कर दीजिए. चीजें आपको लगेगा बहुत सिंपल हो गई है. किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो जस्ट ब्लेस देम, एक दूसरे को. छोटी छोटी चीजों में, आज मैंने देखा था आई थिंक दो दिन पहले किसी एक कपल के बीच में लड़ाई हुई. इतना गुस्सा आ गया, इतना एंगर हो गया उसमें कि उन्होंने उसको थप्पड़ी मार दिया तो वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया. सो इतनी सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम स्टेप पर क्यों जाने दें हम इन चीजों को? जब हम दोनों की लाइफ है तो हम दोनों अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है. है ना. सो आप छोटी छोटी खुशियों को बांटिए. आज नहीं मन हो रहा उसका खाना बनाने का, कोई नहीं, बाहर से खा लीजिए, बाहर चली जाइए. आज नहीं आपको हो रहा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है हस्बैंड का मूड हो अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, तो गिव हिम सम स्पेस. ऐसी आपका मन है तो गिव हर सम स्पेस. यू नो इट्स अ वाइस वर्सा. आपको स्पेस देनी है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ईगो साइड में रखनी है. आजकल हम सभी, आपने देखा है, सभी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है. सो ये जो ईगो आ जाती है ना 30 इयर्स के बाद, ईगो से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. इन सबको साइड में रख के अच्छी जिंदगी बिताइए. एंड दिस इज द की.
0: करेक्ट. एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है एक दूसरे को स्पेस देना. राइट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि आप अकेले बैठो. बहुत सारे सवाल जो हम अकेले में ही उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन ये चीज ना समझ में नहीं आती है आज के टाइम पर. और एक चीज जो मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप में ये हो जाए तो एक बेहतर रिलेशन चलेगा, वो ये है कि जो अच्छी चीज़ है ना हमेशा उस पर ध्यान दें. हम क्या करते हैं, बुरी चीज़ें हम याद रखते हैं, जहन में अपने रखते हैं. इसके बाद जब थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो वो सारी बुरी चीज़ें फिर वो सामने आती
1: हैं. ये साइंटिफिकली ह्यूमन नेचर है.
0: यस,
1: इट्स अ ह्यूमन नेचर, नॉट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ओनली. ये हम कहीं भी देखेंगे तो हमारा नजर सबसे पहले उस पर ही जाती है कि नेगेटिव क्या है. सपोज समबडी इज वेरी वेल ड्रेस्ड, सो आप कॉम्प्लीमेंट करते करते ही आपको पता जाएगा इसमें क्या कमी है.
0: राइट.
1: तो ये एक ह्यूमन नेचर है जिसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल.
0: बिल्कुल. और इसे बिल्कुल चेंज किया जा सकता है. लाइफ बहुत अलग कहे कि 360 के एंगल पे चेंज हो जाएगी अच्छे वे में. रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रियंका, आपके साथ हर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

तेरी कचरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी कचरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग।

0: भी है, पढ़ा भी है और ये सच है कि आज का यूथ देश का निर्माण करता है, देश का भविष्य बनाता है
1: जी।
0: हमारे हर सेक्टर में जहाँ जहाँ आज यूथ है, कुछ कॉलेजेस में है, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बटरफ्लाई एग्जीक्यूटिव्स हैं, अलग अलग ओहदे पर हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं। सो मैं यूथ से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखिए और मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें से हंस के जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हम सभी जानते हैं, इस पर अमल करिए। ईच मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन, पिछला कल क्या था उससे सीख कर हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेवलपमेंट में, हमेशा लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, इवन आप अगर रोड पर भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको एकदम अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको लगता है ये तो ठीक ही नहीं है। सो हर जगह से आपकी लर्निंग होती है, हर जगह से आप अपने पर विश्वास रखें, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट एंड प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है मेंटल हेल्थ पर, माइंडफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, योगा है, मेडिटेशन है और बहुत सारी अलग तरह की कलाएं हैं, पेंटिंग है, गो इन द गार्डन, आजकल तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई है हैदराबाद जैसी जगह में जहाँ आपको एक प्लेस अलॉट कर दी जाती है, वहां पर आप जाकर मेडिटेट करके वापस आ सकते हैं। ये ऑफिसेज में भी उन्होंने शुरू कर दिया है, छोटा सा जंगल टाइप बना दिया है, वहां पर आप एक राउंड लेकर भी वापस आ सकते हैं। तो इस तरह की स्पेसेस हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है बिग सिटीज में, इसी तरह आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, जहां आप रुक गए वहां आपको लगेगा अब बस हो गया।
1: करेक्ट।
0: तो यहां से निकलना हमारे हाथ में है, ये पावर सिर्फ हमारे हाथ में है, अपने आप को खुद को मोटिवेट रखने की।
1: और सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, मतलब जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तब तक आप लर्निंग जारी रखिए, क्योंकि एक बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए, राइट। तो बातें बहुत सारी हैं और आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मैम से, तो नंबर है हमारा 8010781078।
2: रात अकेली है

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. आपने एनजीओ के बारे में भी बात की कि आप एनजीओ से जुड़ी हैं, तो ये एनजीओ क्या करता है और इसके बारे में कुछ बताइए.
1: मैं काफ़ी सारी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ. एक एनजीओ है एयर टू एयर जिसमें वो सिर्फ मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं.
0: ओके.
1: लोगों से सुनते हैं, लोगों को आजकल लिसनर्स चाहिए तो लोग उनसे अपनी प्रॉब्लम को जस्ट डिस्कस करते हैं. कोई जजमेंट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं. दे जस्ट गिव देयर टाइम.
0: और ये कोई भी जाकर
1: कर सकता है. देन दे गिव अ प्लेटफॉर्म टू अ पर्सन कि आप आइए, अपनी शर्म को साइड में रखकर आप ओपन अप होइए, बी कॉन्फिडेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. सो इट्स ईयर टू हियर. एंड देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कार्या केयर. वहां पर मैंने एक बहुत अच्छे इंसिडेंट में आप सबसे श्रोताओं से आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगी. आगरा में इनका एक अवार्ड फंक्शन था. सो ये मेरे कजिन का है, मेरे हस्बैंड के कजिन है, उन्होंने किया है. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ हम एक पुअर बच्चों को एजुकेट भी करते हैं, पूरी दुनिया दिखाते हैं. सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो वहाँ उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाइए उधर और जाकर आप अवार्ड फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट रहिएगा. सो मैंने उसको अटेंड किया. इतना मुझे सुकून मिला वहाँ जाकर क्योंकि वो सारे बच्चे ऑलमोस्ट उस टाइम में वो 150 से ज्यादा बच्चे थे उनको ताज में बैठाया. ताज होटल में आगरा उनको वही प्रोग्राम उन्हीं से प्रोग्राम भी कराया. उनको एज अ सेलिब्रिटी फील कराया. खाना खिलाना, उनको रूम्स दिखाना, उनको ताज के अंदर की सारी चीजें विजिट कराना. मुझे इतना अच्छा लगा. उसमें से एक बच्चा था जो मे बी शायद 18 इयर्स का था. वो उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ इस ताज के सामने दूसरी साइड बैठकर मैं भीख मांगा करता था. लेकिन मुझे किसी ने इस एनजीओ के बारे में बताया, यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया. आज मुझे ताज के अंदर आके लग रहा है कि मैंने सपना जो देखा वो पूरा होता हुआ लग रहा है. अब मैं कुछ बनूंगा आगे और मैं यहाँ आऊंगा बनने के बाद अपने बलबूते पर. तो मतलब उन्होंने उन 150 बच्चों को सपने दिखाए.
0: Nice.
1: कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, अच्छी जिंदगी को जीजिए. उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मजदूरों के बच्चे थे, बहुत सारे थे जो स्लम एरिया से आए हुए थे कुछ. सो आगरा में सीमित थे वो सारे. मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों से बात करके. एक ऐसा इनिशिएटिव जो शायद हमें करते रहना चाहिए. एक और यहाँ पर एक है जो ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करने में आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है.
0: अच्छा, एक के सोचने वाली स्थिति भी है कि किसी टाइम पर लोग बातें किया करते थे, सुना करते थे, लेकिन आज के टाइम पर कितनी कमी हो गई है कि हमें अपनी बात शेयर करने के लिए कोई हमें सुने उसके लिए हमें जाना पड़ रहा है. जबकि एक टाइम पर लोग आसपास होते थे, अपने अपने परिवार वाले, दोस्त, पड़ोसी, सभी जो मिलकर एक
1: इसमें प्रियंका न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई ना.
0: बिल्कुल,
1: उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है.
0: यस यस यस. तो ये एक चीज. लेकिन हाँ, कभी कोई आपके आसपास ऐसा हो जो हमेशा चुप रहता है और ज्यादा बात नहीं करता है, कभी भी उससे कुछ ऐसी बात ना कहिएगा क्योंकि बहुत कुछ मन के अंदर होता है. और कभी बैठ करके सिर्फ उसकी बात सुनिएगा. ऐसे भी हम कहते हैं ना कि हम कैसे हेल्प करें, आप ऐसे भी मदद कर सकते हैं. बहुत अच्छी चीज जो बहुत बढ़िया होगी उसके लिए भी और आपके लिए भी. रेडियो माना वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्राग आपके साथ.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस वक्त काफ़ी सारी बातें हम डॉक्टर शेफाली गुप्ता से कर चुके हैं और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे साथ में हैं ये और ये जो हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करते हैं. आप सोचिए कि कितना सारा एक्सपीरियंस इनके पास में है और उसी एक्सपीरियंस से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं कि अपने आप को कैसे बढ़ाना है. और जब भी हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे लेकर जाना, समाज में कैसे अपने आप को वो दर्जा देना है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं ना. तो आप क्या कहेंगी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, यूथ हैं या जो भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी उनके लिए?
1: बहुत सारे श्रोताओं को मैं यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे पर उनसे भागना नहीं है, एक तो उनका सामना करना है, दूसरा उन चैलेंजेस को ब्रेक करिए. अगर आप एक ही बार में वो चैलेंज फेस करते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, इसे कैसे पार हो पाएंगे. लेकिन उस चैलेंज को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में लेते जाएंगे तो आपका चैलेंज नीचे नीचे ही सुधरता जाएगा. अगर आप उसको ओवरलोड करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हीप बन जाता है उसका.
0: करेक्ट.
1: तो आप हमेशा ब्रेक करिए, अपने दिन को प्लान करिए. अगर चैलेंज आता है आपके पास कि चलो आज हमें ये चैलेंज आया, इसको किस समय पूरा करना है, तो आपके माइंड उसमें उलझ गया. उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी क्योंकि आप चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो तो नहीं निकलना है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा. पर अगर आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो चैलेंज और बड़ा हो जाएगा. इसको सबसे पहले छोटे छोटे उसमें ब्रेक करिए, पार्ट्स में एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए. एक प्लान बनाइए, एक डिसिप्लिनरी प्लान बनाइए कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे. उस बीच में थोड़ा सा अपने लिए एंटरटेनमेंट का भी टाइम रखिए जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए एंड देन अगेन कम ऑन टू दैट चैलेंज. ये हर फील्ड में होता है, कोई ऐसी फील्ड दुनिया में बनी ही नहीं है जो चैलेंज के बिना प्रोग्रेस नहीं हो.
0: करेक्ट.
1: आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें भी एक चैलेंज है, सीईओ बैठकर कहीं मीटिंग दे रहा है वो भी एक चैलेंज है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए. आप एज अ मीडिया पर्सनैलिटी है, आपका कौन सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए, यू नेवर नो.
0: बिल्कुल.
1: सो इस तरह से हर फील्ड के चैलेंजेस हैं, उनका सामना बहुत हिम्मत के साथ करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है. चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसके सॉल्यूशन के साथ उसको देखना है. प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बड़ा लगेगा. इस तरह से आप उसको ब्रेक कर करके प्लान बना के सॉल्व कर सकते हैं. और अगर जहां आप नहीं कर पाते हैं वहां अपने सीनियर्स की मदद लीजिए. बिल्कुल. अगर आपके लाइफ में हर तरह से हमारे पास काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर हैं, और भी आगे आप जाना चाहते हैं, आपके हो सकता है बॉस बहुत अच्छे हो, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पूरा समाज आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं. चैलेंजेस में अकेला मत समझिए अपने आप को, आपकी सराउंडिंग, आपका समाज, सब आपके साथ है.
0: जी, तो ढेर सारी बातें आज हमने डॉक्टर शेफाली गुप्ता से की. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी.
1: थैंक यू.
0: चलते चलते सभी लोगों का
1: प्लेजर एंड
0: जी
1: ऑनर. थैंक यू.
0: तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा उन सबके लिए?
1: आई ऑलवेज से कैरी योर जीपीएस ऑलवेज विद यू, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी एंड नो योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन इट. सो कैरी योर जीपीएस एंड डिस्प्ले पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. योर सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बी लीड अ हैप्पी लाइफ. दिस लाइफ इज ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत जिंदगी है. जितना हैप्पीनेस के साथ आप जिएंगे उतना ही इस जिंदगी को आप बहुत कुछ देकर जाएंगे.
0: जी, इस प्यारे से मैसेज के साथ में चलिए, मेरे चलने का भी वक्त हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM. दीजिए इजाजत. बाय.

0: चलिया।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता का और जीवन का जा भी सिखाया था, ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके वैसे तो बहुत सारे शागिर्द हैं, उन्हीं में से एक शागिर्द हैं जिनका कहना है कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं जिन्होंने कविता काका और जीवन का जा भी सिखाया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता था कुंवर बेचैन के शागिर्दों पर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। वो गोपाल दास नीरज के बाद मंच पर सराहे जाने वाले कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। कुंवर बेचैन ने आधुनिक गजल को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दैनिक जीवन से जोड़ा है। उन्होंने गजल की संरचना समझाने वाली एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गजल का व्याकरण, उस पुस्तक को लिखा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, जिसका नाम है गजल का व्याकरण। बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी हैं और गजल लिखने का जो तरीका है उस तरीके को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा गीत भी बहुत सारे लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का जिक्र होगा, उनकी गजलों की बात होगी और बात होगी उनके गीतों की भी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का एक जुनून हुआ करता था मेरे अंदर। मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दयाशंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि गाजियाबाद में तो सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। पता पूछकर मैं बेचैन जी के घर नेहरू नगर पहुंचा। वो घर पर ही मिल गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझ में कविता लिखने के साथ उसे सुनाने का भी शौक था। मेरे निवेदन पर बेचैन जी ने मेरी कविता सुनी। कविता में तो कोई बात कविता जैसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठ कर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: ऐसे सितम कर से पाला पड़ा, पास आने ना दे हो दूर जाने ना।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि प्रकृति में या घर में बाहर अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको जिंदगी से जोड़ो, फिर कविता में उसे ढाल दो। मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने गाहे बगाहे उनके घर जाने लगा। इस बीच मैं लाल क्वार्टर मोहल्ले में रहता था, वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वर स्वामिनी तरुण समिति बना डाली। सभी ने तय किया कि लाल क्वार्टर मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और इस सिलसिले में अश्क जी से बात भी हो गई। उनके मार्फत ओज के सुप्रसिद्ध कवि वेद प्रकाश सुमन जी से मिलना हुआ। कवि सम्मेलन की बात बनी, तय हुआ कि कुंवर बेचैन जी का इस कवि सम्मेलन में अभिनंदन करेंगे। अब दोस्तों, कुंवर बेचैन के शागिर्दों ने उनको कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया, और अगर किया तो क्या वो आए? आए, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है उनके एक ऐसे शागिर्द के बारे में कि जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी शागिर्द का कहना है कि मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी कवि चरण शंकर प्रसून और मैं बेचैन जी के घर पहुंचे, उनसे आग्रह किया, वो मान गए। हमने कहा कि इस मोहल्ले में हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और वो हमारी बात को मान भी गए। मोहल्ले में घर घर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया और कवि सम्मेलन करवा डाला, बेचैन जी का अभिनंदन किया, जैसा भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। वेद प्रकाश सुमन जी ने संचालन करके कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। 2 दिन के बाद मैं फिर बेचैन जी से मिला। बात बात में मैंने कहा कि समिति की ओर से एक स्मारिका निकालनी है, अपनी कोई कविता दे दीजिए, इसे हम कवर पेज पर प्रकाशित करेंगे। बेचैन जी ने हमें जो कविता दी वो माँ शारदे पर लिखा छंद था। वो कुछ यूं था, नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे, मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे माँ मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे, मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, कवि सम्मेलन के बारे में जहां उनको आमंत्रित किया था, और उसके बाद उनसे उनकी एक कविता ली गई थी जिसको छपवाने की बात हुई थी, और वो कविता उन्होंने सुनाई भी थी। उस कविता को सुनकर उनका शागिर्द कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि हम इसे 3 महीने में प्रकाशित कर देंगे। उस समय पद्म भूषण गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, राजेंद्र राजन और उर्मिलेश जी ने डाक से अपनी रचनाएं हमें भेजी। हमने भी साहस करके पैसे जुटाए और एक स्मारिका प्रकाशित कर ही दी। 3 महीने के बाद मैं बेचैन जी के पास स्मारिका लेकर गया। उनके घर के गेट पर बाहर ही खड़ा था। बाहर बेचैन जी आए, दरवाजा खोला, मैंने स्मारिका उनके हाथ पर रख दी। ये देखकर वो इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी यानी हमारी मम्मी जी, उन्हें मैं मम्मी जी बुलाता था, उनके पास ले जाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, ये होती है सच्ची लगन, जो कहा वो किया। उन्होंने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो उनसे मिलने का सिलसिला ही चल निकला। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो सारी बातें आपके साथ मैं साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्द के बारे में। उनके शागिर्द आगे बताते हैं कि कुंवर बेचैन जी अब मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी बन चुके थे। मैं उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगा। जो भी कविता मैं उनके पास लिखकर के ले जाता, वो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर दिया करते थे। मेरे जैसे दो तीन और भी कविता लिखने वाले उनके पास आया करते थे, जैसे अनिल असीम, नित्यानंद तुषार, गोविंद गुलशन, पवन खत्री, अमिताभ मासूम, इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। गुरुजी ने हम सबको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, तुम सब अलग अलग दिनों में आते हो, मेरे भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ, इसलिए एक दिन कोई ऐसा हो जिसमें सब अपनी अपनी कविताएं लेकर आए। तय हुआ कि गुरुवार की शाम सब आया करेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार का दिन तय हो गया। अब इस दिन कौन कौन गुरुजी से शिक्षा लेने आता था, कौन कौन अपनी कविताएं लेकर के आता था, वो सारी बातें आपके साथ होंगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी कुंवर बेचैन जी के शागिर्दों के बारे में कि बहुत सारे शागिर्द उनसे सीखना चाहते थे। अब कुंवर बेचैन जी के पास इतना समय था नहीं कि अलग अलग दिनों में लोगों को सिखा सकें। तो उनका कहना था कि भाई कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लो कि जो मैं आप सबको एक साथ सिखा सकूं। तो दिन तय हुआ गुरुवार का। बस फिर क्या था, गुरुजी के ड्राइंग रूम में हम गुरुवार को तय समय पर पहुंचने लगे। शर्त थी कि सब अपनी अपनी नई कविताएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा हुआ करेगी। पहले गुरुवार आने वाले कवियों की संख्या 3-4 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 35 से 36 तक पहुंच गई। वो दौर हमारा गोल्डन पीरियड था। उस दौरान हमने कविता की बहुत सारी जो बारीकियां होती हैं वो अपने गुरुजी से सीखी, और किसी के द्वारा कविता में कमी बता देने का हम लोग बुरा भी नहीं माना करते थे। बड़ी स्वस्थ आलोचना हुआ करती थी, क्या गीत, क्या गजल, क्या मुक्तक, क्या छंद, सभी विधाओं की व्याकरणिक जानकारियां हमें होने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुंवर बेचैन के शागिर्दों की बातें, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ये पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्दों के बारे में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम अन्नदाता। और देखिए दोस्तों, अन्नदाता में हमेशा आपसे मैं किसी न किसी फसल के बारे में बात करता हूं, और कोई ना कोई मेहमान भी होते हैं जो आपको नई नई जानकारियां देते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर KL गुर्जर, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लांट पैथोलॉजी, सेंट्रल इंसेक्टसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी यानी कि CIB&RC, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फरीदाबाद। सर, सबसे पहले रेडियो मानव रचना 107.8 FM की तरफ से और सभी सुनने वालों की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
1: धन्यवाद, सुनने वालों को भी नमस्कार
0: जी। और दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में
1: जी।
0: अब रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं वो सारी जानकारियाँ देंगे आज के हमारे मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर। लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं एक गाना, उसके बाद आते हैं आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर के साथ। सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता, और अन्नदाता में आज के मेहमान हैं डॉक्टर KL गुर्जर। बात हो रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे यही सवाल है कि रबी के मौसम की कौन कौन सी सब्जियां होती हैं?
1: जी, रबी की, जैसा आपने पूछा कि रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में, तो रबी में की मौसम में जो रबी की फसल में जो सब्जियां लगाते हैं उनमें प्रमुख है जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और गाजर, मटर, मूली, पालक, मेथी, ये इस तरह की जो सब्जियां सीजनल वेजिटेबल्स जो रबी के मौसम में आती हैं, ये सब सब्जियां। इसके अलावा भी और भी सब्जियां हैं, आलू है और टमाटर है जो कि रबी में भी लगता है, बाकी और मौसम में भी लगाते हैं साल भर। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो साल भर लगती हैं, कुछ होती हैं जो सीजन के अनुसार लगती हैं। तो ये प्रमुख सब्जियां हैं। इसके अलावा भी कई तरह की और सब्जियां हैं जिसे जिन्हें हम जो है रबी के मौसम में भी उगा सकते हैं और साल भर भी उगा सकते हैं, जो पॉलीहाउस के अंदर या आर्टिफिशियल जो कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो है साल भर सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसम के अनुसार देखा जाए तो यही प्रमुख सब्जियां हैं जैसे आपने बताया।
0: जी, तो दोस्तों, रबी के मौसम की कौन कौन सी सब्जियां हैं उनका जिक्र तो हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल तो और भी हैं जो मैं आपसे करूँगा, साथ साथ अपने सुनने वालों को गाने भी सुनाते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आते हैं आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर के साथ। सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए अन्नदाता फहीम के साथ।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में, आपने बताया भी था कि इस मौसम की कौन कौन सी सब्जियां होती हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि ज्यादा उत्पादन हमें मिल पाए या ज्यादा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिल पाए इस मौसम की सब्जियों से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: जी, ज्यादा उत्पादन के लिए हमें सब्जियों के उत्पादन के लिए जो इसकी पूरी प्रक्रिया है उत्पादन की, उसमें जो उन्हें कैसे ज़्यादा उत्पादन लें और सुरक्षित उत्पादन लें, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सब्जियों को हम खेत में लगाते हैं तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें के लिए नर्सरी बनानी पड़ती है उनको, तो पहले नर्सरी का जो बनाते हैं, नर्सरी में पौध तैयार करते हैं, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी, इनकी पौध तैयार करते हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, तो इन सब की क्या पौध तैयार करनी होती है, नर्सरी जिसको बोलते हैं
0: जी।
1: तो नर्सरी तैयार करने के लिए नर्सरी की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको क्योंकि हम बीज लगाते हैं नर्सरी में और उससे फिर पौध बनती है, तो उसको शुरू से ही उसमें रोग नहीं आए, तो इसलिए उसमें उसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें हमको जो बायोपेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हर्जेनम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, तो इस तरह की जो बायोपेस्टिसाइड है वो उसमें गोबर की खाद के साथ मिलाना चाहिए, और गोबर की खाद जो ट्राइकोडर्मा से उपचारित है वो उस नर्सरी की सॉइल में मिक्स करनी चाहिए, उसके बाद उसमें बीज लगाना चाहिए ताकि उसमें जो बीज जनित जो रोग होते हैं शुरुआत की अवस्था में वो रोग उसमें नहीं आए नर्सरी में, और अच्छी पौध तैयार हो, स्वस्थ पौध तैयार हो, उसके बाद फिर उसको लगा करके जब पौध तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो उस समय खेत में लगाना चाहिए। अब खेत में जब लगाते हैं तो उसे हमें यह ध्यान रखना चाहिए, प्लांट टू प्लांट, रोड टू रोड जो दूरी होती है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए जो आवश्यक खाद की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो खाद की संतुलित मात्रा जैसे DAP के रूप में या दूसरे खाद के रूप में, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में, उसे हमें पहले एप्लीकेशन करना चाहिए, बेसल डोज जिसको बोलते हैं, वो खेत में डालनी चाहिए, और साथ में गोबर की खाद भी डालनी चाहिए, और गोबर की खाद जैसे हमने कहा कि गोबर की खाद को ट्राइकोडर्मा उपचारित रहेगी तो वो सबसे अच्छी रहेगी, और वो उसको कार्बनिक जो कार्बन की मात्रा है सॉइल के अंदर उसको भी बनाए रखेगी, और उससे सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, जो सॉइल की जो संरचना है वो भी अच्छी रहेगी, और उसमें जब हम पौध लगाते हैं तो पौध लगाने के बाद वो उसकी बढ़वार अच्छी होगी, तो ये सब चीज़ें हैं, इनके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और रही बात उनमें रोग और कीट की, तो जैसे फसल बढ़ती है तो बहुत सारे कीट और रोग का प्रकोप होता है, हाँ, तो ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें जो उसके लिए आवश्यक जो खाद होती है, उर्वरक की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो संतुलित मात्रा में जो आवश्यक हैं वो हमें उसमें देनी चाहिए, ताकि उसके लिए जो आवश्यक ग्रोथ है, उसकी जो बढ़वार है और उसमें जो उत्पादन है वो हमें मिल सके। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो रोग और कीट और रोग बीमारियां आती, उसके लिए आवश्यक जो भी दवाई है, जो रासायनिक दवाई है या जैविक दवाई है, उनका छिड़काव करके समय पर और उसकी निगरानी रख करके, ताकि उसमें उसका रोग का और कीट का प्रकोप ज़्यादा नहीं हो और हमें उसका अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, ये हम चीज़ें सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए।
0: जी, रोग और कीट प्रबंधन का आपने अभी जिक्र किया है, लेकिन इसके जवाब को मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइएगा। अभी तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि इस मौसम की जो सब्जियां हैं, रबी के मौसम की जो सब्जियां हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल किया जा सकता है। रोग और कीट प्रबंधन की बात करेंगे, फिलहाल सुनेंगे एक गीत, तो उसके बाद आएंगे आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर के साथ। सुनते रहिए अन्नदाता फहीम के साथ।
2: मिलो न

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। दोस्तों, आज है मेरे साथ आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर। बात हो रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था रबी के मौसम की कौन कौन सी सब्जियां होती हैं और ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। लेकिन आप जानते ही हैं कि सब्जी कोई भी हो, फसल कोई भी हो, उसमें रोग जरूर लग जाता है, और अगर रोग का सही से उपचार ना किया जाए, हमारी फसल, हमारा पैसा, हमारी मेहनत सब बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे कीट भी लग जाते हैं फसलों में, तो ये जो रोग हैं इनका उपचार कैसे करें और जो कीट हैं उनकी रोकथाम कैसे करें, इसका प्रबंधन क्या है?
1: जी, सब्जियों के अंदर जो कीट एवं रोग लगते हैं उनके बेहतर प्रबंधन के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी रोग हैं और कौन कौन से कीट हैं। तो जैसे बात करते हैं कि रोग के बारे में, तो शुरुआती अवस्था से जो डैम्पिंग ऑफ जो एक रोग है, जो कि उसकी शुरुआती अवस्था में जब आप पौध लगाते हैं उसी अवस्था से आने लग जाता है, आद्र गलन जिसको बोलते हैं, आद्र गलन रोग है। उसके बाद जब फसल थोड़ी और बड़ी होती है तो उसमें जो है जड़ गलन की का रोग एक होता है, आद्र गलन होता है, जड़ गलन होता है। उसके बाद में विल्ट एक रोग होता है, तो आद्र गलन हो गया, जड़ गलन हो गया और विल्ट हो गया। तो ये जो रोग हैं ये आपके

0: सोइल है, जो मिट्टी है
1: जी,
0: उससे पैदा होते हैं। मतलब इनके जो रोगाणु हैं वो मिट्टी में रहते हैं।
1: ओके,
0: तो मिट्टी में रहते हैं इसलिए ये बीज जनित और मृदा जनित जो बीमारियां होती हैं उन इन इन बीमारियों को हम मृदा जनित और बीज जनित बीमारियां कहते हैं, क्योंकि इन बीमारियों का जो सोर्स होता है मिट्टी मिट्टी ही होती है, क्योंकि मिट्टी में रोगाणु होते हैं और वो साल दर साल इसमें बने रहते हैं। जैसे किसी खेत में आप सब्जी लगाते हैं हर साल और उसमें आप देखते हैं कि एकदम से सब्जी की फसल गल जाती है, नष्ट हो जाती है, और सो कहते हैं कि हमने दवाई भी डाली लेकिन वो सब्जी उसमें पनपी नहीं और वो हमारे पैदावार नहीं दी। उसका कारण यही है कि जैसे एक रोगाणु है, जैसे कि मलानी जो विल्ट है उसका रोगाणु होता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फंगस। तो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम जो फंगस है वो सॉइल के अंदर है और आप हर साल सब्जी लगाते हैं तो उसमें जड़ गलन की, और दूसरा होता है राइजोक्टोनिया। राइजोक्टोनिया ये दोनों फंगस हैं,
1: अच्छा,
0: फफूंद जनित बीमारियां हैं जो कि, और ये जो डैम्पिंग ऑफ है ये पीथियम से होती है, तो ये भी फंगस से होती है। तो ये जो फंगस वाली जो बीमारियां हैं, फफूंद जनित बीमारियां हैं, अगर इनको हम साल दर साल सब्जी लगाते रहेंगे और इसको बीज उपचार या मिट्टी उपचार नहीं किया तो वो फिर बीमारी आएगी उसमें।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब हम इसको लगाते हैं तो इनके प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा जो सुरक्षित उपाय है वो है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये जो हैं ये भी फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, बट ये लाभदायक हैं और ये जो रोगाणु जनित जो फंगस हैं उसको नियंत्रित करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो अगर इनका प्रयोग सोइल में हम मिट्टी में डाल देंगे बुआई के समय तो फिर ये बीमारियां उनको कंट्रोल कर लेंगे नेचुरली और उनको हमें किसी दवाई की रासायनिक दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब्जी, क्योंकि हमें सब्जी उत्पादन के लिए स्वच्छ उत्पादन करना है कि उसमें कम रासायनिक कीटनाशक और फफूंद नाशक और जहरीले जो रासायनिक है उनका कम प्रयोग करें, तो सबसे बेस्ट इन बीमारियों के प्रबंधन के लिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमें आप बीज उपचारित कर सकते हैं सोइल के अंदर प्रति हेक्टर आप 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आप ये जो बायोपेस्टिसाइड है जैसे हमने बताया ट्राइकोडर वगैरह वो मिक्स करके और FYM के साथ गोबर खाद के साथ और उसमें डाल करके मिट्टी में और फिर उसकी पौध लगाएंगे तो आपको इन बीमारियों से मतलब आप निश्चिंत रहेंगे कि बीमारियाँ नहीं लगेंगी इन सब्जियों में। अब आती है बात कीटों की, तो जैसे सब्जी बड़ी होती है तो इनके पत्ते होते हैं उनके रस चूसने वाले कीट होते हैं, सूक्ष्म कीट जिसको बोलते हैं, उसको जैसिड बोलते हैं, एफिड बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, तो ये इनका प्रकोप होता है। तो इनके प्रकोप के लिए हमें क्या करना है कि उनको मारना नहीं है, उनको प्रबंधन करना है। तो प्रबंधन करने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसा रासायनिक या ऐसी दवा छिड़कनी चाहिए ताकि वो उनसे जो कीट है रस चूसने वाले उन वो कम लगें या उससे दूर भागें। तो उसके लिए हमें नीम जो इंसेक्टिसाइड है और नीम का जो तेल से बना हुआ इंसेक्टिसाइड है या नीम जिसको एजेडिरेक्टिन भी बोलते हैं फॉर्मुलेशन आता है उसका स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए ताकि जो रस चूसने वाले कीट हैं वो उस पर एंटीफिडेंट का काम करते हैं। मतलब उसको जब पंक्चर करते हैं पत्ती के ऊपर तो वो इसके अंदर जो एजेडिरेक्टिन होता है नीम के अंदर तो वो उनको एंटी खाने नहीं देता है और उसको दूर भगाता है।
1: ये जो नीम आपने बताया है ये आसानी से मिल जाता है?
0: हाँ, इसका जो जो इसकी जो एजेडिरेक्टिन जो मैं बोल रहा हूँ एजेडिरेक्टिन का एक बोतल मिलती है और वो उसका रेडीमेड नीम का जो है दवा है बनी हुई मिलती है, उसको हम स्प्रे कर सकते हैं। जो डोज है उसकी जो मात्रा है वो 1 लीटर के में हिसाब से 5 ml से लेकर 10 ml तक आप ले करके घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये रस चूसने वाले जो हैं उनका प्रबंधन होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं तो फिर हमें दूसरी दवाएं जैसे कि और दवाएं हैं जो कि अप्रूव्ड दवाइयां हैं रासायनिक जिसको कीटनाशक बोलते हैं जो कि हमारे CIBRC से अप्रूव्ड होती हैं और जो दवा विक्रेता के यहाँ मिलती हैं उसको भी हम जैसे ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तब वो दवा हमें डालनी चाहिए। लेकिन उस दवा में को डालने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो निर्धारित मात्रा है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि हम जब सब्जियाँ तोड़ते हैं तो उसका प्री हार्वेस्ट इंटरवल जिसको बोलते हैं, दवा छिड़कने के 6 दिन बाद 3 दिन बाद ही उसको तोड़ के बाजार में ले जाएं या प्रयोग करें, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो जहर है, जहरीला मात्रा होती है। तो उसको हम तुरंत छिड़क करके तुरंत अगर खाएंगे तो उसमें थोड़ा उसकी मात्रा रह सकती है। तो इसलिए हमें सब्जियों के अंदर जो दवा छिड़कते हैं तो उसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मंडी में तभी ले जाएं तब वो 2 या 3 दिन या 5 दिन जो भी उसका इंटरवल है लास्ट स्प्रे के बाद में, उस समय उसको तोड़ें, हार्वेस्ट करें और फिर उसको लेकर जाएं।
1: जी जी। तो दोस्तों आपने सुना, हमारी जो सब्जियां होती हैं या हमारी जो भी खेती होती है उसमें जो रोग लग जाते हैं, जो कीट लग जाते हैं, उनका प्रबंधन आपको कैसे करना है आपको हर तरीके से समझाया है। जो तकनीकी तरीका है समझाने का डॉक्टर साहब का वो बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से आपने समझा भी होगा। तो इसलिए कोई भी बीमारी हो आपकी खेती में, आपकी चाहे फसल छोटी ही क्यों ना हो, उसका आप ध्यान रखेंगे रोगों का या कीटों का, तो आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सकती है। बात चल रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में, तो और भी कुछ बातें हैं, कुछ और भी सवाल हैं आज के मेहमान डॉक्टर केएल गुर्जर से करते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता, और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर के एल गुर्जर। बात हो रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। डॉक्टर साहब देखिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, यहाँ तक कि जो रोग हमारी सब्जियों में लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, उसका प्रबंधन क्या होना चाहिए आपने ये तो बता दिया है। अब हर किसान ये चाहता है कि जो खेती वो करे, जो सब्जियां वो उगाए, उसके अच्छे उसको दाम मिल जाए, तो उचित दाम कैसे हासिल किए जा सकते हैं?
1: आपने उचित दाम के बारे में पूछा, तो उचित दाम के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें उचित दाम मिले? तो उसके लिए हम जो सब्जियां लगाते हैं उसका जो मंडी में जो सब्जियां आती हैं उसका जो सीजन होता है, मौसम होता है, उसको हम ये ध्यान रखें कि जैसे रबी सीजन की सब्जियां सब्जी में इसमें मंडी में जब आती हैं तो उस समय अगर उसको लगाने का जो समय है वो उस समय से पहले अगर थोड़ा लगा दें तो उसका दाम हमें अच्छा मिलता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि एक निश्चित समय में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है पर्टिकुलर महीने में, पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, और ये रेट होते हैं डिमांड और सप्लाई के आधार पर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी फसल हम लगाएं तो वो मंडी में पहले अगर इस मौसम में के शुरुआत में ही अगर वो पहुँच जाती हैं तो उसका दाम हमें ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए हमें ऐसा टाइम डिसाइड करना चाहिए कि हम जो पौध तैयार करते हैं जब खेत में लगाते हैं और जब मंडी में जाती है तो उस समय तक उसकी उपलब्धता है वो हमें मिल प्राप्त हो जाए और हम उसको पहले मंडी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो पहले लेके जाते हैं तो उनके दाम ज़्यादा मिलते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी सप्लाई हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तो उसके दाम घट जाते हैं। जैसे कि टमाटर के केस में हम देखते हैं, उसमें हमें ये देखते हैं कि जब टमाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किसान जो है मंडी में भी नहीं ले जाता और खेत में ही छोड़ देता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं निकल रही है, इतना रेट घट जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि कोल्ड स्टोरेज जो हैं जगह जगह पर सरकार की योजनाएं भी हैं कि वो जो ज़्यादा सब्जी उत्पादन हो जाती है तो उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, और कोल्ड स्टोरेज के अलावा जो है प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे टमाटर की जो सब्जी है उसका प्रोसेसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, जैसे टमाटर की चटनी है, टमाटर जैम है, टमाटर के वो अन्य उत्पादन हैं जो उत्पाद हैं उसे हम प्रोसेस करके और फिर उसको मतलब उसमें सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जो इसका प्रोसेसिंग फूड जो इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री है उससे भी हमको अनुदान भी मिलता है, और इसको स्मॉल स्केल पर भी अगर आप अपने गांव में या अपने एरिया में लगाना चाहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो वो भी आप उसको लगा सकते हैं, ताकि जिस एरिया में आपका जैसे पर्टिकुलर सब्जी जैसे कि टमाटर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो उस टमाटर बेस्ड जो एग्रो बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसको आप लगा सकते हैं, तो वो सारा आपका

0: एक्सेस जो प्रोडक्शन होता है, अधिक उत्पादन होता है जो कि मंडी में सप्लाई में उस समय आपको रेट नहीं मिलता है, तो उस समय उसे आप जो है प्रोसेसिंग करके और प्रोसेस प्रोडक्ट बना करके बेच सकते हैं और उससे आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोल्ड स्टोरेज, आलू बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आलू का रेट भी उस समय कम रहता है मंडी में, तो उसे आप जो है कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं और फिर बाद में उसको सेल करके बाद में और उसका रेट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो भी ज़्यादा उत्पादन होता है एक पर्टिकुलर सीजन में, तो उसे हम तुरंत मंडी में अगर उसका रेट नहीं मिल रहा है तो हमें इन इनका उपयोग करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज का और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। तो इस तरह से आप दाम ले सकते हैं।
1: जी, तो देखिए किसान भाइयों, जो मैंने प्रश्न पूछा था आज के मेहमान से वो बहुत ज़रूरी था और अहम था। आप भी ये सोचते होंगे कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका उचित दाम हमको मिल जाए, और वो दाम आपको कैसे मिल सकता है, वो सारी बातें आपको बताई हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर KL गुर्जर जी, जो बात कर रहे हैं रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। रबी के मौसम की सब्जियां कौन सी होती हैं, उसका उत्पादन ज़्यादा कैसे लिया जा सकता है, बीमारियों को कैसे भगाया जा सकता है, कीटों की रोकथाम कैसे की जाती है, उचित दाम कैसे हासिल किए जा सकते हैं, ये सारी बातें आपने बताई हैं। लेकिन अब वक्त जाने का है, तो जाते जाते डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से हमारे सभी किसान भाइयों को क्या पैगाम है, क्या संदेश है?
0: जी, मेरा किसान भाइयों को यही संदेश है कि आप जो सब्जी उत्पादन करते हैं वो आप उसका ज़्यादा अधिक उत्पादन लें और उसमें आपको मुनाफा अधिक हो, और जो आप सब्जी उत्पादन करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसे संतुलित इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस है वो अपना करके उसको पैदावार करें, और अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है सब्जियों के अंदर उसे केवल उन पर निर्भर नहीं रहें, और अंधाधुंध जो जुडिशियस यूज़ करें उसका पेस्टिसाइड का, अगर ज़रूरत होती है तो उस समय लास्ट रिसोर्स के रूप में पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। उससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने जो पहले तरीके बताए आपको, ट्राइकोडर्मा और बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र इनका उपयोग करें, और कार्बनिक खाद, गोबरी खाद, कंपोस्ट वगैरह इनका भी प्रयोग खेती में करें, और इंटीग्रेटेड एक बैलेंस जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एक जो पद्धति है उसका प्रयोग करके सब्जी का उत्पादन करें। और अगर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं सब्जी में और इंसेक्टिसाइड का या फंजीसाइड का, तो उस समय ये ध्यान रखें कि हर एक दवा के ऊपर एक लेबल और लीफलेट आता है, उसमें लिखा रहता है कि इसकी कितनी मात्रा प्रति लीटर में घोल बना करके स्प्रे करें, तो वो स्प्रे करने के बाद में उसमें PHI भी लिखा है, प्री हार्वेस्ट इंटरवेल जिसको बोलते हैं, कि कितने अवधि के बाद उसका तो को उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जो है, क्योंकि पेस्टिसाइड जहर होते हैं और सब्जियों में हम उसका सीधा मतलब कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर्स को उससे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रभाव नहीं हो जहर का, और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका प्रयोग जो है करें, तो उस समय लास्ट छिड़काव के बाद ही उसको तोड़ें, थोड़ा इंटरवेल के बाद में, और फिर मंडी में लाएं, तुरंत उसका छिड़काव करके तुरंत उसको उपभोग के लिए मंडी में नहीं लाएँ, और उनकी मात्रा का बैलेंस जो यूज जो डोज दिया गया अप्रूव्ड पेस्टिसाइड स्प्रे करें। कोई अगर डीलर या कोई आपको कहता है कि ये दवा छिड़कें ये दवा अच्छा काम करेगी, वो नहीं, आप खुद जाने कि इसमें क्या समस्या है, कौन सा रोग है, कौन सा कीट है, उसको हम पहचाने कैसे। उसके लिए हमारा एक मोबाइल का ऐप भी है जिसको NPSS के नाम से, उसको किसान भाई खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, स्मार्टफोन पे, और उसमें आपकी जो फसल के अंदर जो समस्या है उसकी फ़ोटो लेकर के आप उस पर सेंड करेंगे ऐप पे, तो आपको कौन सी दवा कितनी मात्रा में डालनी चाहिए वो भी जानकारी मिल जाएगी, और कितनी मात्रा, वो सब चीज़ों का आजकल जो पद्धति है खेती है वो बहुत ही डिजिटल और आधुनिक खेती हो गई है, तो इनका प्रयोग करके और आप उत्पादन लें सब्जियों का, और फिर ही उसमें जो निर्धारित मात्रा है दवा की वही डालें, और ये इसको आप जो सुरक्षित खेती करें सब्जियों की, यही मेरा संदेश है।
1: तो किसान भाइयों, ये संदेश था हमारे आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर की तरफ से आप सबके लिए। उन बातों को आप अमल में लाएंगे तो आपकी कोई भी सब्जी हो, कोई भी फसल हो, वो फसल आपकी अच्छी होगी और आपको उसका दाम अच्छा ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप आए, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ, अगली बार किसी नए मेहमान के साथ, किसी नई बात के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई का ध्यान रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा, और जाते जाते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: Well, hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर, आज हम लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ जो बहुत स्पेशल है, उसकी बहुत सारी वजह भी है कि यहाँ पर ये शो बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। आई मीन हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं। यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता है, फोटोग्राफर है, एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे, दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू नो, और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन। सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो, और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेतिया का। यतिन, स्वागत है हमारे शो में।
1: इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैन भी, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ, और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है, मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ। और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर सिनेरियोज बनाता था, मैं उनके शूट करता था, और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ। तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है, और अभी आगे बहुत चलेगी। तो ये है यतिन यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है, एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं, 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर, एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो इन्होंने अर्न किया यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी, क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार, मेरे को ये करना चाहिए?
1: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था, तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था। मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की, तो वहां से मुझे था कीड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा, मैं तब मजे में कर रहा था। बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं ये करता गया। फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी, वो बाहर आने लगी। तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना। मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा। फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइज, और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में, इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर है, तो इन्होंने अपनी वॉइस पर बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा। इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया, और अब अच्छा कर रहा हूँ ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है, तो वहां से मैंने
0: फिर
1: शुरू किया।
0: बहुत सुंदर, नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है, सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है। हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करी, इनके डोमेन के बारे में जाना है। आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे आगे, कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: होप यू आर लविंग द वाइब्स ऑफ दिस शो, यू आर लविंग द वाइब ऑफ दिस म्यूजिकल ब्रेक. एंड अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए, यतन के लिए, कोई भी चीज है जो आपके जहन में है और हम तक पहुंचानी है, डू मेक श्योर 8010781078 इस नंबर तक आप पहुंचा चुके हो. फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे. यतन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में. व्हेन यू थिंक अबाउट अ कॉन्टेंट, अ पीस ऑफ कॉन्टेंट, तो उसको कैसे आप सोचते हो एंड व्हाट इज द प्रोसेस, क्या जाता है उसके पीछे?
1: प्रोसेस यही है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है, जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं, मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है, या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट कुछ शॉट लेना हो तो वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं. कभी कभी जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ. और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इस पे कोई दिक्कत नहीं है. बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो. सबसे पहले, सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना. अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे. सबसे पहले जीवाइए, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है. तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना. आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियो कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो. आप अपने आपको देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ. और ये है, सबसे पहले आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा. सबसे मेन चीज है शुरू करना. और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जीड? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए. जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं, जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड. तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कॉन्टेंट क्रिएशन में. वो जितनी अच्छी होगी, लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे. तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है. धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें? तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ,

0: 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
1: बहुत सुंदर,
0: कुछ बहुत भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
1: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे यतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। बहुत ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। नोट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे जहन में जो हम पूछेंगे। बढ़िया, हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: Once again, I'm hoping ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवेम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है वाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो इट ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है, लेकिन हाँ एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है, शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को डालेंगे, स्नैपचैट पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है, मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है इन प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उमदा बहुत उमदा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा, बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे 1 पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, आप ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आप को सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ, तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा, आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: All right, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, किसी चीज का शुरुआत शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है करना है करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यदिन से बात करी है, इतने कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यतिन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100K से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यतिन से, यतिन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया है कि कॉन्टेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो होता ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यतिन मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों अब इसी के साथ वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसी नोट पर चलते हैं अपने शो को यहाँ पर साइन ऑफ करते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही हमारे साथ, मैं हूँ आरजे सागर। शो है ये वॉइस ऑफ यूथ, यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद और शोज हैं, जरूर सुनिएगा रेडियो 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

Radio Mana Vishnu 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

ख्याल करना कि सुख से भी बड़ी संभावना दुख में है, क्योंकि आदमी सुख में तो सो जाता है, दुख में जागता है। घर बन जाए तो स्वभाव का हम कहते हैं हमारे गुरु की कृपा, घर जल जाए।

0: तब भी तुम हिम्मत रखना कहने की हमारे गुरु की कृपा। जो घर बारे आपनों चले हमारे संग, कबीर ने कहा है, जो सब जला जलू के तैयार हो जाए वो हमारे साथ चल सकता है। तो ठीक ही हुआ माणिक बाबू, आग भी लग गई, अग्निकांड में जल भी गया, संजय गांधी भी डूबे, 5 लाख भी ले गए, स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा है, हृदय भी दुर्बल हुआ है, ये सब भी ठीक है। इस सब को भी वरदान में बदला जा सकता है। सिर्फ जाग के इसे देखना, इससे तादात्म्य मत बनाना। जो घर जल गया वो अपना था ही नहीं, और जो हृदय दुर्बल हो गया है वो भी तुम्हारा असली हृदय नहीं है, और जो शरीर बूढ़ा होने लगा है वो भी तुम नहीं हो, और जो रुपए तुम्हारे डूब गए उसमें तुम्हारा क्या था, किसका क्या है। हम ऐसे ही आते बिना कुछ लिए और बिना कुछ लिए जाते। इसमें अगर हम साक्षी हो पाए, जाग के देख पाए, तो परम प्रसाद उपलब्ध होता है। और ध्यान रखना, दुख में जागने की संभावना ज्यादा है, सुख में तो आदमी सो जाता है, सुख में जागना ही कौन चाहता है। जब तुम कोई सुखद सपना देख रहे हो फिर कोई जगाने लगे तो तुम कहते हो ठहरो भी, अभी पूरा सपना तो हो जाने दो। लेकिन दुखद सपने में कोई जगाए तो तुम धन्यवाद देते हो। फिर ख्याल करना, कहते हैं ना हम कि दुख में भगवान की याद आती, दुख में हमें दिखाई पड़ना शुरू होता है जगत का सत्य, सुख में तो आंखों पर पर्दे पड़ जाते और झूठ सच मालूम होने लगता है। दुख में असलियत दिखाई पड़ती। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कि दुख है, पहला आर्य सत्य अनुभव में आना शुरू होता है। बुद्ध के वचन सार्थक होने शुरू होते हैं कि दुख है, जरूर दुख है। अब इस दुख के साथ अपना तादात्म्य मत करना, ही ऐसा मत सोचना कि मैं दुख हूं तो सौभाग्य की घटना घट जाएगी। दूर खड़े रहना, देखते रहना, जो हो रहा है वो दृश्य है, मैं देखने वाला हूं। अगर हम दृष्टा होकर खड़े हो जाएं तो फिर कोई विचलित कर नहीं पाती बात, फिर हम असंग मन, निर्लिप्त मन, अकंप मन अपने भीतर इतने दूर बने रहते हैं इस जगत में होकर जितने दूर हुआ जा सकता है। जगत में होना और जगत में न होना एक साथ घट जाते, और जब दोनों बातें एक साथ घटती हैं तभी कुछ घटा, तभी जानना कुछ घटा, तभी जानना कि मेरा संन्यास फलित हुआ। तुम्हारे बाबू ठीक ही हुआ है, इस सबको सौभाग्य मानना, इस सबके बीच शांत भाव से देखते रहना, ये भी चला जाए। एक सूफी कहानी, एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसने अपने वजीरों को कहा कि मुझे कुछ ऐसा सूत्र चाहिए जो हर हालत में काम आ जाए। वजीरों ने बहुत सोचा कि ऐसा सूत्र जो हर हालत में काम आ जाए, उनकी कुछ समझ में ना पड़ा। वो एक फकीर के पास गए, उस फकीर ने एक सूत्र लिखा एक कागज पर, एक अंगूठी में बंद किया और सम्राट को लाके अंगूठी दे दी और कहा इसे खोलना तभी जब और कोई सहारा न रह जाए, जब सब तुम जो कर सकते हो कर चुके हो और कुछ सहारा न रहे तभी खोलना, जल्दी मत खोजना। ये सूत्र ऐसा है कि कठिनाई की आखिरी घड़ी में ही इसका अर्थ प्रकट होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली, कई बार उत्सुकता भी जगी लेकिन वचन दे दिया था तो खोला नहीं। फिर देश पर हमला हुआ, कोई 10 साल बाद सम्राट हार गया, भागा अपने घोड़े पर, जंगल में दुश्मन पीछा कर रहे हैं, दुश्मन करीब आते जाते हैं, उसकी घबराहट बढ़ती जाती, तभी उसे अचानक अपने हाथ में अंगूठी की याद आई और तभी वो घड़ी भी आ गई। लेकिन सोचा कि अभी भी ऐसी घड़ी कहां आई है, अभी भी बच सकता हूं, अभी भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन वो घड़ी भी आ गई, आगे जाके रास्ता समाप्त हो गया, नीचे खाई थी, पीछे लौट नहीं सकता था, दुश्मन करीब आता जा रहा है, घोड़ों की टाप और भी करीब आने लगी, और भी करीब आने लगी। उसने आखिरी क्षण तक धीरज रखा, जब उसे लगा कि बस अब क्षण भर की देर है कि दुश्मन आ जाएंगे, उसने अंगूठी खोली, कागज निकाला, कागज में कुछ भी न था, एक छोटी सा वाक्य लिखा था, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। एक क्षण में जैसे एक बिजली कौन गई, एक क्षण में उसे दिखाई पड़ा अपना सब जीवन, सब बीत गया, तो स्वभाव था, यह भी बीत जाएगा, रुकता क्या है।
1: बचपन नहीं रुका, जवानी नहीं रुकी, पिता नहीं रुके, पत्नी नहीं रुकी, बेटे नहीं रुके, कुछ नहीं रुका, आया और गया। गंगा कितनी बह गई,
0: जीवन के इस चित्र को देखते वो तो भूल ही गया क्षण भर को कि दुश्मन पास,
1: और जब वो जागा इस जीवन की कथा से तो अचानक उसने पाया घोड़ों की टाप सुनाई नहीं पड़ती, वे किसी और दिशा में मुड़ गए थे। 7 दिन बाद वो पुनः जीत गया, वापस अपने महल में आ गया। जब महल में आया तो बड़ा उसका स्वागत हुआ, असरफियां लुटाई गईं, फूल फेंके गए, सारे गांव में दीप मालिका जलाई गई, सारा गांव पागल होकर नाचा, उत्सव मनाया। जब ये सारे उत्सव में अपने हाथी पर सवार उसकी शोभा यात्रा निकल रही थी, तब एक क्षण को फिर उसने अंगूठी खोली, ये सुख, उसने फिर वो कागज पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। उसने अंगूठी वापस कर ली, जैसा वो अलिप्त हो गया था दुख की घड़ी में, वैसा ही अलिप्त हो गया सुख की घड़ी में भी। कहते हैं वह सम्राट बिना कुछ किए समाधि को उपलब्ध हो गया। तो मानिक बाबू, इन घड़ियों का उपयोग करना, जो हो होता है बीत जाता है। एक ही चीज है हमारे भीतर जो कभी नहीं बीतती, वो हमारा साक्षी भाव है, वही है शाश्वत, सनातन, सदैव। उस एक को पकड़ के ही आदमी परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाता है। आखिरी प्रश्न, आपको सुनकर आंसू ही आंसू बहते हैं, रोके नहीं रुकते, मैं क्या करूं, इससे शुभ और क्या होगा? आंसू बहते हैं अर्थात आंसू कुछ कहते हैं। आंसू दुख के ही थोड़ी होते हैं, आंसू आनंद के भी होते हैं, और आंसू सदा उदासी का ही थोड़ी प्रमाण लाते हैं, आंसू उत्सव की भी खबर लाते हैं। आंसू का तो एक ही अर्थ होता है, कुछ जो हम शब्दों से नहीं कह पाते वो आंसू से कहना पड़ता है। आंसू तो बड़ी गहरी अभिव्यक्ति है। आंसू का अर्थ पूछते हो, आंसू के अर्थ यदि भाषा में समा पाते तो फिर मैं रोता क्यों, कविता और कहानी ना लिखता। जब भाषा असमर्थ हो जाती आंख से आंसू बहते, जो बात हम किसी भी विधा में नहीं कह पाते उसे रो रो कर कहते। आंसू कुछ कहते, कुछ ऐसा कहते हैं जो और किसी विधा में कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा कहते हैं जो शब्दों में अटता नहीं, बनता नहीं, शब्दों की सीमा है, आंसू असीम है। तो आंसू के संबंध में एक बात समझना, जब भी तुम्हारे मन में कोई भाव इतना घना हो जाएगा, चाहे दुख चाहे सुख, चाहे शांति चाहे अशांति, चाहे उदासी चाहे उत्सव, कोई भी भाव जब इतना घना हो जाएगा कि तुम उसे संभाले ना संभाल सकोगे, तो वही भाव आंसुओं में बहता है। आंसू निर्भर करते हैं, और इनको कुछ रोकना मत। कभी कभी मेरी बात सुन के आनंद के आंसू बहेंगे, कभी कभी मेरी बात सुन के तुम्हें अपने सारे जीवन का दुख याद आ जाएगा, सारे जीवन की व्यर्थता याद आ जाएगी, सारे जीवन का घाव जैसे मैंने छू दिया हो पीला बहने लगेगी, तब भी आंसू बहेंगे। दोनों हालत में शुभ है। आंसू तो इतना ही कह रहे हैं कि तुमसे मेरे हृदय का नाता हो गया, अब नाता बुद्धि का ना रहा, और बुद्धि का जब तक नाता है तुम विद्यार्थी, जिस दिन हृदय का हो गया उस दिन शिष्य, जब तक बुद्धि का नाता है तब तक मैं तुम्हारा शिक्षक, जिस दिन हृदय का हो गया उस दिन गुरु। जिस दिन तुमने आंसुओं से सेतु बना लिया, जिस दिन तुमने आंसुओं में पातियां लिखकर मेरी तरफ भेज दी, दर्द स्वयं ही मचल गया है, गीतों का अपराध नहीं, जो कुछ भी मुझको मिल पाया उतने से संतोष मुझे था, घिरा अभावों की सीमा में फिर भी तो परितोष मुझे था, परब अकुलाया सा धीरज असहयोग करने को आतुर, अश्रु स्वयं ही ढलक गए, पलकों का अपराध नहीं, गीतों का अपराध नहीं, बादामी नैनों से प्रतिबल दिया तुम्हीं ने नेह निमंत्रण, समझ बूझ आंचल उलझाया फिर क्यों मुझ पर दोषारोपण, रत नारे सपनों ने पढ़ ली मिलनातुर मंत्रों की भाषा, सोम स्वयं ही छलक गया है, अधरों का अपराध नहीं, गीतों का अपराध नहीं, प्यार भरे दो शब्द कहे थे पर तुमने रच दिए कथानक, ज्ञात नहीं था बदनामी के व्यग उड़ेंगे कभी अचानक, आकर्षण की विष कन्या से अनजाने ही ब्याह रचाया, सुरभि स्वयं ही बिखर गई है, भ्रमरों का अपराध नहीं है, गीतों का अपराध नहीं है, अश्रु स्वयं ही धुलक गए हैं, पलकों का अपराध नहीं है, गीतों का अपराध नहीं है, दर्द स्वयं ही मचल गया है, गीतों का अपराध नहीं, जो स्वयं हो शुभ, जो सहज हो शुभ, आंसू बहे तो रोकना मत, ना बहे तो बहाने की चेष्टा मत करने लगना, जो सहज हो शुभ, जो असहज हो अशुभ, आंसू बहे तो बह जाने देना, संकोच मत करना, यहां कोई लोकलाज थोड़ी करनी, कहा ना मीरा ने सब लोकलाज खोई, यहां भी रोके रखोगे आंसुओं को तो फिर कहां रोओगे, और अगर आंसू रोक लिए तो फिर मुस्कुराहट भी रुक जाएगी, क्योंकि उसी द्वार से मुस्कुराहट भी आती है जहां से आंसू आते, वहीं से गीत भी पैदा होते हैं जहां से आंसू पैदा होते हैं, वहीं से उत्सव भी झरता है जहां से उदासी पैदा होती है। तुम हल्के बनो, तुम सहज बनो, जो आए उसे आने दो, जैसा आए वैसा ही आने दो, तुम जरा भी हेरफेर ना करना, दोनों तरह की संभावनाएं, कुछ लोग जो नहीं रो सकते वो भी चेष्टा कर सकते रोने की, वो गलत हो जाएगी, अभी अपने से नहीं आए हैं तो प्रतीक्षा करो, और कुछ लोग जो रो सकते हैं उनको भी भय लगता है कि रोना कि नहीं, कोई क्या कहेगा, पास पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, गांव में खबर होगी तो लोग समझेंगे पागल, बुद्धि खराब हो गई, तो तुम भी प्रभावित हो गए, सम्मोहित हो गए, लोग कुछ कुछ कहेंगे, तो आदमी रोकता है, नहीं रोकना मत, क्योंकि यहां अगर हम कुछ भी काम करने इकट्ठे हुए हैं तो वो काम सहजता में ही हो सकता है, यहां तो मैं एक गीत गा रहा हूं, यहां तो मैं तुम्हारे हृदय के तारों को छेड़ने की कोशिश कर रहा हूं, यहां कुछ सिद्धांत थोड़ी दिए जा रहे हैं, यहां तो एक साधना की जा रही है, मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, प्रणय प्रणय की मधु सीमा में जी का विश्व बसा दो मालिक, रागे हैं लाचारे मेरी, ताने बांध तुम्हारी मेरी, इन रंगीन मृतक खंडों पर अमृत रस ढुलका दो मालिक, मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, संस्कृति का बोझ न छू, छू मत इतिहास लोक, छू मत माया न ब्रह्म, छू मत तू हर शोक, सिर पर मत रख अतीत, एक गीत मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, प्रणय प्रणय की मधु सीमा में जी का विश्व बसा दो मालिक, गीत हो कि जी का हो, जी से मत फीका हो, आंसू के अक्षर हो, स्वर अपने ही का हो, प्रलय हार प्रलय गीत, एक गीत एक गीत, मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, प्रणय प्रलय की मधु सीमा में जी का विश्व बसा दो मालिक, यहां तो प्रभु का गीत तुम सुन सको इसका प्रयास चल रहा है, मैं तुम्हारे हृदय के तार छेड़ सकूं इसके लिए तुम्हें राजी कर रहा हूं, ये सारी बातें कि गीता की कि धम्मपद की कि जिन सूत्रों की बहाने, इन बहानों से तुम्हारे हृदय के तार किसी तरह छिड़ जाएं, उनमें झंकार उठे, तुम सहज होगे तो ही झंकार उठ सकेगी, मैं चाहता हूं तुम रोमांचित हो जाओ, तुम्हारा रोआ रोआ कपने लगे प्रभु के लिए पुकार से, सत्य की आकांक्षा से, अभीप्सा से, उस यात्रा में सहजता पाथे, पुण्य पाथे, वही कलेवा है उस यात्रा में मार्ग का, तो जिनकी आंखें सक्षम है रोने को रोकना मत, उन्हीं आंखों से अभी आंसू बहते, उन्हीं आंखों से रोशनी भी बहेगी, आंसू साफ कर देंगे रास्ते को ताकि रोशनी बह सके, और ये जो घटना घटती है ये बुद्धि की नहीं हृदय की है, ये जी की है, ही की है, इसे तो वही पा सकते हैं जो पागल होने को तैयार है, ये मतवालों की दुनिया है, यहां तुम्हें मैं थोड़ी शराब पिला सकूं तो काम पूरा हो गए, यहां से तुम थोड़े डगमगाते लौटो,

0: तो लोक लाज की फिक्र छोड़ो। पूछा है आपको सुनकर आंसू ही आंसू बहते, रोके नहीं रुकते, मैं क्या करूं? रो, करने को क्या है? कर करके तो तुमने सब खराब किया है, करने से ही तो कर्म पैदा हुआ है। करो मत, अब होने में बहो।
1: भगवान जेठवन में विहरते थे। पास के किसी गांव से आए एक युवक ने सन्यास की दीक्षा ली। वह सबकी निंदा करता था, कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, कारण न हो तब भी निंदा करता था, कारण न हो तो कारण खोज लेता था, कारण न मिले तो कारण निर्मित कर लेता था। कोई दान न दे तो निंदा करता है, और कोई दान दे तो कहता अरे यह भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो। वह अपने परिवार की प्रशंसा में लगा रहता है, शेष सारे संसार की निंदा और अपने परिवार की प्रशंसा, यही उसका पूरा काम था। अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने कुल, सभी की अतिशय प्रशंसा में लगा रहता। उसके अहंकार का कोई अंत न था, शायद इसलिए वह संन्यस्त भी हुआ था। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि जैसे वह व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता था, वैसे ही व्यर्थ ही अपने कुल परिवार की प्रशंसा भी करता था। उसके परिवार की तो कोई स्थिति ही न थी, वह तो अत्यंत हीन वृत्तियों वाले परिवार से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान को कही। भगवान ने कहा हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ है उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है, वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है। फिर यह भिक्षु न केवल इसी समय ऐसा करता घूमता है, पहले भी ऐसा ही करता था और जन्मों में भी ऐसा ही करता था। जन्म जन्म इसने ऐसे ही कमाए। जितनी शक्ति इसने दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में व्यय की है, उतनी शक्ति से तो यह कभी का निर्वाण का अधिकारी हो गया होता। उतनी शक्ति से तो न मालूम कितनी बार भगवत्ता उपलब्ध कर ले सकता था। भिक्षुओं इससे सीख लो, दूसरों की निंदा दूसरों का नहीं अपना ही अहित करती है। ये दूसरों के बहाने अपनी ही छाती में छुरा भोंकना है। अपने पर दया करो और अपने अकल्याण से बचो, क्योंकि मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। युवक ने अत्यंत क्रोध से पूछा, कोई दान न दे तो हम कैसा भाव रखें? कोई दुत्कारे तो हम कैसा भाव रखें? और कोई हमें तो दान न दे और दूसरों को दान दे तो हम कैसा भाव रखें? उस दिन उसने भगवान को भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली। इस पृष्ठभूमि ने भगवान ने आज की पहली दो गाथाएं कही। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, वह दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। ददाति वे यथा सद्धम यथा प्रसादनम जनो तथ यो मंकु भवति परेशम पान भोजने न सो देवा व रत्तिम व समाधिम अधिगच्छति यस्य चातम समुच्छिन्नम मूल घंचम समूहतम सवे देवा व रत्तिम व समाधि अधिगच्छति। पहले तो इस पृष्ठभूमि का ठीक ठीक विश्लेषण समझे। कथा छोटी सीधी सादी है, पर अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। भगवान के पास एक युवक ने दीक्षा ली, और कथा कहती है कि शायद इसलिए दीक्षा ली कि वो युवक अत्यंत अहंकारी था। यह बात पहले समझ लेने जैसी। लोग धन भी जोड़ते अहंकार के लिए और त्याग भी करते अहंकार के लिए। पहले अकड़ के चलते हैं कि कितना उनके पास है, फिर अकड़ के चलते हैं कि कितना उन्होंने छोड़ दिया। जितना उनके पास है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते हैं, जो छोड़ा है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते हैं। लेकिन हर हालत में आदमी अपने अहंकार को ही भजता है। मैं कुछ विशिष्ट हूं,

मैं कुछ अनूठा हूं, अद्वितीय हूं, मैं कुछ अलग हूं, औरों जैसा नहीं, मैं असाधारण हूं, सामान्य नहीं। इसी चेष्टा में आदमी लगा रहता, कभी धन कमा के, कभी बड़ी दुकान चला के, कभी किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर, कभी सबको लात मारकर, लेकिन सबके पीछे मूल आधार एक ही है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं। आदमी साधारण से बड़ा डरता है। सोचो, ये भाव ही कि मैं साधारण हूं छाती पे पत्थर जैसा रख जाता है। ये ख्याल ही कि मैं असाधारण हूं, विशिष्ट हूं, कुछ अनूठा हूं, और तुम्हें पंख लग जाते। लेकिन अगर तुम असाधारण हो तो सभी कुछ असाधारण है। पत्ते, फूल, पत्थर, चांतारे, सभी कुछ असाधारण है। और अगर सभी कुछ असाधारण है तो फिर साधारण असाधारण का भेद ही क्या? जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, ना तो कोई साधारण है ना कोई असाधारण, अस्तित्व एक है। इसलिए कौन साधारण होगा, कौन असाधारण होगा? तो या तो कहो सभी साधारण है तब भी सच, या कहो सभी असाधारण है तब भी सच। लेकिन एक को साधारण और एक को असाधारण करने में भूल हो जाती, कोटियां बांटी की भूल हो जाती, वर्ग बांटे की भूल हो जाती, वर्ण बनाए की भूल हो जाती, कहा कि ब्राह्मण शूद्र भूल हो गई, कहा कि ऊंचा नीचा भूल हो गई, कहा कि शुभ अशुभ भूल हो गई। जहां तक भेद है और जहां तक द्वंद है वहां तक संसार है। तो एक आदमी कहता है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पास कितना धन, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पुण्य, मैंने कितना पुण्य किया। इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई भी फर्क नहीं। जब तक आदमी कहता है देखो मैं विशिष्ट, तब तक कोई फर्क नहीं। इस जगत में जो आदमी साधारण होने को राजी है वही असाधारण है। जो ये कहने को राजी है कि मैं अति साधारण हूं उसकी ही असाधारणता सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को असाधारण होने का ख्याल है, इसलिए असाधारण का भाव तो बड़ा साधारण है। तुम अगर कुत्ते से पूछो, घोड़े से पूछो, पशु पक्षियों से पूछो, अगर वो बोल सकते तो वो भी कहते कि तुम हो क्या आदमी मात्र, असाधारण हम है। तुम पत्थर से पूछो, अगर पत्थर बोल सकता तो वो भी कहता कि तुम तो बस आदमी हो, आज हुए कल गए, हम सदा रहते, हम असाधारण हैं। कोई ना कोई बात खोज ही लेगा जिसके कारण असाधारण की घोषणा हो सके। असाधारण की घोषणा में अहंकार है, साधारण होने के भाव में अहंकार विसर्जित हो गया। और मजा यह है कि साधारण होते ही तुम असाधारण हो जाते, क्योंकि साधारण होने की भावदशा बड़ी असाधारण भावदशा है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट इस दशा को उपलब्ध होते। ये कथा कहती उस युवक ने अहंकार के कारण ही शायद संन्यास लिया। यदि कोई अहंकार के कारण ही संन्यास ले तो संन्यास व्यर्थ हो गया। अहंकार से जाग के कोई संन्यास ले तो संन्यास की सार्थकता है। कोई ये देख के संन्यास ले कि अहंकार व्यर्थ है, दुख लाता है, नरक है, और अहंकार को छोड़कर जागे तो संन्यास, नहीं तो संसार से सन्यासी हो गए। अहंकार वैसा का वैसा रहा तो रोग पुराना रहा, नाम बदल लिया, भीतर तो पुराना ही कचरा रहा, ऊपर रंग रोगन कर लिया। ये झूठ चल नहीं सकता, इस झूठ का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, ये प्रकट हो जाएगा। इसलिए युवक सन्यासी तो हो गया लेकिन पुरानी आदत न छूटी। पुरानी आदत थी अपने को विशिष्ट मानने की। अब अपने को विशिष्ट मानना हो तो दूसरे कुछ भी नहीं है ये सिद्ध करना जरूरी है। दूसरों की निंदा जरूरी है, अहंकार की छाया की तरह दूसरों की निंदा चलती, दूसरे कुछ भी नहीं है ये बताना ही पड़ेगा, ये रोज रोज बताना पड़ेगा। तो वो युवक निंदा करने में संलग्न रहता, और अब निंदा कर भी सुविधा से सकता था क्योंकि सन्यासी था। तुम जाओ मंदिरों में, आश्रमों में, तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी को सुनो, वो निंदा कर रहा है,
वो उन चीजों की निंदा कर रहा है जिनका तुम भोग करने में आतुर उत्सुक हो, और शायद वो भी तुम्हें इसलिए प्रभावित करता है कि उन्हीं बातों की निंदा करता है जिनमें तुम्हारा रस है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा रस है, उसका भी रस है, नहीं तो निंदा कभी की खो गई होती। जब कोई साधु संन्यासी समझाता हो कि धन मिट्टी है, तो जानना कि उसे धन में अभी भी धन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो ये तो नहीं समझाता कि मिट्टी मिट्टी है, धन मिट्टी है। जब कोई साधु संन्यासी समझाता हो कि स्त्री के शरीर में क्या है, हड्डी मांस मज्जा मल मूत्र और कुछ भी नहीं है, जब वो तुम्हें ऐसा समझाता हो तो जान लेना उसे अभी स्त्री का रूप आकर्षित करता है। वो तुम्हें नहीं समझा रहा, तुम्हारे बहाने अपने को समझा रहा है। जब वो सांसारिक जीवन की निंदा करता हो तो वो ये कह रहा है कि देखो हम सन्यासी कैसे पवित्र, कैसे पुण्य को उपलब्ध, कैसे साधु, कैसे सरल, और देखो तुम अपना पाप और अपना नरक। वो अपने को ऊपर रख रहा है, वो तुम्हें नीचे रख रहा है। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति के जीवन में साधुता का प्रकाश होता है तो वो तुम्हें नीचे नहीं रखता, वो तो कहता है तुम भी भगवान हो, तुम भी आत्मवान हो, तुम भी वही हो जहां मैं हूं, मुझे पता चल गया, तुम्हें पता नहीं चला, इतना सा भेद है। ये भी कोई खास भेद है, तुम्हारे जेब में 1000 रुपए पड़े, मेरी जेब में 1000 रुपए पड़े, मुझे पता चल गया, मैंने जेब में हाथ डाल लिया, तुमने हाथ नहीं डाला, ये भी कोई बड़ा भेद है। 1000 रुपए तुम्हारी जेब में भी पड़े, तुम जब हाथ डाल लोगे तभी उपलब्ध हो जाएंगे, ना भी हाथ डालो तो भी उपलब्ध है ही। जानने में फर्क हो सकता है, होने में कोई फर्क नहीं, बोध में फर्क हो सकता है, अस्तित्व में कोई फर्क नहीं। तुम में वही है जो बुद्ध में, तुम में वही है जो कृष्ण में, रत्ती भर कम नहीं। तुम में वही है जो मुझ में, रत्ती भर कम नहीं, सिर्फ तुमने कभी अपनी गांठ खोलकर देखी नहीं, तुमने कभी अपने भीतर टटोला नहीं। बस टटोलने का फर्क है, जिस दिन टटोल लोगे उसी दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम पापी हो, परमात्मा पापी कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम नारकी हो, परमात्मा कैसे नारकी हो सकता है। तुम हो तो परम अवस्था में, लेकिन तुम लौट के अपनी तरफ देखते नहीं, तुम्हारी आंखें बाहर भटक रही, बाहर भटकती आंखें भीतर के खजाने से अपरिचित रह जाती, बस इतना ही फर्क है। फिर अगर साधु को भी यह न दिखाई पड़े कि फर्क ना के बराबर है, ना कुछ है, तो फिर किसको दिखाई पड़ेगा। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जब आप ज्ञान को उपलब्ध हुए फिर क्या हुआ। बुद्ध ने कहा फिर एक बात घटी, जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ उसी दिन सारा संसार मेरे लिए ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उस दिन से मैंने अज्ञानी नहीं देखा। बुद्ध का सारा जीवन लोगों को यही समझाने में बीता कि तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम जिद करते हो कि हम अज्ञानी, और बुद्धों का सारा प्रयास यही है समझाना कि तुम नहीं हो, तुम्हारी भ्रांति तोड़नी, तुम मालिक हो, तुमने गुलाम समझा हुआ, तुम विराट हो, तुमने छोटे के साथ अपना संबंध बना लिया, आंखें आकाश की तरफ उठाओ, सारा आकाश तुम्हारा है, तुम आंखें जमीन पर गड़ाए खड़े हो। इससे यह नहीं होता कि आकाश तुम्हारा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारी आंखें छोटे में उलझ गई, मगर आंखों की क्षमता आकाश को भी समा लेने की, कितने ही छोटे में उलझे रहो, जिस दिन आंख उठाओगे उस दिन पूरा आकाश तुम्हारी आंखों में प्रतिबिंबित हो उठेगा। बुद्ध ने कहा जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हुआ, आदमियों की तो छोड़ ही दो, पशु पक्षी पौधे सब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। आत्मज्ञानी जब अपने खजाने को देखता है उसी क्षण उसे दिखाई पड़ जाता सब खजाना लिए चल रहे, सबके भीतर दीप्त है वो दिया, सबके भीतर रोशनी जल रही। अजीब है हालत कि लोग अपनी रोशनी नहीं देखते, भागे चले जा रहे हैं रोशनी की तलाश में, भागे चले जा रहे हैं धन की तलाश में, और धन भीतर पड़ा है, ऐसा धन जिसे तुम चुकाओ तो भी चुके नहीं, जिसे तुम उलीचो तो उलीच ना पाओ, जिसे तुम फेंकते जाओ और बढ़ता चला जाए, ऐसा धन, ऐसा परम धन भीतर पड़ा है। बुद्ध पुरुष तुम्हें पापी से पुण्यात्मा नहीं बनाते, तुमने अपने को देखा नहीं है, बस तुम्हें अपने को देखने की सूझ सीख देते हैं। यह युवक सबके
की निंदा में संलग्न रहता। कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, तब तो चूके ही कैसे। जिसको निंदा करनी है वो कारण होगा तब तो चूकेगा ही नहीं, कारण नहीं होगा तब कारण निर्मित करेगा। जिसको निंदा नहीं करनी है वो कारण तो निर्मित करेगा ही नहीं, जब कारण होगा तब भी दया करेगा, तब भी वो कहेगा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा जीना तुम जियो, मैं कौन, मैं हस्तक्षेप करूं ऐसा मैं कौन, मैं बाधा डालूं, मैं कहूं कि बुरा भला ऐसा मैं कौन। तुम्हारा जीवन है, तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुमने जैसा उसे जीना चाहा है तुम जियो, निंदा नहीं होगी। जीसस के पास एक स्त्री को लाया गया है, गांव स्त्री के खिलाफ है क्योंकि स्त्री ने व्यभिचार किया है, और पुरानी बाइबल कहती है कि जो स्त्री व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। जीसस नदी के किनारे रेत पर बैठे, सारा गांव इकट्ठा हो गया है और उन्होंने कहा जीसस से पूछ लो, ये बहुत ज्ञान की बातें करता है, और इससे एक बात ये भी पता चल जाएगी कि पुराने धर्म के पक्ष में है या विरोध में। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहते हो, पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो स्त्री अनाचार करे व्यभिचार में पड़े उसे पत्थर मार के मार डालना चाहिए, तुम क्या कहते हो? क्योंकि जीसस तो हमेशा ऐसा ही कहते थे, पुराने पैगंबरों ने ऐसा कहा लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, तो अब तुम क्या कहते हो? जीसस ने कहा पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो तुम्हें ईंट मारे उसे तुम पत्थर मारना, और जो तुम्हारी एक आंख फोड़े तुम उसकी दूसरी भी फोड़ देना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना, और जो तुम्हारी तुम्हारा कोट छीन ले कमीज भी उसे दे देना, और जो तुमसे कहे एक मील तक इस बोझ को ढो तुम दो मील तक उसके साथ चले जाना, मैं तुमसे ऐसा कहता हूं। तो उन्होंने कहा अब तुम क्या कहते हो? पुराने पैगंबर कहते हैं पत्थर मार के इसे मार डालना। उन्होंने एक उपाय खोजा था जीसस को फांसने का, या तो जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर गलत कहते तो भी वो जीसस पर नाराज होते, तो एक तुम ही पैगंबर हो अब तक सब ना समझी हुए, या जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर ठीक कहते तो हम कहेंगे फिर क्या हुआ तुम्हारे उस प्रेम के सिद्धांत का कि कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा कर देना, पत्थर मार के मारने को मार डालने को कहते हो, हत्या के लिए कहते हो, दोनों हालत में जीसस फंस जाएंगे। गांव बड़ा उत्सुक था, गांव का जो रबाई था जो धर्म गुरु था वो भी आगे खड़ा था आगे कि पूछो इस युवक से ये क्या कहता है, और जीसस ने एक क्षण सोचा और कहा आप पत्थर उठा ले, नदी का किनारा था पत्थर तो पड़े ही थे ढेर लगे थे, लोगों ने पत्थर उठा लिए, और जीसस ने कहा अब मैं कहता हूं जिस आदमी ने कभी व्यभिचार न किया हो या व्यभिचार का विचार न किया हो वो पहला पत्थर मारे। वो जो आगे खड़े बड़े बुजुर्ग थे धीरे धीरे भीड़ में पीछे हट गए, धर्मगुरु भी भीड़ में भीतर सटक सरक गया, धीरे धीरे भीड़ छट गई, जीसस और वो स्त्री अकेले वहां छूट गए। वो स्त्री तो उनके पैरों में गिर पड़ी, उसने कहा तुमने मुझे जीवन दान दिया, तुमने मुझे बचा दिया, अन्यथा आज भी मुझे मार डालते, लेकिन पाप तो मैंने किया है। उनसे तो मैं इंकार भी करती रही, तुमसे मैं इंकार भी कैसे करूं, पाप तो मैंने किया है, अब तुम मुझे जो सजा देना चाहो दो। जीसस ने कहा मैं तुझे सजा देने वाला कौन, ये तेरे और तेरे परमात्मा के बीच की बात है, मैं बीच में आने वाला कौन। अगर तुझे लग गया कि पाप है तो अब मत करना, और अगर तुझे लगता हो कि पाप नहीं है तो तेरी मर्जी, जो तुझे पाप न लगे तो जरूर करना। रही बात निर्णय की तो तेरा परमात्मा और तेरे बीच निर्णय होगा, मैं कौन हूं बीच में। उस स्त्री के जीवन में क्रांति घट गई, क्रांति घट गई इसलिए कि इस आदमी ने निंदा नहीं की, इसने कहा मैं कौन हूं, इस आदमी ने कोई वक्तव्य भी ना दिया, इसने ये भी ना कहा कि ये पाप है, इसने कहा तुझे पाप लगता हो तो छोड़ देना, जब तुम्हें पाप लगता है तो छूट ही जाता है, छोड़ना भी नहीं पड़ता, दूसरे के कहने से कोई छोड़ता है। और निंदा तो करना ही मत, निर्णय तो लेना ही मत, दूसरे आदमी के हम मालिक नहीं है, उसकी स्वतंत्रता परम है, उसकी गरिमा परम है, उसके ऊपर निंदा का एक शब्द भी उठाना सिर्फ अपनी हीनता की घोषणा है। लेकिन वो युवक कारण होता तब तो चूकता ही कैसे, कारण को खूब बढ़ा चढ़ा लेता होगा, कारण ना हो तब भी कारण खोज लेता था, निर्मित कर लेता था। कोई दान ना दे तो निंदा करता कि देखो कृपण, देखो कंजूस, मरेगा पापी, नरकों में सड़ेगा,
इसी धन की ढेरी पर सांप बन के बैठेगा जब मरेगा तो निंदा करता है, और कोई दान देता तो कहता अरे ये भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो, ये क्या मुट्ठी मुट्ठी दे रहे हो। अगर कोई किसी दूसरे को दान देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता है, उसको देता तब भी नहीं छोड़ पाता था निंदा करना, लेकिन दूसरे को देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता है। इसके साथ ही साथ उसका दूसरा काम था अपने परिवार की प्रशंसा, अपनी जाति की प्रशंसा, अपने वर्ण की प्रशंसा। ख्याल करना, तुम जब अपने देश की प्रशंसा करते, अपनी जाति की, अपने वर्ण की, अपने धर्म की, अपने कुल परिवार की, तो तुम वस्तुतः क्या कर रहे हो? तुम प्रकारांतर से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। जब तुम कहते हो भारत देश धन्य, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं भारतवासी हूं। अगर तुम चीन में पैदा हुए तो होते तो तुम कभी ना कहते भारत देश धन्य, तुम कहते चीन देश धन्य। तुम जहां पैदा होते वही देश धन्य होता। ये देश की प्रशंसा नहीं है, ये बड़ी तरकीब से अपनी प्रशंसा है, ये आत्म प्रशंसा है। तुम कहते हो हिंदू कुल धन्य, जैन से पूछो वो कहता है जैन कुल धन्य, बौद्ध से पूछो वो कहता है बौद्ध कुल धन्य। ये संयोग की बात है कि तुम जैन घर में पैदा हो गए इसलिए जैन कुल धन्य हो गया, ये संयोग की बात है कि तुम हिंदू घर में पैदा हो गए इसलिए हिंदू कुल धन्य हो गया। ये विश्व भरी बातें हैं, लेकिन इनको तुम इस तरह दोहराते हो कि तुमने जैसे विचार ही नहीं किया इन पर। अब ये बड़े मजे की बात है कि जो लोग निरअहंकार की शिक्षा देते हैं वो भी इन बातों में पड़े। तुम जैन मुनि से जाकर पूछो तो वो कहेगा जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता है, बाकी आदमी कोई आदमी थोड़ी, बाकी आदमी तो बस नाम मात्र के आदमी। जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता है, जन्म जन्म के पुण्यों से होता है। अब यही आदमी रोज समझाता है निरहंकार अहंकार छोड़ो, और बड़ी गहराई में अहंकार को पोषण दे रहा है। तुम ब्राह्मण से पूछो वो कहता ब्राह्मण होना कोई साधारण बात थोड़ी, असाधारण बात है। तुम पुरुष से पूछो पुरुष कहता है पुरुष होने में धन्यता है, स्त्री होने में दुर्भाग्य। शास्त्रों में लिखा है कि पहले तो मनुष्य होना बहुत दुर्लभ, फिर पुरुष होना बहुत दुर्लभ, फिर ब्राह्मण होना और भी दुर्लभ, फिर इस भारत देश में पैदा होना। ये तो धर्म देश है, यहां तो सदा धर्म की धारा बहती रही, यहां पैदा होना और भी दुर्लभ, बाकी सब तो मलेच्छ। मगर यही धारणा उनकी भी है, और तुम ये मत सोचना कि बड़े बड़े मुल्कों की, छोटे से छोटे मुल्क की भी धारणा यही है। ये धारणा मनुष्य के अहंकार की है। दुनिया में 300 धर्म है और सभी धर्मों के मानने वालों की यही धारणा है, और दुनिया में कितने देश हैं सभी देशों की यही धारणा है। और अब तो स्त्रियों ने भी घोषणा करनी शुरू कर दी, और ठीक किया है क्योंकि बहुत हो गया। अब पश्चिम में स्त्रियां घोषणा कर रही हैं कि स्त्री होना धन्य भाग है, पुरुष होने में क्या रखा है। पूरब के देशों में बूढ़ों के हाथों से शास्त्र लिखे गए तो बूढ़े कहते हैं बूढ़ों का आदर करो क्योंकि बूढ़ों ने शास्त्र लिखे। पश्चिम में जवान किताबें लिख रहे हैं वो कहते हैं कि 30 साल के ऊपर किसी आदमी का भरोसा मत करना। मैं एक बड़ी मजेदार घटना कल पढ़ रहा था, जेरी रूबिन जिसने इस बात का नारा दिया अमेरिका में कि 30 साल के ऊपर के आदमी का भरोसा मत करना, 30 साल के बाद आदमी बेईमान हो ही जाते, वो ये भूल ही गया ये कहने में कि 30 साल के ऊपर उसको भी एक दिन होना पड़ेगा। जब उसने ये कहा था तब वो 26 साल का था, भूल ही गया होगा जोश खर उसने। फिर वो 32 साल का हो गया, अमरीका में उसके पीछे एक आंदोलन चला इप्पी, और इप्पियों ने सारे अमरीका में तहलका मचा दिया कि 30 साल के ऊपर जितने लोग सब बेईमान। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो 30 साल के ऊपर हो गए। एक दिन वो होटल से बाहर निकला जहां ठहरा हुआ था, बाहर आया तो देखा कि उसकी कार में किसी ने आग लगा दी। वो बहुत हैरान हुआ कि किसने ये किया। जब पास गया तो पता चला वहां एक तख्ती लगी, उस पर लिखा है कि जेरी रूबिन अब तुम 30 साल के ऊपर के हो गए, अब हमारे नेता नहीं रहे। जिनका उसने आंदोलन खड़ा किया था वही उसके विरोध में हो गया क्योंकि वो 30 साल के ऊपर हो गया। तब उसको पता चला, अभी मैं उसकी किताब पढ़ रहा था उसने लिखा कि तब मुझे पता चला कि 30 साल के ऊपर एक दिन मुझे भी होना पड़ेगा, तब मैं ही झंझट में पढ़ूंगा। पश्चिम में युवक किताबें लिख रहे हैं तो बूढ़ों का सम्मान नहीं,
पूरब में।

उन्होंने किताबें लिखी तो युवकों का सम्मान नहीं, किसी दिन अगर बच्चे किताबें लिखेंगे तो जवानों का भी सम्मान नहीं रह जाएगा। पुरुषों ने किताबें लिखी तो स्त्रियों का अपमान, स्त्रियां किताबें लिखती हैं तो पुरुषों का अपमान। आदमी किस किस भांति अपने अहंकार की पूजा किए चला जाता। हम जो हैं हम प्रकारांतर से उसकी प्रशंसा करते, इससे जागना। ये अहंकार के सूक्ष्म सहारे हैं। मत भूल के कहना कि तुम हिंदू हो तो बड़ा कोई पुण्य हो गया, मत भूल के कहना कि तुम ईसाई हो तो कोई बड़ा पुण्य हो गया। पुण्य तो उस दिन होगा जिस दिन तुम ना कुछ हो जाओगे, उसके पहले कोई पुण्य नहीं है। न तुम्हारा कोई देश रहेगा, न कोई जाति रहेगी, न कोई कुल रहेगा, न स्त्री पुरुष का भाव रहेगा। पुण्य तो उस दिन होगा, धन्यता तो उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई रोग न रह जाएंगे, कोई तादात न रह जाएगा। तुम ये कह ही ना सकोगे कि मैं हिंदू कि मुसलमान कि ईसाई कि जैन, तभी तुम धन्य होगे। उसके पहले तो धन्यता झूठी है। वह युवक शायद इसीलिए संन्यास्त भी हुआ था ताकि वो कह सके कि देखो मैं संन्यास्त हूं, सारा जगत पापी है। संन्यास का मजा ही यही है, उससे तुम्हें बड़ी सुगम सुविधा मिल जाती है सारी दुनिया को निंदा करने की। संन्यास्त होते से ही तुम एकदम शिखर पर विराजमान हो जाते हो। एक क्षण पहले सड़क पर थे, एक क्षण बाद शिखर पर विराजमान हो जाते। तुम देखते हो जीव दीक्षाएं होती तो कितना शोर शराबा जुलूस निकलता और बड़ी उत्सव मनाया जाता कि कोई सज्जन दीक्षा ले रहे। इसमें उत्सव की क्या बात है? मैं संन्यास देता हूं तो जरा भी आहट नहीं होने देता, क्योंकि आहट की क्या बात है? इसमें उत्सव की क्या बात है? उत्सव तो अहंकार की ही पूजा है। उत्सव का तो मतलब यह हुआ कि तुमने दीक्षा लेने वाले का खूब अहंकार पोषित कर दिया, अभी अकड़ के चलेगा। देखते हैं जैन मुनि हाथ जोड़ के किसी को नमस्कार नहीं करता, कर नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है मुनि और नमस्कार करे ग्रस्तों को, श्रावकों को, गैर सन्यासियों को नमस्कार करे मुनि। मुनि सिर्फ आशीर्वाद दे सकता, नमस्कार नहीं कर सकता। ये तो हद हो गई। और उनसे जो कि निरअहंकार की बात करते ये हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं कर सकते। इन्हें दूसरे में सिर्फ ग्रस्त दिखाई पड़ रहा है, दूसरे में छिपा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। ये सब अहंकार के ही नए नए रूप है, नए नए ढंग है। तो संन्यास्त हो गया युवक, कथा बड़ी मीठी है। कहती कि शायद इसीलिए संन्यास्त हुआ कि ये अहंकार में एक और नया पंख लग जाएगा, एक नया रंग लग जाएगा। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि वो व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता है और व्यर्थ ही अपने कुल की प्रशंसा करता है। उसके कुल में तो कुछ था ही नहीं, कुछ खास बात ही न थी। वो तो साधारण लोग थे, साधारण से भी गए बीते लोग थे। बड़े हीन कुल से वो आया था, बड़ी हीन वृत्तियों वाले कुल से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान से कही। 2500 साल पहले बुद्ध ने जो वक्तव्य दिया उस पर फ्रायड और जुंग को ईर्ष्या हो, एडलर परेशान होता अगर इस वक्तव्य का उसे पता चल जाता, क्योंकि एडलर ने अभी जो मनोविज्ञान विकसित किया है उसका मौलिक आधार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हीनता की ग्रंथि। वो कहता है जो लोग जितने हीन होते हैं उतने ही श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। काश उसे बुद्ध की ये कथा पता होती तो उसे ये ख्याल पैदा नहीं होता कि उसने कोई अनूठी बात खोज ली। तुम अगर पुराने शास्त्रों में गहरे उतरो तो तुम चकित हो जाओगे, शायद कोई अनूठी बात खोजने को बची नहीं। होना भी ऐसी चाहिए। कितने अनंत काल से आदमी सोचता रहा है, सब पहलू देख लिए गए, सब परतें उलट ली गई, सब द्वार खोल लिए गए, मगर वहां भी अहंकार का एक खेल चलता है। हर युग कहता है कि जो हमने खोजा वो किसी ने नहीं खोजा, और हर आदमी कहता है कि जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता, मैं मौलिक हूं। ये सदियों से आदमी सोचता रहा है, हजारों वर्षों से आदमी चिंतन करता रहा है। बड़े बड़े मनीषी हुए, बचा कैसे होगा कुछ तुम्हारे लिए मौलिक होने को? जिससे कृष्णमूर्ति के अनुयायी कहते हैं कि कृष्णमूर्ति जो कहते हैं मौलिक, तो उन्होंने अष्टावक्र नहीं पढ़ा, नहीं तो वो बड़े हैरान हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति का एक भी वक्तव्य नहीं है जो अष्टावक्र वक्तव्य से आगे जाता हो। खैर, कृष्णमूर्ति तो शास्त्र पढ़ते नहीं, उनकी जिद है कि वो पुराने शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, चलो उनको क्षमा किया जा सकता है। मगर उनके शिष्य जो दावा करते हैं उनको तो कम से कम इधर उधर देखना चाहिए इसके पहले कि मौलिक होने का दावा हो। ऐसा
एक वक्तव्य नहीं है जो आदमी दे सके, जो कि पहले नहीं दिया गया। ये हो सकता है कि समय ने बहुत धूल जमा दी हो, दूरी हो गई हो, हम भूल भी गए हो, लेकिन जो भी आज है वो कल भी था, परसों भी था, कल भी होगा, परसों भी होगा। हमारी मूढ़ता वैसी ही है जैसे गुलाब का एक फूल जो आज खिला है वो खिलते ही से कहे ऐसा फूल पृथ्वी पर कभी नहीं खिला, या सूरज आज उगा है वो कहे कि ऐसा सूरज पहले कभी नहीं उगा, कि रात तारे आकाश में फैले हों और घोषणा कर दें कि ऐसी तारों भरी रात पहले कभी नहीं हुई। जो आज हो रहा है वो सदा होता रहा है, आज अनूठा नहीं, सूरज के तले नया कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत बार बातें खोजी जाती हैं, फिर खो जाती, समय की धारा में भूल जाती, फिर खोज ली जाती, इसलिए हर खोज पुनर्खोज है, कोई खोज नई नहीं। बुद्ध ने कहा हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। एडलर की पूरा मनोविज्ञान इस वचन में आ गया। तुम देखना आदमी के व्यक्तित्वों में झांकना तो तुम पाओगे जहां जहां हीनता की ग्रंथि होती है वहां वहां श्रेष्ठ होने का भाव पैदा होता है। चोर सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं, चोर बड़ी जोर से कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है भीतर से, हूं तो चोर ही, सिद्ध तो करूंगा, नहीं सिद्ध कर पाऊंगा तो पकड़ लिया जाऊंगा। चोर अगर चुप रहे तो उसे डर लगता है कि मेरी चुप्पी कहीं मेरी चोरी का प्रमाण न बन जाए। झूठ बोलने वाला सिद्ध करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। जो लोग बहुत कसमें खाते हैं समझ लेना है कि वो झूठ बोलने वाले लोग, नहीं तो कसमें नहीं खाएंगे। हर बात पे कसम की, भगवान की कसम कि तुम्हारी कसम। जो आदमी कसमें खाता है ये झूठ बोलने वाला आदमी है, क्योंकि इसे सच अपने आप में काफी है ऐसा नहीं मालूम पड़ता। इसे लगता है कसम जोड़ो साथ में, अपने आप में तो कुछ है नहीं। कसम की बैसाखी लग जाए तो शायद झूठ थोड़ा चल जाए। सच बोलने वाला आदमी कसम नहीं खाएगा। कसम का मतलब ये होता है झूठ का तुम्हें पता है, अब तुम झूठ को लीपापोती कर रहे हो, अब तुम किसी तरह से प्रमाण जुटा रहे हो कि सच हो जाए। हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। तुमने दुनिया में देखा, अगर तुम बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की जीवन कथा पढ़ो तो तुम बहुत चकित हो जाओगे। उनमें कोई न कोई हीनता की ग्रंथि थी, इसलिए वो पदों की तरफ भागे। नेपोलियन की ऊंचाई कम थी, 5 फीट 2 इंच, मनोवैज्ञानिक कहते हैं यही कारण था। वो हमेशा बेचैन था इस बात से कि उसकी ऊंचाई बहुत कम है। वो दुनिया को बताना चाहता था मेरी ऊंचाई कितनी, वो ये दिखाना चाहता था कि मेरे शरीर से मुझे मत तौलो, शरीर में क्या रखा है, मेरी असली ऊंचाई देखो, मेरे सिंहासन से देखो। उसने दुनिया का सबसे बड़ा सिंहासन बनवाया था ताकि उसके ऊपर बैठ कर वो दिखला सके। वो चाहता था सारी दुनिया को जीत लूं ताकि मैं बता सकूं कि मेरी ऊंचाई कितनी। एक दिन वो घड़ी ठीक करना चाहता था, घड़ी जरा ऊंची लगी थी दीवार पर और उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उसका जो अंग रक्षक था उसने कहा रुकिए महानुभाव, मैं आपसे ऊंचा हूं, मैं ठीक कर दूंगा। उसने कहा कि चुप, भूल के इस तरह का शब्द मत उपयोग करना, मुझसे ऊंचा, मुझसे लंबा है, ऊंचा नहीं। उसने तत्काल सुधार करवा दिया, लंबाई और ऊंचाई में फर्क होता, मुझसे लंबा तू जरूर है लेकिन ऊंचा क्या है, ऊंचा कैसे होगा, मेरा अंग रक्षक और मुझसे ऊंचा। नेपोलियन ने सिद्ध करने की कोशिश की। कहते हैं कि लेलिन जब बैठता था तो उसके पैर बहुत छोटे थे, ऊपर का शरीर तो ठीक था, पैर बहुत छोटे थे, कुर्सी पे लटक जाते थे पैर उसके, जमीन से नहीं लगते थे। इससे वो बड़ा पीड़ित था, वो छिपा के बैठता था अपने पैरों को, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो पैरों की कमजोरी ही उसकी दौड़ थी कि जमा के बता देगा पैर, ऐसे जमा के बता देगा कि कोई भी उखाड़ ना सके। तुम इसे अगर खोजोगे तो पालोगे, दूसरों में नहीं अपने में भी पालोगे। तुम अपने में भी पालोगे कि कौन सी चीज तुम्हें बेचैन किए जा रही है, कौन सी बात तुम्हें घाव की तरह खटक रही है, उसी के कारण तुम दौड़ रहे हो। जिसके सब घाव भर गए उसकी कोई पदाकांक्षा नहीं रह जाती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रह जाती। उसके जीवन से राजनीति विसर्जित हो जानी चाहिए, हो ही जाएगी। राजनीति का अर्थ ही होता है हीन ग्रंथियों से पीड़ित लोगों की दौड़।
राजनीति का अर्थ होता है विक्षिप्तता, एक तरह का पागलपन। धन की दौड़ भी एक तरह का पागलपन है। महत्वाकांक्षा ही पागलपन का सार है, सूत्र पागलपन का महत्वाकांक्षा है। कुछ हो के दिखा दूं, क्यों? क्या तुम नहीं हो? कुछ बन के बता दूं, क्यों? क्या तुम जैसे हो वैसे परिपूर्ण पर्याप्त नहीं हो? विंसेंट वान गाग पश्चिम का बहुत बड़ा चित्रकार, बहुत कुरूप था, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसकी कुरूपता के कारण ही वो सौंदर्य का आराधक हो गए। उसने बड़े सुंदर चित्र बनाए, सुंदरतम चित्र बनाए। वो चित्रों से सिद्ध करना चाहता था कि मेरी छोड़ो, मेरे हाथ के सौंदर्य को देखो। चेहरा उसका कुरूप था, कुरूप आदमी सौंदर्य में उत्सुक हो गया। तुमने कभी किसी सुंदर स्त्री को चित्र बनाते देखा? सुंदर स्त्री को कविता लिखते देखा? मैं एक घर में मेहमान था एक बार, एक गांव में। वहां एक कवित्री सम्मेलन हो रहा था, अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन। तो मेरे मित्र ने मुझे भी कहा आप भी चलिए, सारे देश की महिला कवित्रियां इकट्ठी हो रही। मैंने कहा तुम जाओ, सिर्फ एक बात मुझे बताना, उनमें कोई एक आध सुंदर भी है? उन्होंने कहा क्यों आप ऐसा प्रश्न क्यों उठाते? मैंने कहा तुम जाके फिर मुझे बताना। वो जब रात 12 बजे लौटे, मैं तो सो गया था, मुझे आके उठाया। उन्होंने कहा कि मैं रात भर रख नहीं सकूंगा इस बात को, मैंने आपने हैरान कर दिया, उनमें एक भी सुंदर नहीं थी। मगर आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? मैंने कहा प्रश्न इसलिए पूछा था कि सुंदर स्त्री कुछ और करती नहीं, सौंदर्य काफी। असुंदर स्त्रियां कुछ करती देखी जाती, समाज सेविकाएं बन जाएंगी, कवित्रियां बन जाएंगी, चित्रकार बनेंगी, क्योंकि सौंदर्य की कमी है, कुछ खटक रहा है। जो खटक रहा है उसे किसी तरह भरना होगा, तो कुछ करके उसे भर लिया जा सकता है। कुछ और पैदा करके वो जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ दुनिया में आदमी ने किया है वो आदमी का है, स्त्रियों ने कुछ खास नहीं किया। और जिस कारण को वो कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो कारण सुनने और समझने जैसा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्रियां बच्चे पैदा कर लेती, ये इतना बड़ा कृतित्व है मां बनना। क्या और क्या बनाना है? एक मूर्ति बनाने से क्या होगा? एक जिंदा मूर्ति पैदा करती है। एक चित्र बनाने से क्या होगा? एक जिंदा तस्वीर पैदा कर दी, एक जिंदा चेहरा पैदा कर दिया, जीवित आंखें, चलता फिरता बच्चा पैदा कर दिया। इससे बड़े सौंदर्य का और क्या जन्म होगा? स्त्रियां तृप्त है एक बच्चे को जन्म देके, पुरुष बड़ा बेचैन है। स्त्रियों के सामने वो अपने को जरा असहाय पाता है, वो किसी चीज को जन्म नहीं दे सकता है। तो उसकी परिपूर्ति करता है, वो एक मूर्ति बनाएगा, एक चित्र बनाएगा, कविता लिखेगा, काव्य रचेगा, कुछ करके वो सृजनात्मक होता है। सिर्फ इसीलिए ताकि स्त्री के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, वो कह सके मैंने भी कुछ बनाया है। और धीरे धीरे उसने इतनी चीजें बना डाली कि स्त्री बेचैनी अनुभव करती, उसे लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। पुरुष ने इतना बना डाला, तुम चकित होगे। जिन कामों में स्त्रियों को ही खोज करनी चाहिए उनमें भी पुरुष ही खोज करता है। पाक शास्त्र भी पुरुष लिखते हैं, स्त्रियां नहीं लिखती। और दुनिया की बड़ी होटलों के जो बड़े से बड़े भोजन बनाने वाले लोग हैं, रसोई हैं, वो पुरुष हैं, स्त्रियां नहीं। क्यों? स्त्री तृप्त है, पुरुष अतृप्त है। कुछ बात खटक रही, कुछ कम है, कुछ खाली जगह है, तो कुछ करके इसे पूरा कर लेना है। कुछ भी करने से पूरा नहीं होता, क्योंकि कमी कैसे पूरी हो सकती है? कमी तो स्वीकार करने से विसर्जित होती। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति धार्मिक जगत में प्रवेश नहीं करता, उसकी हीनता नहीं मिटती। वो लाख उपाय कर ले, धन इकट्ठा कर ले, पद इकट्ठा कर ले, प्रतिष्ठा बना ले, कमी नहीं मिटती। तो बुद्ध ने कहा हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ है उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है। वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आपके हम हर बार बताते हैं कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, और आज इसीलिए हमने तय किया है कि कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से दर्शकों के होते हैं और बहुत सारा उसमें ही जवाब मिल सकता है, उन्हें हम चुने और अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तलाशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ

0: हमारे हम सफर है। मैं आपको हमारी सस्य शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सस्य शिवानी, इतने सारे सवाल और इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि मिलते जुलते सवाल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी वही है, मुश्किलें वही हैं, अड़चने वही हैं, स्ट्रेस उतना ही है, एंगर है, बाकी सारी और चीजें हैं। एक सवाल जो यहाँ पे इन्होंने भेजा है, मुंबई से आया है, और विनय जी ने ये लिखा है, मेल भेजा है, वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पर बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई डू केयर फॉर हर एंड हो ये रहा है कि धीरे धीरे मैं इरिटेट होने लग गया हूँ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, और आप शायद उन्हें कुछ समझा पाए, और मैं चाहूँगा कि आप बात करें।
1: वही टिपिकल प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जहाँ दोनों वर्किंग हो गए और दोनों बहुत सारा समय बाहर बिताने लगे, तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रीप अप होने लग गई, क्योंकि हम परिवार के साथ कम समय
0: और बाहर ज्यादा
1: समय बिताने लगे। और एक नॉर्मल भी होता गया कि जहाँ हम बाहर इतना समय बिताएंगे तो वी विल हैव अ क्लोज फ्रेंड सर्कल देयर, वी विल हैव पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस, बट नाउ इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हमारे जो क्लोज परिवार के जो संबंध है वो और भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बेस होते जाए। तो कहीं ना कहीं इस केस में एक तो जिन्होंने ईमेल लिखा विनय जी ने, ही ऑल्सो हैज टू डू अ लिटिल वर्क, बिकॉज मे बी उन्हें लग रहा है कि सारा काम
0: कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी।
1: क्योंकि क्वेश्चन भी जिस तरह से भेजा है कि आप मेरी वाइफ को ये समझाइए, तो लेकिन हमारा तो हमेशा मोटो यही रहता था, वी कांट चेंज अदर पीपल, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थिंग्स विल बिकम इजी फॉर हर। मे बी शी डजंट हैव टू मच ऑफ अ डाउट, मे बी आई एम फीलिंग लाइक दैट, बिकॉज कई बार हो सकता है कि अगर मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या छोटा छोटा जो समटाइम्स मे बी जस्ट आउट ऑफ यू नो कि जैसे इकट्ठे रहते हैं, तो इट्स गुड टू नो अबाउट ईच अदर, इट्स गुड टू नो कि हम एक क्या कर रहे हैं सारा दिन में। लेकिन जब और किसी की नेचर ज्यादा पूछने की होती है कि मुझे पता रहे कि आप सारा दिन कहाँ पर हैं, लेकिन कई बार जब हम बार बार उस तरह का पूछते हैं तो जिससे वो सवाल किए जाते हैं उसको लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत डीप रूटेड ये संस्कार बन गया है डाउट करने का। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, वाइफ डाउट कर रही है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हस्बैंड डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं कि ये मुझसे क्यों
0: डाउट कर रही है।
1: यू नो ये एक एनर्जी है जो क्रिएट हो जाती है, तो मे बी इफ शी हैज नॉट सेड इट डायरेक्टली तो मे बी डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर, मे बी बिकॉज क्या होता है जिस वायुमंडल में हम आज हैं, तो हम जब ऑफिस पहुंचते हैं हमारे को ये बातें बहुत कॉमन सुनने में मिलती हैं। दीज हैव बिकम द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन एवरीवेयर के हस्बैंड का कुछ और
0: मुझे गुस्सा चढ़ने लगता है, मैं उसे चुप हो जाता हूँ, बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर।
1: अब हम जब बात करना बंद कर देंगे
0: तो पनिशमेंट वाला जो फैक्टर
1: कि एक तो दूसरे को दर्द मिलेगा। अब अगर सपोज एक तो है कि पता आई हैव टू मेक श्योर कि वाइफ डाउट कर रही है या नहीं, नाउ अगर कर रही है हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शब्दों से नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से वो सही एनर्जी नहीं पहुंच रही,
0: व्यवहार में लानी पड़ेगी आपको।
1: तो अब जो हम कर रहे हैं वो और ही दूरी ला रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम इरिटेट हो रहे हैं कि हम बात करना ही बंद कर देते हैं। अब अगर हम बात करना ही बंद कर देंगे तो डाउट और भी बढ़ता जाएगा। तो नाउ इफ आई लुक एट हर विद कंपैशन, राइट नाउ आई एम लुकिंग एट हर विद एंगर कि ये क्यों डाउट कर रहे हैं।
0: मेबी यू नो अगेन दिस थिंग कम्स यहाँ पे शिवानी की, शायद वो अगर डाउट कर रही है तो वो पेन में है,
1: पेन में तो है ही, बहुत दर्द में है। आप इमेजिन करो ना, दो क्षण के लिए अपने आप को वाइफ की स्थिति में रख के देखो वो कितने दर्द में है। अब इस दर्द में क्या मैं उसको और दर्द दूं? यही तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। पहले हमें हो रहा था गुस्सा, क्यों डाउट कर रही है जबकि मैं सिंसियर हूँ, तो क्यों डाउट कर रहे हैं मेरे पर, तो वी सेंट एंगर, एंड एंगर जैसे इन्होंने कहा व्यवहार में भी आने लग गया thoughts में भी नहीं, तो I have to feel compassion कि वो doubt कर रही है, must be going through so much turmoil, तो कहीं ना कहीं ये जो energy है इसको हमें change करना होगा, तो start giving her more positive healing energy कि मे बी बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन जो कहीं से मिले होगी, या फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उस तरह की बात करते हैं, या उनको अपने ऑफिस में कई ऐसे लोग दिखाई देते होंगे जिन्होंने इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो डाउट बैठ गया है, मुझे उस डाउट को फिनिश करने के लिए और भी प्योरिटी और भी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी इफ़ दैट रिलेशनशिप मैटर्स टू मी. See, that's all about priority. अगर relationship matter करता है, then it is not about ego. कि आप गलत हैं, आप मुझ पर कैसे ये doubt कर सकते हैं. मेरा perspective ये होना चाहिए, इस समय ये relationship में दर्द है, मुझे इस दर्द को heal करना है, क्योंकि सामने वाले के अंदर तो इस time ताकत ही नहीं है.
0: They definitely, because he says मैं hurt हो रहा हूँ. So again, हमने बात ये की थी कि hurt कोई और नहीं कर सकता हमें, हम खुद करते हैं. हाँ,
1: तो अगर कोई doubt भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिंसियर हूँ तो मुझे क्यों हर्ट होना चाहिए. मुझे हर्ट इस बात से होता है कि तुमने मुझे डाउट किया कैसे. यू सी दैट्स ईगो, दैट्स वेयर इट गेट्स हर्ट. बट इफ आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, आई विल सी इट्स ओके, एक्सेप्ट, इट्स अंडरस्टैंडेबल. और जितनी जल्दी हम उसको हील कर देंगे, उतनी जल्दी वो ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा. हमें लगता है इसने डाउट कर दिया तो इसका मतलब कोई ट्रस्ट
0: हो गया, वो लड़ाई होती है. बहुत सुंदर विनय जी यही कहना चाहेंगे कि प्यार अगर आप करते हैं सचमुच, इफ यू
1: रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरे लिए.
0: अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यू रियली लव योर वाइफ, देन एक्सेप्ट हर. दिस इज व्हाट वी सेड, लव, लविंग समबडी मींस एक्सेप्टिंग. और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं.
1: जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को कोई बीमारी लग जाती है, इट कुड बी एन एक्सीडेंट जिसमें आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं, या आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जो ठीक नहीं होती है. हमें बहुत तरह के रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं दूसरे मेंबर से. मेजोरिटी तो होना चाहिए या होता है कि स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और विद योर फिजिकल हैंडीकैप ऑल्सो आई एक्सेप्ट यू. हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पहले तो ठीक थे लेकिन अब आपका ये हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए. नो, विद द फिजिकल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो विद अ लिटिल इमोशनल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को. वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा सा हैंडीकैप आ गया, थोड़ी सी चोट लगी है बीच में, तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे? जिसको चोट लगी है उसको ही डांटना शुरू कर देंगे? सिर्फ ये है कि फिजिकल एलिमेंट और फिजिकल हैंडीकैप देखना बहुत इजी लगता है, इट्स इजी, लेकिन इमोशनल एलिमेंट देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम खुद ही चोट में बैठ जाते हैं.
0: और इमोशनल एलिमेंट में हम दूसरे को दोष देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल. You know, see, we don't take it as an ailment. Yeah. We say you are responsible for it.
1: Responsible. And now you have hurt me. So now I have the right to hurt you. So आपने मुझे doubt किया.
0: I don't think it's an emotional ailment.
1: यही तो हो रहा है ना, तो वही तो बात हुई थी कि आप भी दर्द में तो मैं भी दर्द में. तो आपने मुझे doubt किया, तो अब मैं आपको गुस्सा करूँगा. तो क्या हुआ? आप भी दर्द में, मैं भी दर्द में.
0: Wonderful. That's actually a different way of looking at it. और कहीं ना कहीं आप शायद विनय जी उम्मीद ये कर रहे थे कि हम आपकी वाइफ से बात करना चाहेंगे, लेकिन जरूरी यही है कि बदलना हमें खुद को होगा.
1: हाँ, और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, I was just thinking just while we were discussing कि ये हर प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में या हमारी कोलीग्स के साथ आ जाता, लुक एट इट एज अ हैंडीकैप, लुक एट इट एज एन इलनेस, डू नॉट लुक एट इट, ये तो है ही ऐसे. मतलब हमें ये समझना होगा जानबूझकर कोई कुछ नहीं कर रहा होता. कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि वो अपने हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है. मेजर इनसिक्योरिटी है अंदर, इस कारण से उसको लग रहा है कि आप बाहर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं
0: कम है, बहुत
1: तो
0: कम.
1: इतनी कमजोर आत्मा के ऊपर अब और क्या गुस्सा करना. इट्स नॉट राइट.
0: लेकिन
1: इट्स नॉट राइट.
0: वही होता है कि हम भी उतने ही कमजोर होते हैं, और वो जब दो कमजोर आत्माएं साथ होती हैं तो फिर
1: दैट्स व्हाट इट्स ऑल बिकम अबाउट, अंडरस्टैंडिंग. जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हमें औरों को भी अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा.
0: वेरी वेरी ब्यूटीफुल शिवानी. और अब एक और मेल हम लेते हैं यहाँ पर. ये एक बच्चे का मेल है, और मजे की बात यह है कि इस प्रोग्राम के दौरान हमें इतने स्टूडेंट्स के और यूथ के मेल आए हैं जो ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं नहीं कर पाते. एंड दिस इज अ गर्ल हु इज 14 ईयर ओल्ड. शी सेज माय मदर इज वेरी ब्यूटीफुल. Till some time, I had a lot of confidence on her. I was very proud of her. वो एक working woman है और मेरी उनके साथ बहुत अच्छा relationship था. लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये देखती हूँ, I started hating her. Why? Because I find her much more beautiful than me. और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैंने ये देखा, अपनी फ्रेंड से भी बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर चली गई हूँ. This is a child talking.
1: It just shows कि हमारी insecurity किस level तक पहुँच गई है. पहले ये होता कि अगर मेरे friends मेरे से ज़्यादा beautiful हैं या मेरी sister या brother मेरे से ज़्यादा attractive है तो हमें insecurity की feeling आती. लेकिन parents के साथ इस तरह की चीज़ feel करना, पहली बात तो हमने यही समझा कि beautiful actually मतलब क्या है, है ना. अभी ये क्यों ये इनसिक्योरिटी आ रही है? इट कुड बी विद मदर, इट कुड बी विद एनीबडी एल्स, इट कुड बी विद फ्रेंड्स. इट इज बिकॉज जो ज्यादा सुंदर है फिजिकली, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी. और उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती और मुझे नहीं मिलती है तो मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम इस पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड आई बिलीव कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल, या आई बिलीव कि आप सोचते हैं कि शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, सो आई स्टार्ट फीलिंग यू लाइक हर मोर देन मी. एंड ये मेरे लिए बहुत डैमेजिंग हो जाता है क्योंकि मैंने सारा कुछ इस बिलीफ पर बेस कर दिया कि फिजिकल लुक्स एक्सेप्टेंस लाते हैं, फिजिकल लुक्स पे मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है और लोगों की अप्रिसिएशन मेरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है. अब क्या होता होगा मे बी कि जहां भी मदर एंड डॉटर इकट्ठे जाते हैं, इफ शी फील्स कि फिजिकली मदर उससे ज्यादा सुंदर है, शी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग कि मदर को ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है. और जहां ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता तो शी मस्ट हैव फेल्ट कि ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब ये समझने की बात होगी कि इट्स नॉट एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी. किसी को भी आप सिर्फ एक दो मिनट के लिए फिजिकल ब्यूटी पर आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कि लोगों की हमारे प्रति एक्सेप्टेंस या हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की जो बात आती, इट्स मोर ऑन माय एनर्जी लेवल. So and in your mother, I mean, you can never compete with a mother.
0: No, but then I can understand. Yeah. She's Yana from Rajasthan, and yeah. she is so hurt. मतलब आप anger और hurt से जुड़ा हुआ कि she was my best friend, my mother was my best friend, and now I don't even want to talk to her.
1: हाँ, लेकिन इस केस में तो कोई problem ही नहीं है. ये problem तो खुद अपनी create की हुई है, and one thought and वो finish हो जाएगी.
0: ज़्यादा teenagers के साथ ये problem आ रही है कहीं ना कहीं,
1: क्योंकि self esteem बहुत low है इस time, और self esteem सारा physical पर बहुत ज़्यादा आधारित है, and self esteem बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर dependent है कि कितने लोग
0: मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे attention कितना दे रहे हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे देखते हैं.
1: self इतना vacuum में है कि मुझे औरों की अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे औरों से अटेंशन नहीं चाहिए, और दूसरी बात, दूसरे लोग भी अगर आपको चाहिए एक्सेप्टेंस, देन इट्स नॉट फिजिकल ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट. अपने इनर सेल्फ पर काम करना शुरू करें. मे बी इट्स पॉसिबल दैट फिजिकली तो आपकी मदर अट्रैक्टिव है ही है, लेकिन इट्स ऑल्सो दैट शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन,
0: है
1: ना. तो शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, तो उनके अंदर से वो पॉजिटिविटी जो रेडिएट होती है उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता. और इसको देख देख के मैंने अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, वो नेगेटिव ऑरा मेरे अराउंड है, उसकी वजह से लोग मेरे से
0: दूर होते जाएंगे
1: और भी दूर हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वॉक इन करता, यू कैन फील द एनर्जी. आप फील कर सकते हैं कि कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है. तो नथिंग अबाउट द फिजिकल लुक, लेकिन लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे. बिकॉज आई एम कैरिंग अ वेरी नेगेटिव ऑरा, तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल लुक्स. वो आधारित है कि हमारा ऑरा क्या है. जैसे ही हम किसी भी कमरे में प्रवेश करते, हमारे साथ साथ हमारी एनर्जी फील्ड एंटर करती है, एंड वो एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है और लोग मेरी एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं या मुझसे दूर होना चाहते हैं तो उस पर वर्क करें एंड यू विल हैव एवरीवन विद यू
0: एंड समवेयर आई थिंक शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर मदर एज वेल यू नो
1: Mother is already a very beautiful person. Internally also, it's understandable.

0: कैरी फॉरवर्ड होगी और रिलेशनशिप्स में. और अगर मेरा मदर डॉटर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं अपने आगे की रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकूंगी. मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक हीनता की भावना, एक भय और एक इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी. मुझे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे डर है, उनसे खतरा है, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी. और ये मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी. आई हैव टू रिमेम्बर ये औरों की वजह से नहीं है.
1: जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी. आप आज बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत करके हमें लिखा है. इट्स अ बिग स्टेप. अगला स्टेप ये है कि आप जिम्मेदारी उठाइए, आप अपने जिस भी जो भी आप फील कर रही हैं, और फिर एक थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे, एक थॉट.
0: इस केस में तो वो रियलाइज भी कर रही होंगी कि मदर की कोई गलती तो है ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट उनको ये लग रहा होगा मुझे ऐसे थॉट्स आई क्यों रही हैं. तो कुछ नहीं, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट, और अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दे, वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दे, और अपने आप.
1: एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज़ यू आर दैट ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली. असिस्टेंट शिवानी, एक ये एक और सवाल है जो बहुत से दर्शकों का सवाल से जुड़ता है, और ये है वितेश शर्मा जी हैं. ये इन्होंने हैदराबाद से लिखा है. ही इज अ रिटायर्ड जज एंड ही सेज आई हैव गॉट टू सन्स. बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं दोनों, एक अमेरिका में है और एक बैंगलोर में है. मैं और मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन अब मैं 65 के करीब हूँ, ज़्यादा हूँ. मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मेरा मन ये करता है कि बाकी लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगता है. पर मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को कभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आने दिया था. जब वो छोटे थे तब मैं इतना बिजी था अपने प्रोफेशन में, और वाइफ के साथ जो था वो भी एक दूरी बनी रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा. अब इतनी लोनलीनेस में फील करता हूँ, ना बच्चों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, ना वाइफ के साथ रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको, और वाइफ ने अपना सर्कल बना रखा है. मेरे पास ना मैं कह पाता हूँ अपने बच्चों से कि मैं लोनली हूँ, क्योंकि मुझे अब प्रोग्राम भी देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने भी उन्हें लोनलीनेस कहीं दी है. और ना मैं वाइफ के साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करूँ मैं. एंड देयर इज दिस लोनलीनेस व्हिच इज सीपिंग इन, सो आई वांट टू शेयर इट विद यू.
0: ट्रू. नाउ ये बहुत अच्छा है कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है. और कहीं ना कहीं और भी एक बात जो बहुत अच्छी है वो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसके. यू नो ये एक फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया.
1: I think he said because of the program I've been seeing, I'm realizing that.
0: Because you start looking at yourself. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला स्टेप होता है, क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमारा दृष्टिकोण नहीं तो सिर्फ औरों की तरफ होता. तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया था. अब ये भी समझना होगा कि ये एकदम से एक दिन में दूसरे नहीं चेंज होंगे. हाँ मैं चेंज हो सकता हूँ, लेकिन औरों को और लोग भी, क्योंकि है तो फैमिली, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ये तो बहुत नज़दीक के संबंध है. ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे. इट्स जस्ट दैट उनको तो इसी व्यवहार की आदत पड़ी है ना बहुत समय से.
1: अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चला कि आप बदल गए. ये ना हमने कहा था एक बार पहले.
0: क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में तो पुराना वाला पास्ट एक्सपीरियंस से चल रहा है. क्योंकि लेबलिंग ये होता है वो ब्लॉकर बिलीफ. यू नो जो हमने सोच देखा था कि किसी को भी हम एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसे है. हाँ. अब क्या होगा, वाइफ बच्चे सभी एक साइड पर, जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये हमारे फादर ये तो है ही ऐसे. नाउ इट विल नीड टाइम फॉर देम फॉर दैट बिलीफ सिस्टम टू चेंज. तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए मुझे ही वो एनर्जी भेजनी पड़ेगी. अगर तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत समय से एक ऐसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन शायद की नहीं, तो बहुत इजी नहीं होगा बताना कि यू नो आई एम रियलाइजिंग. क्योंकि इजीएस्ट वे तो अदरवाइज ये है जस्ट गो एंड शेयर कि आई हैव रियलाइज्ड. लेकिन हमारे ईगो हमें ये सब करने से रोक देती है. सिंपल, बहुत सिंपल होगा अगर यू कैन वॉक अप टू ऑल थ्री एंड टेल देम आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने अपनी पूरी जीवन क्या किया है, बट नाउ I have realized and so I have changed. You know, not even wanting. I have changed. And कुछ उसके बाद बोलना नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे वो relationship build होना है. वो एक barrier है जो मैंने ही रखा था बीच में. अब मुझे जाकर सिर्फ उस barrier को हटाना है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही ready थे. तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. तो या तो मैं एनर्जी से उस बैरियर को हटाऊं, और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है तो अगर मैं सीधा वो मैसेज कन्वे कर देता हूं तो वो

0: करियर एक क्षण में फिनिश हो जाएगा. एंड इतना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप होता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता. ये तो सिर्फ हमने पकड़ के रखा है कि हम दूर हैं, हम दूर हैं. दूर मतलब क्या? रिलेशनशिप है क्या? एनर्जी एक्सचेंज. ठीक है, बहुत समय से हमने एक्सचेंज किया ही नहीं, हम अलग अलग होके बैठे थे, बीच में एक वॉल था, आज वो वॉल हट गया. क्या होगा? एनर्जी फ्लो बिगिंस. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट. इसमें कोई पुरुषार्थ तो इनको करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट बिगिन. एंड अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं किया, अगेन बिगिन,
1: स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. एक्चुअली अगर आप ये नहीं भी कहना चाहते कि जैसे आपने कहा कि ईगो आ जाती है कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने जिंदगी भर क्या किया, तो आई थिंक एक बार कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं से भी शुरू हो जाएगी.
0: कन्वे कर देंगे ना अपने थॉट पैटर्न और अपने बिहेवियर से, हम वो मैसेज कन्वे कर देंगे. और एक्चुअली जैसे ही आपकी थॉट चेंज होती है, सामने वाले को वो वाइब मिल जाता है.
1: इतना इजी होता है, इट्स जस्ट वन थॉट. एक्चुअली इन्होंने कितना बड़ा हमने बनाए हुए होती है वो चीज कि ये पॉसिबल नहीं हो पाए,
0: उनको वो वाइब मिल जाएगा. एंड इमेजिन दे आर तो एनीवेज वेटिंग, वो तो वेट कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा इस बात को लेकर और शायद कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है.
1: बिल्कुल. एंड मे बी यू नो कहीं इनको ये भी हो सकता है, इनको ये एक रिजेक्शन का डर भी लग रहा हो शायद कहीं, कि क्योंकि मैंने जिंदगी भर नहीं किया है,
0: वही इनसिक्योरिटी है. लेकिन यही याद रखना होगा कि जब हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, देयर इज नो वे कि हमें रिटर्न में नेगेटिव मिलेगा. हो सकता है थोड़ा अप्रिहेंशन हो, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा अप्रिहेंशन हो तो भी आई हैव टू जस्ट कीप
1: गिविंग बिकॉज़ नाउ द टाइम इज कमिंग.
0: पॉजिटिव एनर्जी देता जाऊं, द अदर पर्सन इज रेडी.
1: वंडरफुल सिस्टर शिवानी. इनफैक्ट ये जो इतने सारे हमारे पास मेल्स आए आज भी, हमने कई सारी समस्याएं ली. एक बात हम, क्योंकि वक्त नहीं है पर खत्म करें, कि ये जो पूरा राजयोग का ये जो पूरी हमारी जो ये जो ज्ञान है, तो उसमें हर सवाल आप तक नहीं पहुंच सकता या हम पूरा नहीं इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते. क्या ऐसा किया जाए कि अपने सवालों के जवाब हमें खुद भी मिलने शुरू?
0: अपने सभी सवालों के जवाब हमारे पास अपने पास ही है, क्योंकि उसकी जो बॉटम लाइन प्रॉब्लम है वो हमें पता होती है. लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करना पड़ेगा. और उसमें सिंपल सिर्फ यही है, जब तक औरों को ब्लेम कर रहे थे तब वो बिल्कुल दिखेगा नहीं, जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कि एकदम से मुझे जड़ से पता चल जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है. लेकिन हर सिचुएशन में, एंड दैट मीन्स एवरी सिचुएशन, लेट इट बी एनी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या इसमें वे डिड आई गो रॉन्ग, नॉट यू वेंट रॉन्ग. जैसे यू वेंट रॉन्ग, फोकस इज चेंज. तो फोकस इतना इंटरनलाइज होता जाएगा, इसी को बोलते हैं लुकिंग इनवर्ड्स. जो आज दिन तक हम सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स लुक इनवर्ड्स, तो लुक इनवर्ड्स इज नॉट के क्या देखूं, लेकिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और अपना रोल देखना शुरू करें, अपना पर्सपेक्टिव देखना शुरू करें और कहां मेरे पर्सपेक्टिव में परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा.
1: बहुत सुंदर आपने बात की सिस्टर शिवानी, और यही वक्त है कि हम विराम लें. लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे कि इतना सारा जो प्यार हमें मिल रहा है और सवालों के जवाब हम खुद भी मिलकर तलाश सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: अब शांति.